हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। सुबह के 5:58 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारे प्रथम सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाढ़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

कहते हैं इस संसार रूपी भवसागर में भटकी हुई कश्ती को किनारा सिर्फ सद्गुरु की कृपा ही दिला सकती है। जब हमारी जीवन रूपी पतंग की डोर उस परमात्मा के हाथ में होती है तो कोई भी आंधी हमारा हौसला नहीं टिका सकती। आइए अपनी आस्था की डोर को उस परमपिता से जोड़ते हैं और सुनते हैं पंडित ज्ञानेंद्र शर्मा की आवाज़ में ये भजन।

सद्गुरु के चरणों का ध्यान करने के बाद दिल से जो याद निकलती है वो सीधे उस मालिक के दरबार में पहुंचती है। साईं की याद ही वो मरहम है जो हर जख्म को भर देती है, हर बेचैनी को सुकून में बदल देती है, क्योंकि उनकी याद महासुखदायी है। आइए हरिओम शरण जी के दिव्य और मधुर स्वरों में डूब जाते हैं और महसूस करते हैं उस रूहानी सुकून को।

सामाइन, ईश्वर के सामने सबसे बड़ा समर्पण वही है जहां इंसान अपने अहंकार को छोड़ दे। गुरबाणी हमें यही सिखाती है कि हम सब में कमियां हैं, लेकिन वो परमात्मा बहुत दयालु है और बख्शने वाला है। जब हम खुद को छोटा मानकर उसके दर पर शीश झुकाते हैं तो हमारे ऊपर असीम कृपा बरसती है। आइए सुनते हैं भाई बलदेव सिंह रागी के स्वर में ये शब्द।

श्रोताओं, इबादत का कोई रंग नहीं होता, वो तो हर रूप में हर जुबान में खूबसूरत है। वंदना के मंच के माध्यम से आज खुशियों का एक नया सवेरा आया है, क्योंकि रहमत और बरकत का मुबारक मौका आज है। जब दिलों में भाईचारा और लबों पर दुआएं हों तो हर दिन ईद जैसा हसीन हो जाता है। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नात समूह स्वर में।

वंदना कार्यक्रम के इस पावन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम उस सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान नारायण की आरती की ओर बढ़ते हैं, जिसकी ध्वनि मात्र से ही घर का कोना कोना और हमारे भीतर का अंधकार दूर हो जाता है। आइए सुनते हैं ये भजन महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का आज का ये प्रसंग।

संतान के आसन्न विरह में तड़पते सिर धुनते राजा दशरथ ने पुत्र वधु को अनेक प्रकार से वनगमन से विमुख करने की चेष्टा की। संकोचवश सीता ने प्रतिवाद नहीं किया, किंतु उनका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त था, अतः उन्हें पति को छोड़कर घर में रहना श्रेयस्कर नहीं लगा और न ही वनगमन भयावह लगा। कैकेयी ने तमककर मुनियों के वस्त्र, माला, मेखला आदि और कमंडलु राम के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम के वश में दुर्बल हृदय वाले राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ सकते। उनके पुण्य, यश और परलोक भले ही बिगड़ जाएं, वे तुम्हें वन जाने को भी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता कैकेयी की सीख श्री राम को भली लगी, किंतु राजा दशरथ को ये वचन वाण की भांति लगे और वो मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को सोच नहीं पड़ता कि वे क्या कहें। श्री राम मुनि का वेश धारण कर माता पिता के सम्मुख शीश नवाकर चल पड़े। राजमहल से निकलकर वे कुलगुरु वशिष्ठ के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां ब्राह्मणों तथा याचकों की टोली को वर्षासन देकर उन्होंने दास दासियों को गुरु को सौंपा और हाथ जोड़कर कुलगुरु से प्रार्थना की कि वे माता पिता और पालक की भांति उनकी देखरेख करें। अयोध्या वासियों से उनकी प्रार्थना थी कि वे माता पिता को किसी भांति का कष्ट न होने दें।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का संगीत में प्रसारण। यह आकाशवाणी का नचिकेतापाद केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन।
1: शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति भी प्रीत में है। प्रेम और शांति, दोस्ती और भाईचारे का अटूट संबंध दिलों की खोट और कपट को इस प्रकार दूर कर देता है जिस प्रकार उजाले के सामने अंधेरा भाग जाता है। ये संदेश कोई नया और अनोखा नहीं है। ईश्वर के हर नेक बंदे ने, हर नबी और वली ने, हर ऋषि और मुनि ने अपने अपने अंदाज से इसे दोहराया है। हजारों वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम दुश्मनी को कभी दुश्मनी से नीचा नहीं दिखा सकते, केवल प्रेम और दोस्ती से उसे जीत सकते हैं। यह कभी न मिटने वाला कानून है। प्रभु यीशु ने सिखाया अपने दुश्मनों और विरोधियों से प्रेम और बुराई का बदला नेकी से दो। हजरत मोहम्मद साहिब ने कहा, अगर तुम ईश्वर से प्रेम का दावा करते हो तो उनके बंदों की सेवा करके दिखाओ। इसीलिए मैं कहता हूं ये संदेश अनोखा नहीं है मगर सच्चा जरूर है। मेरे विचार में पहाड़ों जैसा पुराना, समंदर जैसा गहरा, सूरज जैसा रोशन और गुलाब जैसा ताजा संदेश ये है। अपने दिल दिमाग के दरवाजों को खोल दो ताकि तंग नजरी, भेदभाव, जात पात के जाले साफ हो जाएं। मनुष्य मनुष्य को उसके असली रूप में देख सके ताकि प्रेम की धीमी धीमी किरणें ठंडी हवा बंद कलियों को फूल बना दे और मनुष्य एक दूसरे से नफरत करने की बजाय एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनना सीखे। कौम, नस्ल, रंग, जात पात और प्रांत के भेदभाव ने देश के नक्शे को बिगाड़ दिया है जिसमें पढ़कर लोग इंसानियत का असली अर्थ भी नहीं समझ पाते। इंसानियत की केवल एक ही कसौटी है, मनुष्य का मनुष्य सम्मान करे, प्रेम करे, वो भी बिना जाति धर्म को देखे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। हमारे दिलो दिमाग में ऐसी गुत्थियां पड़ गई हैं जिसकी वजह से आपसी मेलजोल और इंसानियत का एहसास कमजोर पड़ता जा रहा है। ऐसे नाजुक समय में जब जिंदगी, इंसानियत, मौत और जिंदगी के दोहराहे पर खड़ी हो, ऐसी बातों की याद ताजा रखना जरूरी है जो एकता, अमन, प्रेम और शराफत का उपदेश देती हैं।
0: अभी आपने सुना चिंतन। आकाशवाणी का ये नचिकेतापाद केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत संजय कुमार शर्मा का काव्य पाठ।
2: एक गीत पढ़ रहा हूं, शीर्षक है मारीच मन। मैं

सियगन जिंदगी की कल्पनाएं, जिंदगी की कल्पनाएं, जिंदगी की कल्पनाएं और मेरा मारी चुमन। मैं क्या करूं पल पल जलाती एक मीठी सी अगन, जिंदगी की कल्पनाएं और मेरा मारी चुमन। जाने क्या क्या भेष धरता, चाहने पर न सुधरता, दृष्टितम पर ही गड़ाए रोशनी की बात करता।

नहीं सुधरता। दृष्टि तम पर ही गड़ाए रोशनी की बात करता, और मर्यादा भुलाए, और मर्यादा भुलाए जैसे कलयुग की दुल्हन। जिंदगी की कल्पनाएं और मेरा मारीच मन,

कथन जिंदगी की कल्पनाएं और मेरा मारी चुमन। अंतिम क्षण देखिए, नेह की महिमा विसारे प्रेम के संवाद प्यारे, सुख सरस की आस करता कामनाओं के सहारे। नेह की महिमा बिसारे प्रेम के संवाद प्यारे, सुख सरस की आस करता कामनाओं के सहारे। ये वासनाओं की गली में खोजता रहता सुखन, जिंदगी की कल्पनाएं, जिंदगी की कल्पनाएं, जिंदगी की

अगन जिंदगी की कल्पनाएं और मेरा मारे चुमन। एक और गीत देखिए, शीर्षक है यादों में आना। प्रियवर फिर यादों में आना।

में बीज खुशी के बिखराएंगे, सारे गीत निखर जाएंगे, प्रियवर फिर यादों में आना, प्रियवर फिर

लेगा सपना अपना सा हो लेगा, खनक उठेगी दिल की नगरी, एक नया इतिहास बनेगा। तुम आओगे रंग जमेगा,

कहने और किधर जाएंगे, सारे गीत निखर जाएंगे, प्रियवर फिर यादों में आना, प्रियवर फिर यादों में आना। अंतिम क्षण देखिए,

दिन देखे हैं कैसे कैसे, तुम मेरे दिल में हो ऐसे, देखो हो ना

देख देख कर कुछ पल और उतरवाएंगे, प्रियवर फिर मेरे घर आना सुन।

गीत निखर जाएंगे, प्रिय वर फिर यादों में। एक नवगीत दे रहा हूं, शीर्षक है बाबूजी तुमसे।

0: बाबू जी, थोड़ा सा तो धीरज धर लो, मैं आता हूँ बाबू जी। कल ही तो संदेश मिला था बीमारी का ताई से, तभी फोन पर पूछा मैंने छोटे वाले भाई से। जितने पैसे जोड़े अब तक सब लाता हूँ बाबूजी। थोड़ा सा तो धीरज धर लो, मैं आता हूँ बाबूजी। अपना सब कुछ बेच बाच कर तुमने मुझे पढ़ाया था, कैसी कैसी जुगत लगा कर अमरीका भिजवाया था। तुम ही एक हो जिस पर अक्सर इठलाता हूँ बाबूजी। थोड़ा सा तो धीरज धर लो, मैं आता हूँ बाबूजी। तुमसे ही मेरा जीवन ये बतलाता हूँ बाबूजी। थोड़ा सा तो धीरज धर लो, मैं आता हूँ बाबूजी।
1: काव्यधारा कार्यक्रम में अभी आपने सुना संजय कुमार शर्मा का काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 150वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन संबद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु।

0: उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा त्रिंशत् सहस्र कोटि रूप्यकाणां सप्त महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं, ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं, गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षी बलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य पञ्चदशं राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य तृतीयं राज्यम् अभवत्। रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः, सुदृढ अनुशासनस्य, राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तन्त्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आबंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटलीय सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः, भ्रमात्मकः, तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्ध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,2000 बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्त मासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृतास्ति। राज्य सर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षि प्रमुखाणां कृते संचेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44.2 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96.1 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा

0: राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नचिपापद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है संतुलित भोजन।
3: हमारे शरीर के लिए जो है वो तरह तरह के चीजों की आवश्यकता है, जो हमारे खुराक में जो हम लेते हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ये सब चीजें एक पर्टिकुलर मात्रा में जो है हमारे शरीर में इनकी जरूरत है। तो जिस मात्रा में जरूरत है उसी मात्रा में अगर हम उनको लें तो उसको जो है हम संतुलित भोजन कहेंगे। मेनली तो हमारे लिए जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स जरूरी हैं। इसके अलावा विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो कम मात्रा में चाहिए। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 70-75% के आसपास हमारे खाने में जो है मौजूद होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें सीरियल से मिल जाएंगे। फाइबर जो है हमारे तरह तरह की चीजों में मौजूद होता है, जिस तरह हरे पत्ते की सब्जियां हैं, मेथी हो गई, पालक हो गया या फ्रूट्स हैं, उनके अंदर जो है ये मौजूद है। या ओट है जिसको हम जौ कहते हैं, या चोकर है उन सब चीजों में जो है फाइबर जो है वो मौजूद होता है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एक पिरामिड की शक्ल में है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते जाते हैं तो पिरामिड में ऊपर की तरफ जो चीजें हैं उनकी हमें जरूरत जो है वो कम मात्रा में होती है। तो सबसे ज्यादा जो है पिरामिड का जो बेस है उसका जो आधार है वहां पर जो है सबसे ज्यादा जरूरत हमें जो है अनाज वाली चीजों की है, जिनको हम सीरियल्स या ग्रेन्स कहते हैं। उसके बाद जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमें जो है फ्रूट्स और सब्जियों की जो है आवश्यकता है। उसमें फिर और ऊपर चढ़ने पे हमें दालों की आवश्यकता है, जिनको हम लेग्यूम्स और पल्सेस के अंडर जो है कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद हमें मिल्क और मिल्क से निकले हुए जो विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं उनका नंबर आता है। उसके बाद अंडा और मीट, उसके बाद शुगर यानी चीनी, और उसके बाद सबसे कम मात्रा में हमें जो है वो फैट्स चाहिए होते हैं। जो आजकल जो जंक फूड इस तरह की जो है बहुत कॉमनली जो है इस्तेमाल हो रही है, इसका सबसे ज्यादा क्या नुकसान हो रहा है कि ये एक असंतुलित आहार को जन्म देता है। तो इसमें फैट्स वगैरह है, शुगर है या कोई साल्ट वगैरह है, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान इसमें फैट से होता है। अगर आप फैट को ज्यादा मात्रा में लें तो एक तो आपको जो है पेट में जो है डिस्पेप्सिया जो है पैदा हो सकता है, गैस हो सकता है और पेट के ऊपरी हिस्से में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि जब फैट जो है ज्यादा हमारे शरीर में जाएगा तो वो फैट जो है शरीर में जाके जो है डिपॉजिट हो जाता है, तो उसके साथ जो है ये हमारे खून की जो नालियां हैं उनके अंदर भी जो है ये जाकर वहां पे डिपॉजिट हो सकता है, और इसकी वजह से जो है हमें बहुत गंभीर बीमारियों का जो है सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह अगर ये फैट जो है जब ये शरीर में या खून में जो है ज्यादा मात्रा में होता है तो ये दिल की या हृदय की खून की नालियों में अगर जम जाए और उनमें खून का बहाव जो है बिल्कुल अवरुद्ध हो जाए तो उससे आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है, उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। और इसी तरह अगर वो खून की नालियां जो हैं अगर दिमाग की तरफ जो है जा रही हैं वहां पर अगर फैट डिपॉजिट हुआ है और वहां पे खून की सर्कुलेशन रुक गई है तो आदमी को जो है वो स्ट्रोक हो सकती है, जैसे कि उसमें लकवा मारा जा सकता है, आदमी बेहोश हो सकता है। इसी तरह टांगों में या हाथों में जो हमारी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स जा रही हैं उनके अंदर फैट के जमा होने से अगर खून के बहाव के अंदर रुकावट आ जाए तो वहां पर गैंग्रीन वगैरह इस तरह की चीजें जो है पैदा हो सकती हैं। तो कुल मिला के जो फैट का ज्यादा मात्रा में सेवन करना जो है शरीर के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है, और उससे एंड में जाकर जो है इस तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं जिनसे आदमी की डेथ भी हो सकती है और उसकी लाइफ जो है बहुत पहले ही जो है खत्म हो सकती है। तो हमें सारे दिन में जो है कुल मिला के 3 छोटे चम्मच से ज्यादा फैट्स नहीं लेने

0: तो कार्यक्रम के अंत में ये फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म है सनम बेवफा। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, विपिन सचदेवा और साथी। गीत लिखा है सावन कुमार ने और संगीत दिया है महेश किशोर ने।
1: गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे आप सभी श्रोता। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अब्बान अब्बासी।
0: मोहल्ला अफगानान शिरकोट से हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत।
1: लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन और मुन्ना अंसारी ने सुनना चाहे इस गीत को ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से।
0: आप हैं गंज डुंडवारा से शम्सुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी।
1: इसी गीत को सुनना चाहा है पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने।
0: आप हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, साइना महविश, मोहम्मद अफ़ान, अदीना नूर, ग्राम जुझेला, थाना शिवाला कला, बिजनौर से।
1: गीत को सुनना चाहा है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालाओ छत्तीसगढ़ से श्रोता है हमारे अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और इनके सभी साथी।
0: और इनके साथ हैं देव शंकर तामुरिया। और देखिए बहुत सारे मैसेज हमारे पास हैं। आप हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां।
1: मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद उवेश, मोहम्मद कासिम और इन्होंने साथ में लिखा है आप और हम। तो बिल्कुल आप और हम तो ये गीत बिल्कुल सुनने वाले हैं। और ये लिखा है किसने, ये है हमारे श्रोता मीरमपुर बेगा तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर से।
0: तो कर रहे हैं आपकी पसंद, आपकी नजर।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं संपन्न होता है। मुझे यानी विवेक प्रताप सिंह को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। आप बने रहिए रेणु कोटनाला जी के साथ।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.64 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं, आप पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सभी श्रोताओं को ईद मुबारक। श्रोताओं, ईद का ये पाक त्योहार हमें त्याग, कुर्बानी और इंसानियत का संदेश देता है। अपनों की खुशियों के लिए अपने हिस्से की मोहब्बत बांटना ही ईद की असली रौनक है। इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ सुबह की इस सुरीले से सफर में स्वागत करती हूं मैं रेनू कोटनाला।

0: कुर्बानी फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज थी किशोर कुमार अनवर और साथियों की, शब्द रचना इंदिवर की थी और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
1: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने। श्रोताओं आइए आप आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत एमएम करीम का है, फिल्म क्रिमिनल का ये गीत है और आवाज दी है कुमार सानू ने।

अनु मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और साथियों की आवाज में फिल्म थी यादें। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया हुआ शब्द रचना है फैज अनवर की और संगीत डब्बू मलिक का।

और अब इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
0: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
0: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
0: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
0: जी, ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
2: जी
0: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
2: जी,
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
2: जी अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए, इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे, ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
7: माँ, माँ।
8: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा, देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
8: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखूं तो।
3: हाँ।
8: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
6: अरे वाह,
3: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
6: ऐसे नहीं,
7: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
8: अरे योगेंद्र।
3: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
6: माँ, और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
3: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
6: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
2: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
1: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
2: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
1: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
2: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
1: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
2: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1,000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
9: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
10: जी साहब, जी साहब।
9: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
10: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ।

0: यहाँ भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
1: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी, यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: श्रोता, भी आपने सुना NCERT द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताएं, एक नजर डालते हैं हमारे आज के प्रमुख कार्यक्रमों पर।

अब से थोड़ी ही देर में यानी दिन में 12:05 पर श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं, आज दिन में 12:30 पर कार्यक्रम होगा मिड डे मेलोडी।

आज दिन में 1:15 पर महिला जगत कार्यक्रम में क्रम रहेगा आधी आबादी से स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज। इस क्रम में भेंट वार्ता हमारे श्रोता सुनेंगे। विषय होगा महिलाओं में समय से पूर्व मेनोपॉज, कारण लक्षण और निदान। डॉक्टर नीरज शर्मा से बात करेंगी भावना अरोड़ा। समय याद रखिएगा आज दिन में 1:15 पर और क्रम रहेगा महिला जगत।

आज दिन में 1:45 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित संगीत संध्या स्वरांजलि के संपादित अंश लोकधारा कार्यक्रम में प्रसारित किए जाएंगे। कलाकार होंगे सोनल टॉक, आप सुनेंगे इनके गाए हुए गीत, और साथ ही एक और कलाकार होंगे भुवनेश गिरी, इनकी गाई रागनी आप सुन सकते हैं।

संध्या 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रिश्ता ये खास है आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम होगा ये, और समय रहेगा संध्या 5 बजे।

संध्या 5:15 पर युवाणी में आज का आकर्षण रहेगा बूझो तो जाने। कुछ खास है आज लव स्टोरी परिणीता हमारे श्रोता सुनेंगे इसका एपिसोड 4। साथ ही गुफ्तगु बस यूं ही क्रम में अनम से अनीना की बातचीत युवा श्रोता सुन सकते हैं। रहस्य सीरीज सीजन 2 का एपिसोड 3 हमारे श्रोता सुनेंगे खामोश घाटी। आलेख एवं प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद आदल सैफी का होगा और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का।

संध्या 7:32 पर सुगम संगीत में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित संगीत संध्या स्वरांजलि के संपादित अंश हमारे श्रोता सुन सकते हैं। कलाकार होंगे शाहरुख, सरफराज साबरी और साथी।

संध्या 6:45 पर 90 साल बेमिसाल रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष भेंटवार्ता हमारे श्रोता सुनेंगे। आर्य सैनी से बात करेंगी अलका।

नाटक लक्ष्मण रेखा हमारे श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 10 बजे। लेखक श्री उपेंद्रनाथ अश्क हैं और निर्देशक होंगे सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति सहायक सुदर्शन कुमार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

दिलीप सेन समर सेन का संगीतबद्ध किया हुआ रानी मलिक कली का गीत आपने सुना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म थी कर्तव्य। सैनिकों के लिए कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, कुमार सानू और बेला की आवाज में फिल्म इम्तिहान से, शब्द रचना फैज अनवर की और संगीत अनु मलिक का।

रन फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज़ थी अलका याग्निक और सोनू निगम की। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। और अब इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में। श्रोताओं, कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, जी हाँ, और कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे दिल में उतर कर घर बना लेते हैं। आज ऐसे ही कुछ खूबसूरत गीतों की माला इस कार्यक्रम में हमने पिरोई है। श्रोताओं, साल 1977 में आई फिल्म सत्ते पे सत्ता का ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं, आज भी मोहब्बत करने वालों की धड़कनों में गूंजता है। ये वो गीत है जो प्यार में इंतजार की कसक को आवाज देता है, मोहब्बत की वो तड़प, वो बेचैनी जिसे न तो शब्दों में कह पाते हैं और ना ही दिल से मिटा पाते हैं।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र। कार्यक्रम है मिट्टे मेलोडी। श्रोताओं, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब सब कुछ थम सा जाता है, लगता है जैसे मंजिल दूर है, रास्ते मुश्किल हैं और हम बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन श्रोताओं, फिर कोई एक साथ ऐसा आता है जो कहता है मैं हूं तुम्हारे साथ, और वही साथ वही यकीन बना देता है हमें इतना मजबूत कि फिर हम दुनिया से कह सकते हैं कि

मिड डे मेलोडी कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुन रहे हैं हमारे साथ वो गीत जो हैं हर दिल अजीज। जी हाँ श्रोताओं, पुराने गीतों का दौर वो दौर था जब मोहब्बत की नरमी, जुदाई का दर्द, दोस्ती की गर्माहट और मस्ती की चंचलता, ये सब कुछ इस दौर में था।

शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ हसरा जयपुरी का लिखा गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म थी ब्रह्मचारी। आप सुन रहे हैं

समय आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम मिट्टी मेलोडी, और अब इतना ही कि लगाव है तुमसे तभी शिकायतें हैं, लगाव है तुमसे तभी शिकायतें हैं, वरना तुम कौन हम कौन।

श्रोताओं, जिंदगी में कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जब हर दरवाजा बंद सा लगता है, जब हालात मुश्किल हो जाते हैं और हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। लेकिन ऐसे समय में श्रोताओं, अगर कोई साथ हो जो बिना कहे हमारे दिल की बात समझ ले, और हर मुश्किल तब आसान सी बन जाती है ना श्रोताओं? यही तो रिश्ता है सच्चे प्यार, सच्ची दोस्ती और भरोसे का। लीजिए, पेश है अब एक ऐसा ही गीत जो न सिर्फ हमारे दिल को छूता है बल्कि ये भी याद दिलाता है कि सच्चा साथ क्या होता है। लीजिए सुनिए, जुर्म फिल्म का गीत, कुमार सानू साधना सरगम की आवाज़ में, राजेश रोशन का संगीत है बोल इंदिवर के।

और अब चलते चलते बस इतना ही कि मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से मतलब नहीं, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से मतलब नहीं, कोई दिल से मेरा हो वो एक शख्स ही काफी है। इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अंतिम गीत और इजाजत दीजिए रेणु कोटनाला को। नमस्कार।

0: सात मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजा है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डी के शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है, इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर दो मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim police during Alankaran parade held in Gangtok.
4: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
3: Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the ULLAS, Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that re-evaluation process will now begin after certain issues have come to light regarding the CBSE Class 12th examination evaluation process. Speaking to media after the meeting with CBSE officials in New Delhi, Mr. Pradhan said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability will be ensured at all levels. Taking responsibility for the discrepancies, the Education Minister said the issues will be rectified and appropriate solutions will be worked out.
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले।
5: Children should receive transparent information about their marks through scan copies, the answer sheets. Should reach them transparently. This is a provision under the OSM system. For the first time in the country, CBSE has implemented this system. Some discrepancies have come to notice in it. I take responsibility for this and it will be corrected properly. We will make sure that no genuine query raised by any student remains unanswered.
2: Unanswered query ko asamadhit nahi chhodenge.
3: The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2026 examinations. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul-Adha. NTA said admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released and they can be downloaded from the official website of NTA. cuet.nta.nic.in. The admit card for the remaining candidates whose examination is being scheduled on the 6th and 7th of next month will be released soon. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah will submit his resignation to the Governor this afternoon. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed this while leaving the breakfast meeting called by Siddaramaiah. He said Siddaramaiah has been told by the Congress High Command to resign and accordingly he will submit his resignation at Lok Bhavan. He further informed that D.K. Shivakumar will take over as the Chief Minister. Bharatiya Janata Party BJP leader from Punjab, Keval Singh Dhillon, has been appointed as the State President of the party's Punjab unit today. He has been given the charge of Punjab unit by the party's National President, Nitin Naveen. Iran's Revolutionary Guards today said they targeted a U.S. base this morning in retaliation to American strikes near Bandar Abbas Airport. Tehran did not disclose the location of the base that was attacked, but Kuwait, a U.S. ally, said earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. The festival of sacrifice, Eid ul-Adha or Bakrid, is being celebrated with religious fervour and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques This morning, later they exchanged Eid greetings. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. And with that, we end this news bulletin.
6: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे मरहले को मोसर तरीके से नाफिज करने पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह मुहिम सिर्फ बुनियादी ढांचे की तामीर तक महदूद न रहे बल्कि मामूल के मुताबिक निगरानी आवामी शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकों के कोऑर्डिनेशन से ठोस नतायज यकीनी किए जाएं। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं पेशरफत मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों से कचरा प्रोसेसिंग और गोबरधन प्लांटों समेत ठोस वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोजेक्टों को तेजी से मुकम्मल करने के अहकाम दिए। मीटिंग में रेलवे बिजली और सड़क हलकों के तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए लागत वाले 7 खसूसी प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: काबीना की इक्तिसादी मामलों की कमेटी ने अवामी तकसीम निज़ाम के तहत राशन, नकलो हमल और मैनेजमेंट इमदादी स्कीम सार्थक पीडीएस को जारी रखने की इजाज़त दे दी है। इसके लिए मरकजी हुकूमत ने 25,530 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बातचीत में वजीर बराए तलातो नश्रियात अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह स्कीम अवामी तकसीम निज़ाम को जदीद बनाने में तावुन करेगी।
8: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
6: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आमद और रफ्त के लिए पहले मरहले में 110 इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी यकीनी करने के अहकाम दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी मीटिंग में सदारत करते हुए वजीर आला ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गीडा हल्के में 500 इलेक्ट्रिक बसों को चलाए जाने की पेशरफत का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 15 जून से मुजव्वजा परवाज से कबल अवामी नकलो हमल निज़ाम को पूरी तरह मुस्तहकम किया जाए। मीटिंग में वजीर आला ने रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से तौसी पर भी जोर दिया। ईद उल अज़हा का त्यौहार आज पूरी रियासत में मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार पैगंबर हजरत इब्राहिम के जरिए अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने के जज्बे की याद में मनाया जाता है। सुबह से ही इस मौके पर मसाजिदों में खुसूसी नमाज का एहतमाम किया गया जिसके बाद कुर्बानी के फराइज अदा किए जा रहे हैं। दारुल हुकूमत लखनऊ समेत गोरखपुर, आगरा, कौशाम्बी, कानपुर शहर, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, चित्रकूट, रायबरेली, बिजनौर, अयोध्या, आजमगढ़, इटावा, शामली, वाराणसी वाराणसी, मेरठ, जौनपुर, उन्नाव, अमरोहा, प्रयागराज और सहारनपुर में हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान नमाज अदा की गई। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने पहले ही सभी सीनियर पुलिस अफसरान को अहकाम जारी करके ये यकीनी करने को कहा है कि कोई नई रवायत शुरू न हो और न ही पाबंदी शुदा जानवरों की कुर्बानी दी जाए। दरियसना गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की है। रियासत में शदीद गर्मी और लू का सिलसिला कल भी जारी रहा। कई अजला में दर्ज हरारत

0: खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम महिला जगत में। मैं आपकी बहन भावना अरोड़ा हाजिर हूँ एक बार फिर से अपनी बहनों के कार्यक्रम महिला जगत में। तो चलिए बहनों, कार्यक्रम शुरू करते हैं और पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: संदेशों के बाद अपने कार्यक्रम में वापस लौटते हैं और बहनों, आज हम बात करेंगे महिला स्वास्थ्य के बारे में। बहनों, एक साथ कई काम करने की आदत के चलते महिलाएं अक्सर परिवार की देखभाल और कैरियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं। वे छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा कर देती हैं, जो समय के साथ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाती है। इसमें से अधिकांश गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को नियमित स्वास्थ्य जांच से रोका जा सकता है। इसलिए समय से पर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए निवारक स्वास्थ्य जांच आवश्यक है, ताकि जोखिम कारकों या गंभीर बीमारी के शुरुआती लक्षणों की पहचान की जा सके। मैंने नियमित जांच करवाने से स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और अंडाशय के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का जल्द पता लगाया जा सकता है। यदि उपचार जल्दी शुरू कर दिया जाए तो ठीक होने की संभावना भी अधिक होती है। महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच से बीमारियों और संक्रमणों से बचाव होता है। वैनु, नियमित स्वास्थ्य जांच आपके स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बनाए रखने में भी बहुत सहायक होती है। नियमित जांच किसी भी बीमारी के लक्षणों से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं को कम करने में भी सहायक होगी। इसके अतिरिक्त बहनों, आखिर कौन कौन सी ऐसी सामान्य जांचें हैं जिन्हें महिलाओं को एक निश्चित अंतराल पर कराना चाहिए, आइए बताते हैं आपको। तो सबसे पहले है रक्त परीक्षण। महिलाओं के नियमित स्वास्थ्य जांच में रक्त परीक्षण एक प्राथमिक परीक्षण है, क्योंकि यह समग्र स्वास्थ्य की जानकारी देता है और बीमारी के शुरुआती लक्षणों का समय पर निदान करने में मदद करता है, जिसमें शामिल है संपूर्ण रक्त गणना, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शनल टेस्ट और रक्त शर्करा परीक्षण। इसके अतिरिक्त मूत्र परीक्षण, यह परीक्षण एक गैर आक्रामक प्रक्रिया है जो गुर्दे के स्वास्थ्य की जांच करने, संक्रमण का पता लगाने और चयापचय कार्यों का आंकलन करने के लिए की जाती है। यह परीक्षण यूटीआई, गुर्दे से संबंधित बीमारियों आदि के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह परीक्षण जीवाणु संक्रमण की भी पुष्टि करता है। इसके साथ ही बहनों, गर्भाशय की जांच, 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर 3 साल में एक बार पैप स्मियर टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। एचपीवी परीक्षण, जी हां बहनों, एचपीवी परीक्षण भी महिलाओं को 3 साल के अंतराल पर अवश्य कराना चाहिए। रक्त कैंसर की, स्तन कैंसर की जांच, डॉक्टर 50 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को यह जांच करने की सलाह देते हैं।

0: स्तन कैंसर की जांच के दौरान मैमोग्राम और स्तन एमआरआई किया जाता है। बहनों, इसके अतिरिक्त आंखों के स्वास्थ्य की नियमित जांच भी बहुत आवश्यक है और मधुमेह की जांच भी समय समय पर हमें अवश्य करानी चाहिए। तो बहनों, ये कुछ नियमित जांचें हैं जिनको कराने से आप आने वाली गंभीर बीमारी से बच सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारी बहनें भी समय समय पर होने वाली इन जांचों को अवश्य कराएंगी ताकि आने वाली गंभीर समस्याओं से बचा जा सके और समय रहते उनका इलाज हो सके। और बहनों, जब बात महिला स्वास्थ्य की हो ही रही है तो आज हमारे स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज के क्रम में आज हम बात करेंगे महिलाओं में समय से पूर्व मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति, कारण, लक्षण और निदान। और हमारी भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर नीरज शर्मा जी। तो आइए बहनों, सुनते हैं यह भेंटवार्ता। बहनों, स्वस्थ नारी स्वस्थ समाज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे महिलाओं में समय से पूर्व मेनोपॉज, कारण, लक्षण और निदान। हमारी विशेषज्ञ और आज की मेहमान हैं डॉक्टर नीरज शर्मा जी, जो एक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और पिछले 41 वर्षों से बिजनौर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी, आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: जी, तो शुरू करते हैं बातचीत डॉक्टर साहिबा, और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि प्री मैच्योर मेनोपॉज क्या होता है, या कहें कि समय से पूर्व मेनोपॉज।
1: जी, प्री मैच्योर का मतलब ही होता है कि जो मैच्योरिटी से पहले हो जाए।
0: जी,
1: जैसे हम जानते हैं कि 11 साल की 11 से 17 के बीच में पीरियड्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं एक महिला को, लड़की को।
0: जी,
1: और एक उम्र के बाद में 45 से 60 के बीच में नेचुरली कुदरती वो बंद हो जाते हैं। तो जो बंद होने की प्रक्रिया है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो 45 से 60 के बीच की उम्र जो नेचुरल बताई गई है उससे भी बहुत पहले हो जाता है, मतलब 45 से भी पहले होता है, तो उसको हम अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं कि समय से पहले। लेकिन अगर वो 40 की उम्र से भी पहले हो जाए तो उसको फिर हम प्री मैच्योर बोलते हैं कि वो उम्र मेनोपॉज की नहीं है लेकिन मेनोपॉज हो रहा है।
0: डॉक्टर साहब, सामान्य मेनोपॉज से किस तरह से अलग है?
1: अलग बिल्कुल नहीं है, इसके जो लक्षण वगैरह होते हैं वो सब सेम ही होते हैं जो नेचुरल मेनोपॉज के होते हैं। बस ये कि उम्र से पहले हो जाता है ये, इसीलिए हम इसको प्री मैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहिबा, क्या ऐसा देखने को आपकी नजरों में भी आ रहा है या आपके संज्ञान में भी इस तरह के केसेस हैं? ये समस्या आजकल ज्यादा आम हो गई है?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मुश्किल से 1-2% ही होता है ये।
0: जी,
1: ज्यादातर तो समय पर ही होते हैं, अर्ली हो सकता है कि 45 से पहले, ये मैं कह सकती हूँ कि जो अर्ली वाला है 45 से पहले वाला, 40 से 45 के बीच का, वो ज्यादा देखने में आ रहा है। 60 तक की उम्र तक तो बहुत कम महिलाएं पहुंचती हैं, लेकिन 45 से देखने में ज्यादा मिल रहा है।
0: जी, समय से पहले मेनोपॉज के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्यों आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो एक उम्र 45 से 60 थी वो सिमट के शायद 45 या 50 के आसपास रह गई है? 60 तक तो कोई बहुत कम महिलाएं पहुंच पाती हैं।
1: नहीं, 60 तक पहुंचना जरूरी होता भी नहीं है,
0: वो
1: तो एक अपर लिमिट है कि 45 से लेके 60 के बीच में कभी भी बंद हो सकता है, तो वो नॉर्मली समय है। 60 तक पहुंचना बिल्कुल जरूरी नहीं है इसमें। अच्छा। मेन तो वही होता है 45 से 50 तक आमतौर से जो हम लोग देखते हैं वो पेशेंट्स में, तो वही उम्र मिलती है 45 से 50 के बीच में। तो सबसे मुख्य कारण तो इसमें होता है जो हार्मोन्स होते हैं शरीर में जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं पीरियड्स लाने के लिए।
0: हाँ जी।
1: उन हार्मोन्स की जो मात्रा होती है उसमें जब कमी हो जाती है इस्ट्रोजन में, प्रोजेस्टेरोन में, जो प्रोजेस्टिन वगैरह जो हार्मोन है इनकी जब मात्रा गड़बड़ाती है शरीर में, कम हो जाती है इस्ट्रोजन की, तब ये समय से पहले हो जाता है मेनोपॉज। वैसे भी जब होता है तो कम होती है, लेकिन जब अगर समय से पहले ही इसकी मात्रा कम होने लगे तो पहले मेनोपॉज हो जाता है।
0: डॉक्टर साहिबा, क्या ये जेनेटिक या वंशानुक्रम से भी जुड़ी हुई समस्या है?
1: हाँ, अक्सर हम लोगों को पूछना पड़ता है पेशेंट्स को कि भाई आपके घर में आपके जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उनमें किसी को इस तरह की समस्या है क्या। अगर होती है तो कई बार देखा गया है कि अगर मदर को है या सिस्टर को है तो उनको भी ऐसा हो सकता है कि समय से पहले हो जाए।
0: जी, डॉक्टर साहिबा, इसके प्रमुख कारण क्या है अगर आप कहें कि इन इन वजहों से ये कंडीशंस होती है?
1: जी, सबसे पहला तो जैसे अभी हमने बात की कि हार्मोन्स की वजह से इस्ट्रोजन हार्मोन की जब कमी, शरीर में उत्पादन कम होता है तब ये समस्या आती है। इसके अलावा कुछ जो है वो इंड्यूस्ड भी होती हैं, ये तो कुदरती होती हैं लेकिन कुछ इंड्यूस्ड भी होती हैं कि मान लीजिए किसी को ओवरी में कोई समस्या है, यूट्रस में कोई समस्या है, तो वो ऑपरेशन करना पड़ जाता है, निकाल देनी पड़ती है, ओवरी निकाल देते हैं या यूट्रस

0: डाल देते हैं तो पीरियड आना बंद हो
1: बंद हो
0: जाता है,
1: जाता
0: तो
1: है
0: वो एक ये बात होती है। दूसरा,
1: जी
0: किसी को अगर कैंसर है और उसके लिए कीमोथेरेपी वगैरह का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं
1: जी
0: तो तब भी
1: तब
0: ये
1: भी मेनोपॉज।
0: मेनोपॉज होने की संभावना रहती है।
1: ओके
0: इसके अलावा कुछ जेनेटिक्स चीजें होती हैं, कुछ कारण टर्नर सिंड्रोम वगैरह होते हैं जिसमें कि जो बेबी गर्ल बेबी पैदा होती है उसमें जो XX होता है ना, तो
1: जी
0: एक एक्स उसमें कम होता है, तो उनमें भी इस तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये समस्या पीरियड्स की या मेनोपॉज की समस्या जल्दी हो सकती है। या थायराइड वगैरह की अगर किसी को बीमारी है
1: जी
0: तो उसमें भी कई बार ऐसा देखा गया है कि
1: जी डॉक्टर साहिबा, अक्सर देखा जाता है कि जब कोई महिला मीनोपॉज से होकर गुजर रही होती है या उससे पहले की स्थिति होती है, तो बहुत सारी मानसिक और भावात्मक जो हमारा स्वास्थ्य है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अर्ली मीनोपॉज का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य पर?
0: इसमें ये है कि जो मेनोपोज है वो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेनोपोज है तो हर महिला को दिक्कत होगी,
1: जी
0: किसी को होती है किसी को नहीं होती है,
1: नहीं होती है
0: लेकिन जो होती है वो चाहे वो प्री मैच्योर हो
1: जी
0: चाहे वो समय पर हो, उसमें जो लक्षण हैं जो सिम्टम्स हैं जो परेशानियां हैं वो सेम ही होती हैं। बस
1: जी
0: ये है कि जिनको पहले हो गया है उनको कम उम्र में ही फिर वो आगे संतान नहीं पैदा कर सकती हैं,
1: जी
0: ये चीज हो जाती है क्योंकि मेनोपोज के बाद में संतान पैदा करने का कोई संभावना नहीं
1: नहीं
0: होती
1: होती
0: है,
1: है
0: तो यही एक बस चीज होती है इसमें अलग, बाकी तो सेम सिम्टम होते हैं दोनों में,
1: जी।
0: दोनों को सही एक सी परेशानियां महसूस होती हैं।
1: डॉक्टर साहिबा, आप किस तरह का उपचार इस तरह के पेशेंट्स को देते हैं?
0: उपचार वैसे तो इनका कुछ नहीं होता है,
1: जी
0: प्रीमैच्योर को हम रोक नहीं सकते हैं इसलिए उपचार कुछ नहीं होता, केवल जो सिम्टम्स पैदा होते हैं जो महिला को परेशानियां दिक्कतें जो होती हैं
1: जी
0: जैसे कि किसी को हॉट फ्लशिज हम बोलते हैं कि
1: जी
0: एकदम गर्मी सी लगने लगती है
1: जी
0: और पसीना खूब, रात को भी सोते सोते भी पसीना आने लग जाता है कभी कभी,
1: जी
0: ये दिक्कत होती है, या शरीर में सूखापन जैसे योनि जो है वो
1: जी
0: ड्राइनेस हो जाती है उसमें, तो
1: जी
0: उसकी वजह से जो अब सेक्सुअल एक्ट होता है कोई तो उसमें दिक्कत होती है सूखेपन की वजह से,
1: जी
0: स्किन सूखी कई बार होने लगती है, स्किन में ड्राइनेस होती है, आंखों में ड्राइनेस आने लगती है कई बार,
1: जी
0: मुंह सूखने लगता है कई बार,
1: जी
0: जैसे सोते हैं तो रात को मुंह सूखा हुआ मिलता है ना, एकदम
1: जी
0: उठते
1: जी
0: हैं तो लगता है कि पानी पी लो, तो
1: जी
0: उस तरह की समस्या कई बार इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी ऐसी कई चीजें होती हैं जैसे आपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात की, तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इसमें
1: जी
0: कि कभी एकदम से मन खुश हो जाएगा, कभी एकदम से एंग्जाइटी हो जाएगी, कभी डिप्रेस हो जाएगा, वो
1: जी
0: हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से जनरली देखने को मिलता है और चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, क्योंकि जो और दिक्कतें होती है ना उसकी वजह से भी वो चिड़चिड़ापन होता है
1: जी
0: और उसकी वजह से ही जो जैसे नींद पूरी नहीं हो पाती है समस्याओं की वजह से, तो उससे मेमोरी लॉस भी होता है कई बार कि बहुत सारी बातें आपको याद भी नहीं रहती हैं, तो इन सारे जो लक्षण है ना इनके लिए आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं उनको कम करने के लिए, लेकिन
1: डॉक्टर
0: आप
1: साहिबा
0: बीमारी दूर नहीं कर
1: जी,
0: सकते।
1: तो कई महिलाओं में मोटापे की समस्या भी शायद देखी जाती है, तो क्या वो भी इसी वजह से ही होती है?
0: नहीं, मोटापे की वजह समस्या इस वजह से नहीं होती है, वो तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, लेकिन मेनोपॉज के बाद में अगर आप नहीं केयर करते हैं
1: जी
0: तो दोनों चीजें देखी गई हैं कि किसी का वजन बढ़ भी जाता है और किसी का वजन कम भी हो
1: कम भी
0: जाता है,
1: जाता
0: जैसे
1: है,
0: अपन बोलते हैं ना कि 40 की उम्र के बाद जो है वो नेचुरल फैट बॉडी में बढ़ता
1: बढ़
0: है,
1: जाता है
0: तो इस वजह से वो वजन बढ़ता है और
1: जी।
0: कई बार कम भी हो जाता है, दोनों ही बातें हैं इसमें।
1: डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि एक बार मेनोपॉज हो जाता है तो फिर उसका कोई उपचार नहीं है, यानी उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत अर्ली अगर हो रहा है, 30 के आसपास हो रहा है, तो क्या तब भी इलाज देना संभव नहीं है इसके लिए?
0: इसमें दो कंडीशंस हैं, एक तो है बिल्कुल मेनोपोज वाली तो
1: जी
0: उसको तो हम नहीं ठीक कर सकते,
1: जी
0: और एक जो होती है वो जो ओवरीज है ना
1: जी
0: उनमें इनसफिशियंसी हो जाती है, काम करने की उनकी क्षमता जो है वो कम हो जाती है, तो उसको तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही उनकी क्षमता खत्म हो गई है तभी मेनोपोज होता
1: और
0: है
1: वो
0: जब
1: भी शायद
0: ओवरीज की
1: एक एक
0: क्षमता,
1: उम्र देख के आप
0: वो
1: करते हो
0: भी
1: कि
0: एक
1: एक
0: उम्र तक
1: एज
0: होता है।
1: कि अगर
0: हाँ
1: बहुत
0: वैसे,
1: कम एज
0: हाँ
1: है तो आप शायद उसको
0: बिल्कुल
1: ट्रीटमेंट की
0: बिल्कुल,
1: जरूरत पड़ती
0: हाँ
1: होगी।
0: वैसे भी ऐसा होता है ना कि 35 की एज के बाद में तो वैसे भी हम लोग बोलते ही हैं ना, आप लोग भी
1: जी
0: सभी हर कोई जानता है कि
1: जी
0: जो रिप्रोडक्शन की एज होती है उसमें
1: थर्टी
0: धीरे धीरे
1: धीरे धीरे
0: कमी
1: कमी
0: आनी
1: होती है
0: शुरू हो जाती है,
1: जी,
0: जो
1: बिल्कुल
0: हेल्दी ओवम होते हैं वो कम होने
1: कम
0: शुरू हो
1: होने शुरू हो
0: जाते हैं,
1: जाते हैं
0: तो इसलिए उनका जो क्वांटिटी है वो कम होने लगती है,
1: जी।
0: तो उस तरीके से अगर हम देखें तो उसे फिर ठीक करने की कोई आवश्यकता भी नहीं और वो होता भी नहीं है, जो नेचुरल मेनोपोज है वो चाहे 30 की उम्र में हो गया हो या
1: जी
0: आमतौर से 35 से पहले कम ही देखा जाता है, 30 से पहले कम देखा जाता है,
1: जी
0: 35 में तो मैंने बहुत देखे हैं,
1: अच्छा
0: 30 से पहले होता कम है, बहुत
1: जी
0: कम होता है, मतलब आप बहुत पॉइंट कुछ परसेंट संभावना होगी, लेकिन जो उसके बाद

0: हैं तो वो उनको हम नहीं ठीक कर सकते।
1: डॉक्टर साहिबा, क्या जीवन शैली में कुछ बदलाव लाकर भी हम इस समस्या से बच सकते हैं?
0: बिल्कुल, लक्षणों से बच सकते हैं,
1: जी
0: समस्या से तो हम नहीं बच सकते, लेकिन लक्षणों से बच सकते हैं जो मेनोपोज के कारण होती हैं। जैसे हमने देखा कि हॉट फ्लशेज होते हैं तो आप अलग अलग लेयर्स में कपड़े पहने हैं, आपको लग रही है गर्मी लग रही है, आप एक लेयर उतार सकते हैं,
1: जी
0: या आप एसी में ठंडी जगह पे बैठ सकते हैं, रह सकते
1: जी
0: हैं। यूरिन की कई बार बार बार जाने की समस्या होती है, यूटीआई बहुत होता है, आप पानी की इनटेक आप बढ़ा सकते हैं, ज्यादा पानी आप पिए। और
1: जी
0: एक चीज और भी है कि अगर हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो
1: जी
0: फिर कोई भी समस्या, कोई भी हार्मोन कम ज्यादा क्यों होगा,
1: क्यों
0: है
1: होगा?
0: ना?
1: बिल्कुल
0: तो एक तो हम व्यायाम रखें अपना, नियमित करें,
1: जी
0: हम खाने पीने का पूरा अपना ध्यान रखें, हमारे शरीर में किसी भी विटामिन की या आयरन की, प्रोटीन की, कैल्शियम की कमी ना हो, तो जब सब चीजें संतुलित रहेंगी तो ये समस्या शायद ना आए या कम आए। तो इस तरह से हमें ध्यान इन चीजों का रखना चाहिए। थोड़ा आप व्यायाम करें जिसमें प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने
1: जी
0: मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए व्यायाम से आप शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो इन चीजों का ध्यान रखें।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि एक बार अगर मीनोपॉज हो जाता है तो ना तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं और वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप होता है। तो अगर अर्ली मीनोपॉज होता है तो क्या इसकी कुछ जटिलताएं या जोखिम है?
0: अगर अर्ली हो गया है और उसके सिम्टम्स आ रहे हैं,
1: जी
0: जो भी ये परेशानी वाले सिम्टम्स होते हैं, तो ये उनको फिर लंबी उम्र तक परेशान करते हैं।
1: जी
0: तो ज्यादातर जो भी इसके लिए थेरेपीज होती हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जो हार्मोन कम होते हैं उनको
1: जी
0: बाहर से दे के और क्वांटिटी ठीक रखने की, ताकि, क्योंकि क्या होता है कि जो इस्ट्रोजन है वो हमारी जो हड्डियां हैं
1: जी
0: उनको भी मजबूत बनाता है,
1: बिल्कुल
0: तो उसमें जो है वो पोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम बोलते हैं,
1: जी
0: डेंसिटी, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है, कई बार हार्ट की समस्या भी हो
1: जी
0: सकती
1: वही मैं
0: है,
1: जानना चाह रही थी
0: ब्लड
1: कि कई
0: प्रेशर
1: बार
0: वगैरह भी।
1: ऐसा भी सुना जाता है कि अर्ली मेनोपॉज जिन महिलाओं को हो जाता है उनको हृदय संबंधित बीमारियां भी जल्दी ग्रसित हो जाती हैं वो।
0: बिल्कुल, तो इसलिए उस उन चीजों को देखते हुए अगर कोई समस्या दिख रही है तो उसके लिए ट्रीटमेंट उनको दिया जा सकता है। और मोस्टली क्या होता है कि जो हम 45 से 60 की उम्र बोलते हैं, तो लगभग अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है तो फिर वो उसको जो नेचुरल उसकी एज होती है मेनोपोज की,
1: जी
0: उस एज तक उसको कंटिन्यू रखते हैं,
1: मतलब
0: ताकि, हाँ, ताकि जो
1: हार्मोन थेरेपी
0: नेचुरल
1: आप उस एज तक
0: एज
1: देते
0: तक,
1: हैं?
0: जैसे 50-51 की एज है लगभग,
1: जी
0: तब तक उसको कंटिन्यू रखते हैं
1: जी
0: ताकि जो नेचुरल मेनोपोज की एज आ जाए
1: जी
0: तो वो फिर परेशानियां कम हो जाए।
1: अभी आपने कहा कि उस एज तक हार्मोन थेरेपी हम जारी रखते हैं, तो क्या इस जो एज जो ये प्रोसेस होता है इस बीच में भी पीरियड्स आते हैं या पीरियड्स बंद ही हो जाते हैं और
0: नहीं,
1: उसके
0: बंद
1: बाद
0: नहीं,
1: सिर्फ हम हार्मोन देते रहते हैं ताकि
0: हाँ,
1: जो
0: हार्मोन
1: शरीर
0: देते
1: में
0: रहते
1: उसका
0: हैं,
1: साइड
0: हाँ
1: इफेक्ट है वो ना हो,
0: बिल्कुल, साइड इफेक्ट ना हो और उस हार्मोन की कमी की वजह
1: कमी
0: से
1: ना
0: जो
1: हो।
0: समस्याएं
1: जी
0: हैं,
1: जी वो ना
0: बाकी
1: हो।
0: और भी हमारे चीजें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है ना,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो समस्याएं ना आए उसके लिए ये हार्मोन देना होता है, उसको
1: जी
0: रिवर्स तो हम वापस
1: नहीं
0: पीरियड
1: कर
0: को
1: सकते।
0: नहीं कर
1: जी
0: सकते।
1: डॉक्टर साहिबा, जैसा आपने बताया कि आजकल काफी सुनने को मिलता है हार्मोन थेरेपी और ये मीनोपॉज में भी दी जाती है और पीसीओडी और भी बहुत सारी बीमारियों में महिलाओं को दी जाती है, तो ये कितनी सुरक्षित है?
0: सुरक्षित को तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी हार्मोन जब हम एक्स्ट्रा, कमी है तभी हम दे रहे हैं उसको,
1: जी
0: तो जब हम एक्स्ट्रा देते हैं तो उसके भी कई साइड इफेक्ट हो जाते हैं शरीर में कई बार।
1: जी
0: तो हमेशा जब भी ये इस तरह की थेरेपी दी जाती है तो हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही दी जाती।
1: बहुत अच्छी बात है आपने डॉक्टर साहिबा हमें बताई। हम आशा करते हैं कि हमारी जो बहनें हैं जो इस समस्या से गुजर रही हैं या मीनोपॉज के समय से गुजर रही हैं उनके लिए आपके द्वारा दी गई ये जानकारी बहुत कारगर साबित होगी। अंत में डॉक्टर साहिबा मैं इतना ही जानना चाहूंगी कि समाज में इन चीजों के लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, किसी ने कह दिया कि तुम्हें बहुत जल्दी मीनोपॉज हो गया है, ऐसा क्यों हो गया है, तो इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए आप हमारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं यही कहूंगी कि ये हमारा शरीर है,
1: जी
0: शरीर एक समय की मशीन है,
1: जी
0: अपने समय से सब कुछ होता है यहाँ पर,
1: जी
0: और अगर समय से पहले भी कुछ हो गया है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अपने डॉक्टर के पास जाएं अगर आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं इसके, इस चीजों से घबराएं नहीं
1: जी
0: और डॉक्टर के पास जाएं, और जो जो भी उसके लिए जांच होंगी वो डॉक्टर करके और आपको फिर सही सलाह देंगे, तो घबराने की या इधर उधर से पूछ के पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और अपना ख्याल रखें अपने खान पान का।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमारी श्रोता बहनों को दी, तो हम यही आशा करते हैं कि हमारी बहनें आज के इस हमारे सेशन से जरूर लाभान्वित हुई होंगी और आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: बहनों, ये थी डॉक्टर नीरजा शर्मा जो हमें बता रही थी कि महिलाओं में समय से पूर्व मेनोपॉज कारण, लक्षण और निदान के विषय में। तो चलिए बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब क्रम है आधी आबादी का। आइए देखते हैं कि आज की हमारी आधी आबादी की नायिका कौन है। बहनों, आधी आबादी के क्रम में आज एक ऐसी महिला की कहानी को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिनकी वैसे तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जिन्होंने समाज के हित के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और आज इन्हीं कार्यों के बल पर समाज में एक पहचान बनाई। परंतु आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो वास्तव में एक बहुत ही नेक कार्य है। बहनों, हम आज बात करेंगे किरण चोपड़ा जी की, जो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की संस्थापक अध्यक्षा और पंजाब केसरी द हिंद समाचार लिमिटेड की निदेशक के तौर पर कार्य कर रही हैं।
2: किरण चोपड़ा एक साधारण गृहिणी, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, एक समाज सेविका के रूप में, एक ऑफिस में काम करने वाली, एक JR मीडिया को चलाने वाली, पंजाब केसरी पब्लिशर्स की डायरेक्टर और दुनिया में एक नए तरीके का नया अनूठा काम बुजुर्गों के लिए करने वाली। पल पल में चैलेंज आते हैं लाइफ में, ये मैं आपको हंसते दिखाई दे रही हूँ, हंसना मेरा काम है, स्माइलिंग रहना भी मेरा है अंदर से, ये अंदर से है, आपके बाय बर्थ होती हैं चीज़ें। और लाइफ इज चैलेंज, ये नहीं कि मेरी लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं आई, बहुत आई हैं, हमेशा हमने मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर अपनों के ठगने से ही हम जमीन पे आ गए थे, पर हमने बहुत मेहनत की, कभी भी दिल नहीं छोड़ा, अभी भी बहुत सी कठिनाइयां आती हैं कि हमारा भारत देश महान है, हमारे भारत की संस्कृति परंपराएं देशों विदेशों में जानी जाती हैं।
1: मैंने जिस नेक कार्य की हम बात कर रहे थे उसकी शुरुआत किरण चोपड़ा जी ने 15 वर्ष पहले की। उन्होंने वरिष्ठ नागरिक एडॉप्शन क्लब की स्थापना की, जिसके द्वारा जो बच्चे अपने माता पिता की सही तरह से देखभाल नहीं कर सकते ऐसे बुजुर्गों को अडॉप्टेड किया जाता है, और इन बुजुर्गों को अडॉप्ट करने वाला परिवार उन बुजुर्गों की देखभाल का पूरा खर्चा वहन करता है। वास्तव में यह अपने आप में एक अनोखा और बहुत ही नेक काम है, जिसके द्वारा बुजुर्गों की सही से देखभाल भी हो जाती है और उन्हें एक परिवार भी मिल जाता है। आखिर क्या है यह प्रक्रिया और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, आइए जानते हैं उन्हीं के द्वारा।
2: उनके बच्चे आते हैं हमारे पास कि मैम बहुत महंगाई है, हम अपने माँ बाप को नहीं रख सकते, तो बड़ा शॉकिंग लगता है कि देखो बच्चे माँ बाप ने जिनको पाला वो आज ये कह रहे हैं। तो उनको मैं कहती हूँ कि ओल्ड होम नहीं भेजेंगे हम, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं ओल्ड होम नहीं लाइक करती, क्योंकि हमारा जो देश है वो श्री राम का देश है, तो इसमें ओल्ड होम नहीं होने चाहिए। तो मैं उनको कहती हूँ आप इनको घर रखें, इनको हम अडॉप्ट कराएंगे, संपन्न लोगों से अडॉप्ट करवाती हैं। फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड आई हैव स्टार्टेड अडॉप्शन ऑफ सीनियर सिटीजन। अडॉप्शन डजंट मीन कि उनको घर लेके जाना है, उनकी मेडिसिन और उनके खाने पीने का खर्च, और बच्चे खुशी खुशी रख लेते हैं। उनको मैं कहती हूँ कि देखो ओल्ड होम छत रोटी तो दे देंगे पर अपनापन नहीं देंगे। तो बहुत से घरों में बुजुर्ग अपने घरों में सेटल हैं, लगभग 500 के करीब हैं, पर आना जाना लगा रहता है। कोरोना के टाइम तो 250 ही रह गए थे, 250 भी कम, क्योंकि बहुत चले गए थे, फिर अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और वेटिंग लिस्ट चलती है कि 5,000 की तो वेटिंग लिस्ट है नहीं ढूंढती, अपने आप ही अप्रोच करते हैं, क्योंकि सबको ऑलमोस्ट लोगों को मालूम है कि यहाँ बुजुर्गों की सेवा होती, तो आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेन्युइन केस है, केस जेन्युइन है, तो फिर हम उनको कहते हैं कि आओ, और हमारी कमेटी बनी हुई है, वो जाकर देखती भी है। एक बार एक बुजुर्ग आया तो उसके घर AC भी लगा हुआ था, कुत्ता भी था रखा हुआ, डॉग रखा हुआ था, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आपको क्या जरूरत है सहायता की, तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, तो कहते एक मिनट आप सबको बाहर भेज दो, मैं आपको बताना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को शुगर है, मेरे घर में जिस टाइम खाना है उसी टाइम मिलेगा, मेरे को पहले भूख लगती है, दवाई लेनी होती है, दूसरा मैं अकेली बैठी रहती हूँ, मेरे पास कोई बच्चा नहीं आता, अगर मैं थोड़े चॉकलेट ले लेती हूँ ना तो पोते भी आते हैं, पोतियाँ भी आती हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कर दिया उनका। और अडॉप्शन कोई हैवी नहीं है ज्यादा, एक बुजुर्ग का 1,000 से स्टार्ट किया था, 1,000, 2,000, 3,000 और बहुत बीमार है तो 5,000, कोई एक करे बुजुर्ग, कोई 10 करे, कोई 50 करे।
1: किरण चोपड़ा की अगर और उपलब्धियों की बात करें, बहनों, किरण चोपड़ा एक पत्रकार, एक उद्यमी, शिक्षाविद और सामाजिक रूप से मानवतावादी व्यक्तित्व की पहचान से जानी जाती हैं। किरण का जन्म 1 अगस्त 1958 में दिल्ली में हुआ था। किरण ने दूरदर्शन में भी अपनी सेवाएं दी हैं। अश्विनी कुमार चोपड़ा, जो एक वरिष्ठ पत्रकार और 16वीं लोकसभा के पूर्व सदस्य भी थे, की पत्नी होने के नाते वे पंजाब केसरी द हिंद समाचार लिमिटेड की निदेशक हैं एवं अखबार के संपादकीय प्रबंधन उत्पादन अनुभाग का कार्यभार संभालती हैं। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की संस्थापक होने के नाते वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक विकास, विशेष रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ नैतिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में वरिष्ठों के सम्मानजनक जीवन की दिशा में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से गत 15 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। 2016 में उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था। तो बहनों, ये थी एक संक्षिप्त परिचय किरण चोपड़ा जी का, जिन्होंने वास्तव में वो कार्य किया जिस कार्य को करने के लिए किसी ने सोचा भी ना होगा, और आज वो अपने इसी नेक कार्य के द्वारा जानी जाती हैं। तो बहनों, आधी आबादी के बाद अब क्रम हो चला है आपके मनोरंजन का। तो चलिए बहनों, सुनते हैं फिल्म अंदाज का ये प्यारा सा गीत।

तो बहनों, फिल्म संगीत के बाद अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले जरूर जानना चाहेंगे कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, तो उसके लिए आपको लिखने होंगे हमें पत्र। और बहनों, पत्र लिखने के लिए नोट कीजिए हमारा पता, कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। इसी के साथ अपनी बहन भावना अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लोकधारा कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित संगीत संध्या स्वरांजलि के संपादित अंश। इसमें आपको पहले सुनवाते हैं सोनल टॉक का गाया लोकगीत।

सोनल टाँ का गाया लोकगीत आपने सुना। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित संगीत संध्या स्वरांजलि के संपादित अंश इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं। और आइए अब इस क्रम में आपको सुनवाते हैं भुवनेश गिरी की गाई रागिनी।

0: अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनके आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि DK शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में

0: लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
2: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बगही में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से
1: नहाद। श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
4: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान

0: 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बालासाहत निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आप पेश है कार्यक्रम एक ही संगीतकार। एक ही संगीतकार कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। श्रोताओं, आज का ये संपूर्ण कार्यक्रम समर्पित है हिंदी फिल्म संगीत के उस महान संगीतकार को, जिन्हें भारतीय फिल्म संगीत का भीष्म पिता कहा जाता है। जी हाँ, अनिल विश्वास। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं अनिल विश्वास का संगीतबद्ध किया हुआ गीत। फिल्म है चार दिल चार राहें। आवाज़ मीना, महेंद्र कपूर, मुकेश और साथियों की है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही संगीतकार, और एक ही संगीतकार क्रम में श्रोताओं हमारे आज के फनकार हैं संगीतकार अनिल विश्वास। श्रोताओं, अनिल विश्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बरिसाल में हुआ, जो आज बांग्लादेश में है। बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी। अपनी माताजी शास्त्रीय संगीत उनकी जानती थी और वहीं से उन्हें संगीत की शुरुआती प्रेरणा भी मिली। श्रोताओं, युवावस्था में वो स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे, लेकिन संगीत के प्रति उनका लगाव उन्हें कोलकाता और फिर मुंबई ले आया, जहां उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को नई दिशा दी। अनिल विश्वास ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोकधुनों और पश्चिमी संगीत का बहुत सुंदर मेल अपने गीतों में प्रस्तुत किया है। सन 1943 में आई फिल्म किस्मत का गीत दूर हटो ऐ दुनिया वालों उस समय देशभक्ति की पहचान बन गया था। ये गीत आज भी लोगों में जोश भर देता है। तो आइए आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: श्रोताओं, संगीतकार अनिल विश्वास केवल एक संगीतकार ही नहीं बल्कि महान गायकों के मार्गदर्शक भी रहे हैं। जी हाँ, मुकेश, तलत महमूद और लता मंगेशकर जैसे कलाकारों की प्रतिभा को पहचानने और निखारने में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वे गीतों की रिकॉर्डिंग से पहले खूब रियाज करवाते थे और हर शब्द की स्पष्टता पर विशेष ध्यान देते थे। फिल्म तराना का गीत सीने में सुलगते हैं अरमा उनके मधुर और भावपूर्ण धुनों का शानदार उदाहरण है। तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ में सजा ये गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसता है। तो लीजिए, आप भी सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, संगीतकार बिस्वास ने अनोखा प्यार, आरजू, हमदर्द, रोटी और आराम जैसी कई फिल्मों में यादगार संगीत दिया है। उनके दिए गए संगीत में कभी दर्द की गहराई सुनाई देती है तो कभी प्रेम की कोमलता, और यही वजह है कि उनका संगीत समय के साथ और भी खास बनता चला गया। लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म हमदर्द का गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और मन्ना डे की है।

श्रोताओं, बाद के वर्षों में संगीतकार अनिल विश्वास आकाशवाणी से भी जुड़े रहे और संगीत की नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा माना कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा है और शायद यही कारण है कि उनके गीत आज भी उतनी ही आत्मीयता से सुने जाते हैं। कार्यक्रम समापन करने से पहले सुनवाते हैं आपको अनिल विश्वास का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म छोटी छोटी बातों से। ये गीत आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की है।

श्रोताओं, संगीतकार अनिल विश्वास को भारतीय संगीत जगत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। हिंदी फिल्म संगीत में शास्त्रीय मधुर धुनों और ऑर्केस्ट्रा के सुंदर प्रयोग के कारण उन्हें भारतीय फिल्म संगीत के अग्रणी संगीतकारों में गिना जाता है। हिंदी फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयां देने वाला महान संगीतकार अनिल विश्वास ने 31 मई 2003 को इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, लेकिन श्रोताओं, उनकी मधुर धुनें, उनका संगीत और उनकी यादें आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं। उन्होंने अपने संगीत से केवल गीत नहीं सजाए, बल्कि

भावनाओं के सुरों में डालकर एक ऐसा सुनहरा रजा जिसे कभी बुलाया नहीं जा सकता। तो चलते चलते अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं आप ही का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म लाडली का गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

अश्रोताओं, अब एक ही संगीतकार क्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही संगीतकार, जिसमें हमारे आज के फनकार थे संगीतकार अनिल विश्वास। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी संध्याकालीन सभा में संध्या 4 बजे आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजने को हैं। हमारी द्वितीय प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हो या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए

0: तब विनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड हैं मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूँ और ये एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए। बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है।
0: जी, होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुंचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार है भेजिए जरूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, एमबीए इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली सीआरपीएफ। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये सीआरपीएफ ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था वर्दी की तरफ, एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, सीआरपीएफ भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस जमाने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है चारों तरफ, आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन सीपीओस कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से यूपीएससी ने ले लिया, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती हैं। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये तीन चार पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाई फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और यूपीएससी की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं, आज की डेट में बहुत आसान है।
0: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए, तो इसके अंतर्गत सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ?
1: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर, आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर, सीआरपीएफ ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल वीआईपी सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
0: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
1: इसमें एनएसजी और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है, बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
0: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
1: मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फोन नया नया आया था तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई दूरभाष फोन के माध्यम से, लोगों ने बताया तो बधाइयां आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था मेरे बैंक में, सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
0: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकार का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण

0: को रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, ऐसे सुखद बात और को छू नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जो जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जो आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट, एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा CRPF में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
0: अपनी तैयारी जिसको बच्चे
1: हाँ
0: अक्सर
1: बहुत
0: करते हैं
1: मशक्कत नहीं करनी पड़ी।
0: करने से
1: उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
0: जी। तो CRPF तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद CRPF में रहते हुए यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
1: जी जी
0: जी तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें, तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी, और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट के की याद में वैलर डे मनाया जाता है CRPF में। CRPF ने इन तीनों थिएटर्स जम्मू कश्मीर

0: एलडब्ल्यू थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में. तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो सीआरपीएफ का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है. इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, सीआरपीएफ अपने आप में एक मिनी इंडिया है. हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सीआरपीएफ एक मिनी इंडिया. आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे. और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं. सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है. सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है. सीआरपीएफ को एक अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 39 शौर्य चक्र, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक. तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है गैलेंट्री मेडल्स गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है. तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है.
1: जी निश्चित ही आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज्यादा आसान कर दिया. और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए. तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ. सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है. जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है. और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम्स हैं?
0: देखिए सीआरपीएफ में हमारा चूंकि मूवमेंट काफी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है. तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं. तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं. उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला. टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर रस्सा कस्सी का जो गेम होता है वो, उससे काफी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है. तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है. तो चाहे मैं एक छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में.
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की
0: भावना.
1: क्या निसंदेह. तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडर अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए. सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स.

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के

0: मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाली मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स ऑलमोस्ट अ ईयर एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है, और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पीनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
1: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
0: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी, और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा, और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा CRPF की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और CRPF ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें CRPF की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था, और CRPF ने मतलब सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
1: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
0: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और CRPF ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहां का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो CRPF का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो CRPF आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी CRPF के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो CRPF एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा CRPF का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी CRPF, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए CRPF हमेशा तैयार रहती थी।
1: वाह, क्या
0: बात। तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और दो मौकों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया। तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: वाह, क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह CRPF, आप CRPF में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है, वो आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं। तो तो ये अपने आप में

0: एक अनुभव है और आप उसको जीते हैं और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं, तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है।
1: जी, एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है।
0: जी,
1: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके। तो क्या आपकी किसी, ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था, आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने, उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो CRPF में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं CRPF का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ, जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
1: बात है 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिया आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो CRPF करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी CRPF करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको, उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से, स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं। हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप CRPF में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल CRPF का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
0: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज, ऐसी एक्टिविटीज में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था। और CRPF भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए। तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का CRPF के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के, CRPF ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है। आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो CRPF का है, और CRPF लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी

0: यूनिक है, और मैं इसलिए सीआरपीएफ मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
1: क्या बात है। जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है। क्या ऐसा होता है?
0: बिल्कुल, रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में। एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं। आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
1: जी।
0: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहनकर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
1: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जब आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत। बिल्कुल, वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत सा आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्य निष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है तो वो अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी जबानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुंचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी जिंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशंस पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं, ऐसे में उनका योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत है मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है तो एक, मैं इस मामले में अगेन मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बैठा लिया, और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी

0: में जाती है वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निसंदेह। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हो या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी, आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहां आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहां पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी, आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी जिंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, कोई नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: तो
0: हाँ जी
1: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरा मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिनाका गीतमाला लेकर आते थे। और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतजार करते थे, और हर एक सप्ताह की उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिनाका गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या गोल्डन वॉइस थी उनकी। तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताजा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का, इस मौके के लिए।
0: बिल्कुल जी। और ये जो सफर है ये बहुत ही सुखद सफर है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने, अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
0: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से, कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है,
1: निसंदेह।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर।
1: धन्यवाद। जय हिंद।
0: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। लीजिए आप सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। श्रोताओं, आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लगातार विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है और इसी क्रम में कार्यक्रम रिश्ता ये खास है आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभवों को आपसे साझा करता है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसे श्रोता से जो तब से इस केंद्र का हिस्सा रहे हैं जब यह केंद्र पहली बार अस्तित्व में आया था। तो आइए उनके अनुभवों को सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: मैं कृपाल सिंह आज एक ब्लैंड आदमी हूँ और मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ और मैं काफ़ी टाइम से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जन्म सन 1957 को हुआ था और उसके बाद सन 64 में मेरी आँखें चली गईं। उस टाइम मैं लगभग 7 वर्ष का था। अच्छा, तभी से मैं रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा बचपन रेडियो से शुरू है एक तरह से। जब रेडियो साइकिल पर बैठा कर, मतलब साइकिल पर रख कर रेडियो लोग गांव में जाते थे तो हम छोटे छोटे जब थे भाग भाग के देखते थे, भाई क्या बज रहा है, ये क्या चीज़ है, इस तरह से। तब हम काफ़ी छोटे थे, हमें दिखाई देता था उस टाइम में। और फिर जो सन 66 में मेरे हाथ में रेडियो आ गया, उस टाइम दिल्ली का प्रोग्राम चलता था हमारे यहाँ, दिल्ली विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो, तो वहाँ से सुनते थे हम। अच्छा, एक श्रीलंका का रेडियो स्टेशन था सिडोन, वहाँ से हम बिना का सुनते थे। और एक प्रोग्राम आता था आप ही के पसंद कार्यक्रम, वो भी हम वहाँ से सुनते थे। 2-3 प्रोग्राम वहाँ से सुनते थे, बाकी दिल्ली से सुनते थे हम। अच्छा, मुझे रेडियो से बहुत नॉलेज मिली, मतलब हर कार्य क्षेत्र में, जैसे बोल चाल और क्या अच्छा क्या बुरा, मैं रेडियो के हर एक प्रोग्राम सुनता था। कोई डॉक्टर का प्रोग्राम आता था वो सुनता था, किसी का इंटरव्यू आता था वो सुनता था, और जनरल नॉलेज की बातें आती थी वो सुनता था, किसी जगत आता था वो सुनता था। पहले गांव में लोग बहुत प्रेम से रहते थे क्योंकि कम लोग थे आबादी।

कम थी, तो एक के घर में जिस किसी की रेडियो थी तो वहाँ आके उसके जो बैठक पर सब लोग बैठ जाते थे और हरियाणा से प्रोग्राम चलता था गुरुदास जी में कर रखा, तो वो बड़े लगाव से लोग सुनते थे, बहुत प्यार से बैठे रहते थे सारे। तब तो वो प्रोग्राम ख़त्म होता था, फिर कहते थे भाई कल को जरूर सुनाइए भैया हमें प्रोग्राम, ये सारे लोग इस तरह से ही बातें करते थे, काफ़ी खुश रहते थे। अच्छा, रेडियो हमारा ऐसा जीवन साथी एक तरह से है कि जैसे कृषि क्षेत्र में हमें बहुत नॉलेज देता है रेडियो, हर काम करने के लिए हमें रेडियो बताता है कि आपको ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसा है, तो उससे हमें बहुत लाभ होता है और ज्ञान बढ़ता है रेडियो से बहुत ज़्यादा। आदमी आज मुझे इसकी वजह से इतनी नॉलेज है कि मैं हर हर जगह बात कर सकता हूँ, हर आदमी से मिल सकता हूँ, मुझे कोई झिझक नहीं होती, मेरे अंदर इतनी नॉलेज रेडियो की वजह से बढ़ी है। अब हमारा ये नजीबाबाद जब रेडियो स्टेशन चला तो इसकी ट्रायल जब होती थी तो हम उस टाइम में एक चुपचाप रेडियो स्टेशन बोलता था तो हम उसका सुनते थे, तो वहाँ से आती थी जैसे लैला मजनू की स्टोरी चलती थी, गाने चलते रहते थे उसके, हमें बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छे प्रोग्राम देते थे वो और चुपचाप ही बंद रहते थे। कभी कभी एक एक घंटे के गाने चलाते थे वो, 1 घंटा गाने चला दिए, 1.5 घंटा गाने चला दिए, फिर अपना चुपचाप बंद कर लिया। तो ये निजामाबाद रेडियो स्टेशन की ट्रेल थी, तो जब उसकी ट्रेल हम सुनते थे बड़ा मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था और हम बहुत खुश होते थे कि मतलब हमारे पास इतना बढ़िया स्टेशन बना है ये, तो हमें काफ़ी अच्छा मनोरंजन रहा करेगा हमारा, तो खूब चलता रहा इस तरह। उसके बाद सन 1978 को इसका जो मतलब उद्घाटन हुआ और ये अपना चल गया 27 जनवरी को, तो तब से हमें और अच्छा मतलब बोला। अब यहाँ के प्रोग्राम बहुत बढ़िया थे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे, अश्विनी जी थे और क्या नाम तुम्हारे ये थे, रजनीश गुप्ता जी थे और बहुत मतलब अनाउंसर थे वहाँ के, प्रेम सडाना भी रहे, यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम देते थे। वो बात करते करते ही तस्वीर जैसे खींच देता है, इस तरह से खींच देते थे तस्वीर वो हर चीज़ की, और मतलब बहुत बढ़िया बोलते थे सडाना जी, आज भी मतलब सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। और एक भारती जी थे और विनय ध्यानी थे, ये तो अभी की बात है, तो मतलब काफ़ी अच्छा प्रोग्राम देते थे सब लोग, ये आज भी अनाउंसर बहुत अच्छे अच्छे हैं जो मतलब प्रसारण चलाते हैं यहाँ से, जैसे एक नौटियाल जी हैं और नेहा हैं और बहुत लोग हैं यहाँ, मैं सबके तो नाम नहीं ले सकता मगर प्रोग्राम में ज़्यादातर सुनता हूँ, जैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्रोग्राम जैसे हेलो नजीबाबाद और जागरूक श्रोता, कुछ याद है जरा जरा और थारी पसंद और क्या नाम लोग मंजरी और कृषि जगत और ये गाने के चित्रपट संगीत वगैरह, और जो रेडियो के 90 साल के उपलक्ष्य में चल रहा प्रोग्राम वो भी मैं बहुत सुनता हूँ। अगर छूट जाता है किसी दिन तो मुझे ऐसा लगता है मैंने पता नहीं खाना नहीं खाया, तो मुझे रेडियो से बहुत लगाव है और मैं बहुत ही मतलब इसे पसंद करता हूँ रेडियो को। हमारे एक चाचा थे वो मास्टर थे श्री रसाल सिंह, तो दिल्ली से एक प्रोग्राम आता था कृषि पाठशाला, वो पूछते थे सवाल जवाब करते थे वो, तो उन्हें वहाँ से वो मिली थी क्या नाम ये स्प्रे मशीन जीत कर लाए थे वहाँ से, वो उन्हें सम्मानित करा गया था, उन्हें भी रेडियो बहुत पसंद था। अच्छा, एक हमारे भाई हैं मास्टर श्री राम सिंह, वो भी रेडियो बहुत सुनते हैं, उनके पास आज भी रेडियो है और मेरे पास तो अब भी रेडियो है, मैं तो हर टाइम रेडियो सुनता रहता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे काम तो है नहीं, मैं ब्लाइंड आदमी हूँ। पहले जब मैं खेतों में काम वाम करने जाता था तो अपने रेडियो अपने साथ ले कर जाता था और वहीं अपने पेड़ वेड़ में टांग देता था या अपना पास रख लेता था, सुनता रहता था प्रोग्राम, तो मुझसे तो रेडियो वगैरह नहीं बीतती, चाहे खाना एक टाइम ना मिले कोई बात नहीं। अच्छा, जब मेरी भांजी ने मेरी बहन की लड़की ने हाई स्कूल पास किया तो मैंने उस टाइम उसे एक रेडियो दिया, रेडियो लेकर कर बहुत खुश हुई, तो उसके बाद उसने ये मन बनाया कि मैं अपने मामा जी को रेडियो पर बोल कर दिखाऊंगी, तो वो अनाउंसर बड़ी नजीबाबाद में, नाम था उसका प्रतिभा। तो रेडियो से जो भी आदमी लगा है उसे कुछ ना कुछ मिला जरूर है, और आज भी जो है मतलब रेडियो से इतने प्रोग्राम चलते हैं, कृषि जगत में जैसे प्रमोद जी हैं और आलोक जी हैं, सुरेंद्र हैं, ये काफ़ी अच्छे मतलब प्रोग्राम करते हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे वो है तुम्हारे ये थे श्रीवास्तव, वो रात के प्रोग्राम में ज़्यादा आते, मुझे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगता था उनका। तो हमारे जो अनाउंसर वगैरह हैं जो आज के बहुत मेहनती हैं, बोलचाल

0: बहुत बढ़िया है, सभ्यता सब प्रोग्राम पेश करते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी ने बीते 90 सालों में न जाने कितनी पीढ़ियों को अपने साथ जोड़ा। श्रोता कृपाल सिंह जी, जिनको अभी हम सुन रहे थे, तकरीबन 65-70 साल की उनकी उम्र है, और जब वो 7 साल के थे तब से लगातार आकाशवाणी को सुन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये इस बात को दर्शाता भी है कि आकाशवाणी का दायरा कितना बड़ा है। इतने वर्षों से वो लगातार उत्तम गुणवत्ता के प्रसारण अपने श्रोताओं को उपलब्ध करा रहा है। कार्यक्रम का समय अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, लेकिन इस बीच हम आपको ये बता दें कि आकाशवाणी पारंपरिक रेडियो से आगे बढ़कर आकाशवाणी ने खुद को डिजिटल दुनिया में अपग्रेड किया है। इसके आधिकारिक प्रसारण और समाचार न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से ये न केवल भारत बल्कि 100 से अधिक देशों में रहने वाले भारतीयों तक अपनी पहुंच बनाए हुए है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का ये अवसर सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विकास की यात्रा का एक जीवंत दस्तावेज है। श्रोताओं, कार्यक्रम रिश्ता ये खास है में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े पुराने श्रोताओं के अनुभवों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 होने को हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल की दोनों सभाओं के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे लेखक श्री उपेंद्र नाथ अश्क के लिखे नाटक लक्ष्मण रेखा का पुनः प्रसारण। निर्देशन सत्येंद्र शरत का होगा और प्रस्तुति सहायक होंगे सुदर्शन कुमार। कृषि जगत कार्यक्रम में आज किसान भाइयों से चर्चा का विषय होगा फूलों की खेती से रोजगार, तो सुनना ना भूलें। कार्यक्रम शाम 6:05 पर प्रसारित होगा।

युववाणी कार्यक्रम सुनिएगा अब से कुछ ही देर में शाम 5:15 पर। कार्यक्रम में आज गुफ्तगु बस यूं ही के अंतर्गत युवा मेहमान अनम से बातचीत करेंगी अलीना। साथ ही कार्यक्रम में आज रहस्य सीरीज सीजन 2 का तीसरा एपिसोड प्रसारित होगा जिसका शीर्षक है खामोश घाटी। आलेख एवं प्रस्तुति सहयोग होगा आदिल सैफी का। आज शाम 7:32 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित संगीत संध्या स्वरांजलि के संपादित अंश प्रसारित किए जाएंगे।

कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल के अंतर्गत आज शाम 6:45 पर सुनिएगा विशेष भेंटवार्ता, जिसमें आर्यन सैनी से बातचीत करेंगी अलका। यह था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के विषय में। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल सुबह 10:30 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। इस कार्यक्रम में श्रोताओं से बातचीत का विषय होगा तंबाकू विकास के लिए खतरा। रात 9:30 पर समय रहेगा लोकप्रिय फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का।

कानूनी सलाह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा आज शाम 6:45 पर। इस कार्यक्रम में आज एडवोकेट सत्यवीर त्यागी श्रोताओं को जानकारी देंगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में। आपसे बातचीत करेंगे एसके नौटियाल। शाम 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत सुनेगा किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। कल सुबह 7:10 पर समय रहेगा कार्यक्रम खेती की बातें का। इस कार्यक्रम में किसान भाइयों को जानकारी दी जाएगी अमरूद के फूल फल गिरने से बचाव विषय पर। सुबह 7:05 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुनिएगा जानकारी बालों की देखभाल। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का एपिसोड सुनिएगा कल सुबह 11:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आप सुन सकते हैं कल दोपहर 12:30 पर। कल दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार प्रसारित किया जाएगा जिसमें चर्चा का विषय होगा आधुनिक मशीनों का उपयोग और खेतों में काम करते समय लू से बचाव। साथ ही इस कार्यक्रम में कल मनीषा शर्मा की वार्ता प्रसारित होगी जिसका शीर्षक होगा ग्रामीण परिवेश में तंबाकू का सेवन एक गंभीर और जटिल सामाजिक स्वास्थ्य समस्या। लोकधारा कार्यक्रम का समय रहेगा कल दोपहर 1:45। इस कार्यक्रम में कलाकार भानुराम सुकोटी के गाए कुमाऊनी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल की दोनों सभाओं के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर। शाम के 5:15 होने को हैं। लीजिए अब सुनिएगा कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हेलो हेलो दोस्तों, विश अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, और आपके साथ हूँ आज मैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अक्षी त्यागी।
1: गुड इवनिंग दोस्तों, अक्षी के साथ हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो साथी अजमा।
0: तो दोस्तों, हम दोनों की तरफ से आपको और हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से आप सभी को ईद मुबारक हो।
1: दोस्तों, आज तो आप सभी बेहद खुश होंगे, और उस खुशी को दोगुना करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे से सेगमेंट और उनकी बौछार।
0: जी हाँ दोस्तों, आज है थर्सडे और इस दिन हमारे कार्यक्रम में होता है नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर।
1: साथ ही होंगे इमोशंस की बहार, रहस्यों का आगाज और कुछ गुफ्तगू भी।
0: लेकिन लेकिन लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे जान लेते हैं हमारे सेगमेंट बोझो तो जाने के अंतर्गत आज का सवाल,
1: जिसमें हमारा आज आपसे सवाल है, विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है।
0: जिसका सही जवाब आपको पहले से ही पता है कि कहाँ लिखकर भेजना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो ये सही जवाब है आपको लिख के भेजना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में।
1: तो जब तक आप हमें भेजते हैं अपना सही जवाब, तब तक हम आपको सुनवा देते हैं आज की शाम का यह पहला और खूबसूरत सा गीत।
2: Excuse me.

0: तो हेलो दोस्तों, अब वक्त है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट कुछ खास से आज का, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत कुछ खास।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एहसास की जो बाहर से एक जैसा दिखता है लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग होता है।
0: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। बीइंग अलोन और फीलिंग लोनली, अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन सच में दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है।
1: बीइंग अलोन मतलब अकेले होना, यानी आपके आसपास कोई नहीं। जैसे मैंने अभी पॉज लिया और मुझे आपको लग रहा होगा कि मेरे आसपास कोई नहीं है, आप अपने साथ समय बिता रहे हैं।
0: लेकिन फीलिंग लोनली मतलब भीड़ में रहकर भी अंदर से खालीपन महसूस करना, जब लोग साथ हो फिर भी दिल को लगे कि कोई समझने वाला नहीं है।
1: कभी कभी अकेले रहना बहुत सुकून देता है। आप खुद को समझते हैं, अपनी पसंद नापसंद को महसूस करते हैं।
0: दोस्तों, अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार यही समय हमें मजबूत बनाता है, अपने सपनों से जोड़ता है और खुद से प्यार करना भी सिखाता है।
1: लेकिन लोनलीनेस यानी अंदर का अकेलापन, वो धीरे धीरे इंसान को तोड़ने लगता है,
0: क्योंकि वहाँ सिर्फ लोग नहीं होते बल्कि अपनापन कम पड़ जाता है।
1: बिल्कुल, आज सोशल मीडिया पर भी हजारों लोग जुड़े हैं लेकिन दिल की बात सुनने वाला शायद एक भी नहीं।
0: एक छोटी सी बात, अगर आप अकेले बैठकर मुस्कुरा सकते हैं ना दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी अलोन हैं।
1: लेकिन अगर आप सबके बीच बैठकर भी रोना छुपाते हैं तो शायद आप लोनली हैं।
0: दोस्तों, जिंदगी में हर रिश्ता जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी रिश्ता है खुद के साथ।
1: क्योंकि जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है ना दोस्तों, तो अकेलापन उसे डराता नहीं बल्कि निखारता है।
0: अगर कभी आपको लोनलीनेस महसूस हो तो चुप मत रहिए दोस्तों।
1: आपके किसी अपने से आप अपने किसी से बात कीजिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, क्योंकि बातें दिल हल्का कर देती है।
0: याद रखिए, अलोन होना एक सिचुएशन है।
1: बिल्कुल, लेकिन लोनली महसूस करना एक एहसास है,
0: और हर एहसास बदल सकता है अगर साथ हो उम्मीद का और थोड़ा सा अपनापन।
1: तो दोस्तों, थोड़ा वक्त खुद को भी दीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी समझिए,
0: क्योंकि कभी कभी किसी का हाल पूछ लेना भी उसकी लोनलीनेस को कम कर सकता है।
1: तो दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए और खुशी से खुद से प्यार करते रहिए। और खुद से प्यार करना तो बिल्कुल मत भूलिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आप लोगों से प्यार करते हैं। और उसी प्यार के बदले हम आपके लिए आज एक और बड़ा खूबसूरत सा सेगमेंट लेकर आए हैं, जिसका आज हम आपको बता देते हैं एपिसोड नंबर 4 है, जो कि है लव स्टोरी, और हमारी लव स्टोरी है प्रणीता। तो अक्षय, क्यों ना अपने दोस्तों को आज की लव स्टोरी का ये 4th पार्ट सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल उज़्मा।
2: नजरों से नजरें मिली,

0: दिल धड़कने लगे कि धड़कने लगे। है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
1: नमस्कार, हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी शैली और आज है दिन परिणीता के पार्ट 4 का। तो पिछले भाग में आपने सुना कैसे शेखर और ललिता के बीच गलत फहमियां बढ़ती चली गईं। ग्रीन बाबू और ललिता के रिश्ते की बातें सुनकर शेखर अंदर ही अंदर टूटने लगा, लेकिन अपने अहंकार की वजह से वो अपने प्यार को स्वीकार नहीं कर पाया। और जब ललिता ने उससे पूछा कि अगर वो कहीं चली जाए तो उसे फर्क पड़ेगा, तो शेखर ने अपने दिल की बात दिल में छुपा ली। लेकिन शायद अब दोनों के बीच दूरियां बहुत बढ़ चुकी थी। समय धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से दूर ले जा रहा था। पहले जहां हर सुबह शेखर की शुरुआत ललिता की आवाज से होती थी, अब घर में अजीब सा सन्नाटा रहने लगा था। ललिता अब पहले से ज्यादा शांत हो गई थी। उसने अपने जज्बात दिल के अंदर ही दबा लिए थे। वो समझ चुकी थी कि शायद कुछ रिश्तों को सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है, उन्हें पाया नहीं जा सकता। उधर शेखर खुद से लड़ रहा था। वो हर जगह ललिता को ढूंढता, उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी मौजूदगी, लेकिन जब भी वो सामने आती उसका अहंकार उसे रोक देता। एक रात शेखर अपने कमरे में अकेला बैठा था। चारों तरफ बस खामोशी थी, लेकिन उसके अंदर बहुत शोर था। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब ललिता ने उससे पूछा था, क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा अगर मैं कहीं चली जाऊं? और पहली बार शेखर को अपने जवाब पर पछतावा हुआ। उसे एहसास होने लगा कि वो ललिता से सिर्फ जुड़ा नहीं था बल्कि उसके बिना अधूरा था। उसकी हर आदत, हर मुस्कान शेखर की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच खबर आई कि ललिता का रिश्ता कहीं और तय किया जा सकता है। ये सुनकर शेखर पूरी तरह टूट गया। उसे पहली बार डर महसूस हुआ, किसी अपने को हमेशा के लिए खो देने का डर। उधर ललिता भी अंदर ही अंदर बिखर रही थी। वो चाहती थी कि बस एक बार शेखर उसे रोक ले, उससे कह दे कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी दौरान ग्रीन बाबू ने शेखर से अकेले में बात की। उन्होंने शांत आवाज में कहा, आप शायद ललिता को समझ नहीं पाए। शेखर चुप रहा। तब ग्रीन बाबू ने कहा, ललिता ने हमेशा आपको ही अपना माना है और मैं सिर्फ उसका शुभ चिंतक हूँ। ये सुनकर शेखर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि जिस प्यार को वो समझ नहीं पाया, वो प्यार तो हमेशा से उसी का इंतजार कर रहा था। उस रात शेखर पहली बार खुद से हार गया। उसे महसूस हुआ कि प्यार जताना कमजोरी नहीं होता बल्कि सबसे बड़ी सच्चाई होता है। क्या अब शेखर अपने दिल की बात कह पाएगा? इतने दर्द और दूरियों के बाद भी ललिता उसे स्वीकार करेगी, या फिर किस्मत ने दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया है? जानने के लिए सुनिए परिणीता का 5वां यानी अंतिम भाग।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
5: हो जाओगे एहसास कर लोट को,
4: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
6: और डोज में क्या है?
5: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
7: क्या बात है, बड़ा ही सुंदर सूट पहना हुआ है आज तो।
6: तूने देखा भी आता सूट? और हाँ, तूने तो कहाँ ही देखा होगा।
7: बस बस, ज्यादा ना घमंड मत पाल, क्योंकि जो अंग्रेजों के कपड़े थे ना, वो भी अपने कपड़ों पे बहुत घमंड करते थे, और आज वही कपड़े ना हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले पहनकर घूमते हैं।
5: जी हाँ, मजा आ गया।
8: तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और आपको ले चलते हैं एक रहस्य की ओर। बिल्कुल, जैसा कि आप समझ ही गए हैं, मेरा इशारा है हमारे सेगमेंट रहस्य सीरीज की ओर, जिसमें आज आप सुनेंगे सीजन 2 में खामोश घाटी, और जिसका आज है एपिसोड नंबर 3। तो चलिए देखते हैं कि आज आखिर इस एपिसोड में क्या होने वाला है।
9: हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी लिसनर्स का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के सीजन 2 में। इस कहानी का नाम है खामोश घाटी, और यह है रहस्य सीरीज की तीसरी कड़ी, यानी एपिसोड नंबर 3।

अब जान लेते हैं अब तक की कहानी। कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर साल 1987 में। एडम नाम का एक माउंटेन क्लाइंबर 5 लोगों की टीम बनाकर चल पड़ता है एक अनोखे ट्रैक पर। उसकी मंजिल थी साइलेंट वैली, जो कि यूएस के कोलोराडो स्टेट में मौजूद थी। साइलेंट वैली बेहद ही खूबसूरत थी, हरे भरे पहाड़ और बर्फ से ढकी हुई उनकी पीक्स और ताज़ा साफ हवा। उन 5 लोगों की टीम चल पड़ती है। रास्ते में बहुत परेशानी आती है, लेकिन ये उन सभी के लिए एक एडवेंचर था। अब अगले दिन यानी 6 अक्टूबर साल 1987 को वो दिन उन्होंने वहीं गुजारा, लेकिन रात के तकरीबन 2:15 बजे डेनवर सिटी के पुलिस हेडक्वार्टर में एक अननोन GPS सिग्नल उनको नोटिस होता है, जो कि आ रहा था साइलेंट वैली से। वही साइलेंट वैली जहां एडम अपनी टीम के साथ कैंपिंग करने गया था। सुबह के 8 बजे डेनवर पुलिस हेडक्वार्टर से एक रिसर्च टीम उस अननोन GPS सिग्नल को ट्रेस करने के लिए निकलती है। टीम प्लान तैयार होता है और हेलीकॉप्टर्स और चॉपर की मदद से लोकेशन पर पहुंचा जाता है। 2 घंटों के अंदर ही पुलिस और रिसर्च टीम वहां पहुंच जाती है, लेकिन जो नज़ारा उन्होंने वहां देखा उनके होश उड़ गए। इंस्पेक्टर चार्ल्स की टीम वहां उतरी तो वहां का नज़ारा किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 5 टेंट ही वहीं थे अपनी लोकेशंस पर, लेकिन किसी भी टेंट में कोई हलचल नहीं थी। सब कुछ बहुत शांत था। नेजत ने अपनी गन लोड की और धीरे धीरे कैंप की तरफ बढ़ने लगे। वहां कोई डेड बॉडी नहीं थी, पर जो था वो और भी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि सारे टेंट्स अंदर से बाहर की ओर काटे गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बैठे इंसान ने किसी भयानक चीज से बचने के लिए चैन खोलने तक का भी इंतजार नहीं करा और उस टेंट को अंदर से ही फाड़ डाला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या महसूस किया होगा। कैंप के अंदर गैस स्टोव पर खाना रखा हुआ था, जो कि पूरी तरह से जम चुका था, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर -30 डिग्री के आसपास था। रेस्क्यू टीम को वहीं थोड़ी दूरी पर एडम का GPS ट्रैकर पड़ा मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि तंबू के अंदर किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर 5 लोग हवा में कहां गायब हो गए, या शायद बर्फबारी की वजह से पैरों के निशान मिट गए हों। सब लोग कुछ ना कुछ अंदाजे लगा रहे थे। पुलिस के लिए ये केस बहुत ही पेचीदा होता जा रहा था। सब लोग खोजबीन में लगे हुए थे और सर्चिंग ऑपरेशन चालू था। अब समय बीतता है और इस घटना के 3 दिन बाद सर्च टीम को कैंप से करीब 3 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे कुछ मिला। पेड़ों के बीच कुछ ऐसा था जैसा उनकी सोच से भी परे था। वहां 2 लाशें थी, एडम और बेंजामिन की, जो कि सबसे यंग माउंटेन क्लाइंबर था। लेकिन जिस हालत में वो मिले उसने फॉरेंसिक साइंस के सारे नियम तोड़ दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात उन सभी के साथ, ये सवाल सभी के मन में था। शायद आप सभी लिसनर्स के भी मन में यही सवाल घूम रहा होगा, एडम और बेंजामिन की बॉडीज आखिर किस हालात में मिली थी। और इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे रहस्य सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड्स में।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर

0: या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: अरे यार, मैं तो इन सड़कों के गड्ढों से ना बड़ा ही परेशान हो गई हूँ। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बस गड्ढे ही गड्ढे। ना स्कूटी चला सकते ना बाइक, और यहाँ तक कि बस में भी झटके खा खा के दुखी हो गई हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ।
3: अरे भाई, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? भारत में सड़कों पर जो गड्ढों का इतिहास है ना, वो बहुत पुराना है।
4: What?
3: हाँ देख भाई, महाभारत के समय कर्ण के रथ का पहिया भी ना गड्ढे में ही फंस गया था।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
3: तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम की झड़ी लगी हुई है, हमारा अगला सेगमेंट कौन सा है इसमें। तो दोस्तों, हमारा अगला सेगमेंट है गुफ्तगू बस यूं ही, जिसमें आज हम गुफ्तगू सुनेंगे अनम और अलीना की। तो चलिए सुनते हैं अनम की अलीना से बातचीत।
5: तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट गुफ्तगू बस यूं ही में, जहां हर बातचीत सिर्फ सवाल जवाब नहीं बल्कि एहसासों और कहानियों का एक खूबसूरत सिलसिला बन जाती है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी ही मेहमान मौजूद हैं जिनकी बातों में सादगी भी है और गहराई भी। तो आइए इस खास गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे अनसुने पहलू। तो सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। तो आपका नाम?
6: मेरा नाम अनम है।
5: तो अनम, आप नजीबाबाद से ही बिलोंग करती हैं?
6: जी, मैं नजीबाबाद से ही बिलोंग करती हूँ।
5: ठीक है अनम, तो आप नजीबाबाद से बिलोंग करती हैं, तो आपकी स्टडीज सारी चीज आपकी यहीं से चल रही होंगी?
6: जी, मेरी स्टडीज यहीं से चल रही हैं।
5: तो अनम, अभी आप स्टडीज में क्या कर रही हैं?
6: मैं अभी 12th के बोर्ड एग्जाम्स दे रही हूँ।
5: ठीक है, अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं?
6: जी।
5: तो अनम बताइए थोड़ा सा कुछ आप, चलिए बोर्ड एग्जाम की आपने बात की है तो थोड़ा हमें बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं जो अब तक हो चुके हैं?
6: एग्जाम्स मेरे बहुत अच्छे जा रहे हैं, प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर ली थी और इस बार पेपर्स भी थोड़े इजी हैं, तो सारे ही सब अच्छे जा रहे हैं, अच्छे परसेंटेज आएगी।
5: वैसे अनम, एक बात कहूँ, अच्छे तो सभी बोलते हैं कि पेपर्स अच्छे जा रहे हैं, वो तो मार्क्स जब रिजल्ट आएगा तब पता चल ही जाएगा।
6: जी, ये तो बात है, रिजल्ट आके ही पता चलता है।
5: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके एग्जाम्स जो है अच्छे जा रहे हैं, आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा।
6: जी,
5: चलिए हम भी आपके लिए प्रे करते हैं कि आपका रिजल्ट काफी अच्छा आए।
6: जी,
5: तो अनम ये बताइए कि अब जैसे हमारा ये सेगमेंट आपसे हमने बताया कि गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप बताइए कुछ अपने बारे में, बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है?
6: मेरी फैमिली में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे दो भाई हैं।
5: अनम, जैसे आपके अभी 12th के बोर्ड्स आप दे रही हैं,
6: जी,
5: तो आगे आप क्या करना चाहती हैं आफ्टर 12th?
6: मैं आगे BBA करना चाहती हूँ।
5: तो BBA क्यों करना चाहती हैं अनम?
6: BBA इसलिए क्योंकि मुझे MBA करना है, तो उसके लिए BBA बेटर है।
5: तो अनम, वैसे मैं आप, बाकी तो चॉइस आपकी है, लेकिन आप BCom भी कर सकती हैं अगर आपको MBA करना है। जरूरी तो नहीं कि आपको BBA ही करना है अगर आगे जाके आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको MBA मास्टर डिग्री में MBA चूज करना है।
6: जी, ये भी है, लेकिन BBA ना MBA के लिए स्पेसिफिक होता है, तो इसलिए मैं MBA के लिए BBA करना चाहती हूँ।
5: ठीक है, आपके पर्सनल चॉइस यही है कि आपको, आपका फिक्स है कि आपको MBA करना है, तो आप इसलिए BBA स्टार्टिंग में बैचलर डिग्री आप BBA की लेंगी।
6: जी,
5: नाइस अनम। तो अनम ये बताइए, अभी तो हमने आपकी ये पढ़ाई के बारे में, स्टडीज के बारे में बात की, थोड़ा सा आप ये बताइए कि पढ़ाई से हटके आपके क्या पैशन है, क्या आपकी हॉबीज हैं?
6: मेरी हॉबीज हैं क्राफ्टिंग, आर्ट्स, मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है और अब मैं थोड़ा कढ़ाई करना भी सीख रही हूँ अपनी मम्मी से।
5: बहुत अच्छी बात है, कढ़ाई। अनम, देखते हैं हम आजकल के जमाने में, आजकल का ये ना हमारा मॉडर्न जमाना हो चुका है, तो ये सोचते हैं कि लड़कियां कहाँ आप कढ़ाई बुनाई है ना, अच्छा लगा जान के कि आप कढ़ाई सीख रही हैं, वेरी नाइस।
6: जी, मैं ये चाहती हूँ जो जो मेरी मम्मी को आता है सारी चीजें मैं भी सीखूं, मेरी मम्मी को कढ़ाई बुनाई सिलाई हर चीज आती है।
5: बहुत अच्छी बात है, आपकी मम्मी इतने टैलेंटेड हैं तो आप भी उनके जितना टैलेंटेड बनना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात
6: जी।
5: है। तो अनम, आप इन चीजों के अलावा और कुछ शौक आप रखती हैं?
6: सिंगिंग का।
5: अनम, मैं ये बताइए कि आपको म्यूजिक जो है गाने सुनने का शौक है या सुनाने का शौक है?
6: मुझे गाने सुनने का शौक है।
5: ठीक है, अगर आप गाने सुनने का शौक है तो आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं अनम?
6: मेरे फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह हैं।
5: अरिजीत सिंह, तो अनम, जैसे आप हमारे स्टूडियो में आज आई हैं, आपने अपना फेवरेट सिंगर भी बताया, आप म्यूजिक सुनने का शौक भी रखती हैं, तो चलिए आप बता दीजिए कि आपका अरिजीत सिंह का कौन सा ऐसा गाना है जो आप सुनना चाहेंगी, हम आपको वो आज सुनवाएंगे।
6: मैं केसरिया सॉन्ग सुनना चाहूंगी उनका।
5: ओके, केसरिया तेरा है ना, वही वाला ना?
6: जी जी।
5: ओके ठीक है अनम, तो चलिए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पे अरिजीत का ये केसरिया सॉन्ग।

0: सोनम, ये तो हमने आपको आपका फरमाइशी सॉन्ग आपकी फरमाइश पे आपको सुनवाया। तो आप अनम हमें आगे बताइए कि जैसे आप MBA करना चाहती हैं, तो आप MBA क्यों करना चाहती हैं?
1: मुझे बिजनेस करना है तो इसलिए मैं MBA करना चाहती हूँ।
0: तो ठीक है, आप बिजनेस में जाना चाहती हैं।
1: जी
0: ओके, तो आपको प्राइवेट जॉब्स एंड ऑल इनमें इंटरेस्ट नहीं है ना?
1: नहीं, मुझे अपना बिजनेस करना है।
0: बिजनेस में क्या करना चाहेंगी?
1: बिजनेस में मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहूंगी।
0: तो अनम, जैसे आपकी फैमिली से कोई फैशन डिजाइनर हो, जहाँ से आपको ये हुआ हो कि हाँ मुझे भी फैशन डिजाइनिंग करनी है? अच्छा, जैसे अनम आपने ये भी बताया था कि आपकी मम्मी कढ़ाई बुनाई इन सब चीजों का शौक रखती हैं, तो आपने ये सोचा होगा कि ठीक है मैं एक डिग्री इस चीज में ले लेती हूँ कि वो आगे मेरे लिए हेल्पफुल हो।
1: जी, मैंने यही सोचा है।
0: तो अनम, जैसे आपने बोला कि आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हैं, तो सबसे पहले ये बताइए, आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि हाँ मैं जब फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी या स्टार्टिंग करूंगी इस चीज की, तो मैं सबसे पहले ये ड्रेस है, ये चीजें हैं, ये सबसे पहले डिजाइन करना चाहूंगी, तो वो कौन सी ऐसी ड्रेस है?
1: मैं एक ड्रेस डिजाइन करना चाहूंगी, जैसे किसी की वेडिंग के लिए कोई अच्छी सी मिनिमल सी ड्रेस।
0: मिनिमल ड्रेसेस आपको ज्यादा
1: जी जी
0: पसंद है?
1: जी
0: बिल्कुल अनम, बहुत अच्छी बात है कि आपके आपका थॉट प्रोसेस इतना अच्छा है कि आप बिजनेस करना चाहती हैं और फैशन डिजाइनिंग में आप जैसे बिजनेस करना चाहती हैं और ये चीजें आप ये कि डिजाइन करना चाहती हैं।
1: जी
0: तो अनम, और कुछ बताइए अपनी फैमिली के बारे में, आपकी मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है या फिर
1: नहीं, मम्मी
0: जॉब करती?
1: हाउस वाइफ है।
0: मम्मी आपकी हाउस वाइफ है और
1: जी,
0: फादर आपके क्या करते हैं?
1: फादर मेरे बिजनेसमैन है।
0: और अभी जैसे आपने बताया था आपके 2 यंगर ब्रदर भी हैं, 2 भाई भी हैं, तो वो क्या करते हैं फिलहाल?
1: मेरा बड़ा भाई फिजियोथेरेपी कर रहा है और छोटा भाई अभी स्टडीज कर रहा है।
0: फिजियोथेरेपिस्ट मींस बैचलर ऑफ
1: जी,
0: फिजियोथेरेपी,
1: बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी
0: ठीक है। छोटा भाई आपने क्या बताया ना?
1: वो स्टडीज कर रहा है अभी।
0: ठीक है, तो दोनों आपके भाई जो हैं, आप बताई थी कि आप सेंट मेरी से अभी 12th कर रही हैं, तो दोनों
1: जी
0: भाई भी आपके सेंट मेरी से ही पढ़े हुए हैं।
1: जी जी
0: नाइस है ना, बहुत अच्छा लगा। तो अनम, आप हमारे प्रोग्राम सुनती हैं?
1: जी मैं सुनती हूँ,
0: सुनती है, तो आपको हमारे प्रोग्राम सुनकर कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद आते हैं मुझे आपके प्रोग्राम्स।
0: आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आते हैं इसीलिए हमने आपको भी आज बुला लिया कि आप खुद
1: जी
0: को भी सुनिएगा फिर।
1: जी आपका बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए।
0: नहीं अनम, ऐसे ऐसे जो टैलेंटेड

0: लोग होते हैं उनको हम यहाँ बुलाकर हमारे जो प्रोग्राम है उसकी जो शोभा होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है।
1: जी
0: तो अनम ये बताइए, जैसे आप आ जाई हैं तो हमारे लिसनर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे कैसे करें, जैसे अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो।
1: मैं यही देना चाहूँगी कि हार ना माने और अपने सारी प्रिपरेशंस करें, बिल्कुल पैनिक ना करें और जो उन्होंने सब कर रखा है सब रिवाइज करें अच्छे से।
0: रिवीजन, क्योंकि रिवीजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना है वो तो
1: जी
0: ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब तो सिर्फ रिवीजन का टाइम है, राइट। तो अनम आपको यहाँ बुलाकर हमें बहुत अच्छा लगा, आपको यहाँ आकर कैसा लगा?
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला है दिल को।
0: बहुत अच्छी बात है अनम, तो आपका
1: जी
0: यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी थैंक यू। तो दोस्तों ये तो थी अनम की अलीना से बातचीत सेगमेंट गुफ्तगू बस यूं ही में। और दोस्तों हम बिल्कुल नहीं भूले हैं क्योंकि हमने अपने दोस्तों से कार्यक्रम की शुरुआत में ही पूछा था एक सवाल, और हमारा सवाल था विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है दोस्तों, जिसका सही जवाब है 24।
0: और सही जवाब देने वाले हमारे जो दोस्त हैं वो हैं हीरामणि वर्मा, राजकुमार डोडी, अरविंद कुमार, सुदर्शन शाह, महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, गजानन येले, मोहम्मद जाहिद अली, महेंद्र मोदी, बबलेश पवार, राजकुमार, रवि कुमार राहुल, धीरज भाई, मोहम्मद सईद अब्बासी, शाहिनूर अंसारी, सोपन तया तायड़े, बीपी गौतम, जाकिर मंसूरी, मोहम्मद रफीक पवार, परवीन चौहान, बालक राम वर्मा, राजेश वर्मा, ताज अंसारी, और हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ शामिल हुए हैं हमारे इस सेगमेंट बूझो तो जाने में। तो
1: बिल्कुल
0: अब मुझे लगता है उज्मा की चलते चलते हम अपने दोस्तों को इस ये गीत और सुनवा दें एक और।
1: बिल्कुल दोस्तों, अब हमने आपको नाम तो बता दिए सही जवाब देने वालों के, तो अब इसका इनाम भी आपको दे ही देते हैं, इसके बदले हम आपको एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं, और हमें खत भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
1: और दोस्तों इसी के साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां और आने वाले सभी प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कॉमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिसके साथ आपको हमारे सारे प्रोग्राम सबसे पहले मिल जाएंगे और आप हमारे कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं।
0: तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब मुझे अपने दोस्त उज्मा
1: और मुझे अक्षय त्यागी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार सुनवाए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में

0: गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों के कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया नरेश पाल सिंह की राम राम। और सुनाइए किसान भाइयों, क्या हाल चाल हैं आपके? भाई देखिए, आपके हाल चाल तो बढ़िया हैं और आपका काम धाम भी बढ़िया चल रहा होगा। और इन दिनों किसान भाई जो है बड़ी व्यस्तता का सामना कर रहे हैं। किसान भाई अपनी फसलों में सिंचाई कर रहे हैं क्योंकि वर्षा अभी भाई काफ़ी टाइम से नहीं हुई और गर्मी बहुत पड़ रही है। और इसके साथ साथ भाई अपने पशुओं को भी वो कम से कम दिन में 2 बार नहला रहे हैं और उनके चारे दाने का प्रबंध कर रहे हैं, उनकी पशुशाला में अच्छी छांव रहे और अच्छा हवा का आवागमन रहे, इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। और भैया देखिए, गर्मी तो इतनी हो रही है कि किसान भाइयों को अपने फसलों की निराई गुड़ाई भी करनी है। और गन्ने की फसल में भी विशेष तौर से हमारे किसान भाई निराई गुड़ाई करते हैं। और गन्ने की फसल में जो है, यदि ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर से खड़ी फसल में जब हमारे किसान भाई टीलर या उसमें छोटा वाला रोटावेटर निकालते हैं, जो लाइनों के बीच में छोटे ट्रैक्टर से निकाला जाता है, तो भैया वो भी थोड़ा देर से, यानी कि सूरज निकलने के कुछ देर बाद होता है। क्योंकि सुबह सुबह यदि हम यह कार्य करते हैं तो हमारी गन्ने की फसल ज़्यादा टूटती है, यानी कि उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। तो भाई जब हमारे किसान भाई धूप में काम करें तो थोड़ा सा उससे गर्मी से बचाव का आप ध्यान रखें। आप अपने पास जो है ताजे पानी की व्यवस्था रखें और सिर पे कपड़े और फुल बाजू के आप कपड़े पहनें। और भाई बीच बीच में आप छांव भी लेते रहें, आराम भी करते रहें, यानी कि रेस्ट लेते रहें 2-4 मिनट का। और भाई यदि पशुओं की बात करें तो भाई वो तो बिन बोलते जीव हैं, यानी कि मनुष्य को अपनी बात नहीं कह सकते, तो भैया उनका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। और भैया अपनी खेती बाड़ी में अब किसान भाई ये भी जानते हैं कि भाई वो थोड़ा सा यदि कुछ अलग हट के काम करें तो ही आमदनी अच्छी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अपनी खेती में वो वेरिएशन लाएं, विविधता लाएं और आधुनिक खेती पर विशेष ध्यान दें। आधुनिक खेती में आप पॉली हाउस कर सकते हैं और भाई ये पॉली हाउस के अतिरिक्त आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, आप जो है साथ में मुर्गी पालन भी आप कर सकते हैं, और कुछ किसान भाई फूलों की खेती भी कर सकते हैं क्योंकि ये सब रोजगार की चीज़ें थे। और भाई फूलों की खेती में हमारे किसान भाई गेंदा, गुलदावदी और कैना के फूल उगा सकते हैं। और भैया फूलों की खेती में बस ध्यान ये रखना होता है कि जब हम इनको तोड़कर विपणन का कार्य करते हैं तो आपके पास जो बाजार है हमें उसका ध्यान रखना है कि तुरंत ही ताजे फूल हमें कहाँ पहुंचाने हैं, अन्यथा भैया लाभ की जगह हमें हानि हो सकती है। तो फूलों की खेती से भी हमारे किसान भाई अच्छा रोजगार कर लेते हैं यदि उसका विपणन व्यवस्था सही हो। तो इस प्रकार से जब हमारे किसान भाई काम करेंगे तो भैया मन प्रसन्न होगा और भैया उनका काम भी बढ़िया चलेगा। और भैया आज के कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला है क्योंकि आप जानते हैं कि आज है दिन गुरुवार और माह का चौथा गुरुवार है, तो माह के चौथे गुरुवार को आप सुनते हैं हमारी सामाजिक नाटक श्रृंखला। तो आज हम इस श्रृंखला में आपको नाटक सुनवाएंगे जिसका शीर्षक है छिपा हुआ धन। लेकिन आइए सुन लेते हैं उससे पहले ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: तो किसान भाइयों, संदेश आपने सुने और संदेश के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और भैया जैसा कि हम आज से बता रहे थे कि आज है माह का चौथा गुरुवार और चौथे गुरुवार को आप सुनते हैं हमारा मासिक नाटक। तो भैया आज के नाटक का विषय है छिपा हुआ धन। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए सुनते हैं आज की ये श्रृंखला छिपा हुआ धन, जिसमें आलेख है नरेश पाल सिंह का और वाचन स्वर नरेश पाल सिंह, प्रस्तुति संयोजक हैं अंकित सैनी, प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए सुनते हैं ये नाटक।

0: हरि ओम हरि ओम। सुबह हो गई है, चलो भाई मनोहर अपने पशुओं को चारा डालते हैं। लो कभी ये भैंस सीधी खड़ी ना होती, हमेशा गोबर बीच में ही करती है और फिर उसे काट देती है। और ये जो गोरा और धौला है ना हमारा बैल, ये तो कुट्टी को बिखेर बिखेर के खाते हैं दोनों। रात की कुट्टी देखो कैसा बखेर रखी है।
1: अजी क्या कह रहे हो इन बेजुबान जानवरों को, बेचारे हैं तो डंगर ही, इन्हें के हमारे जैसे कल रखी। लो ये लो बाल्टी और भगोना, और जल्दी से गाय और भैंस का दूध काढ़ लो।
0: ला भाई दे बर्तन, और जरा गाय का बछड़ा खोल दे ताकि पहले गाय की धार निकाल दूं।
1: ठीक है जी, लाओ मैं पहले बछड़ा ही छोड़ दूं।
0: दुलारी जब तक मैं दूध निकाल लूं तब तक तू ये गोबर भर दे बुग्गी मको।
1: हाँ जी भर रही अभी, फिर आपका बच्चों का नाश्ता भी तो तैयार करना है मुझे।
0: ठीक है भाग्यवान, मैं भी खेत पे जाऊंगा और आज गन्ने में पानी लगाना है और कुछ चारा भी तो पशुओं के लिए लाना है। दुलारी जरा देखिए, ये रोज रोज की बात हो गई ना, हमारे तो ये तीनों बेटे हैं ना, कभी सुबह जल्दी उठते ही ना हैं। अब मैं तो चला खेत पर।
1: हाँ जी ठीक कह रहे हो तुम, ये तो मैं भी देखूं कि हमारे ये बालक जल्दी ना उठते, ना तो जल्दी सोवे, और रोज रोज स्कूल को भी देर से ही जावे हैं। अरे उठ जाओ बालको, अरे लाड लो गोलू पिंकू, अरे बिट्टू, अरे बालको सुन रहे हैं ना, अरे अब जग भी जाओ तम, देखे तमाम सूरज चढ़ आया।
2: हाँ माँ।

0: माँ मैं तो जब ही उठूंगा जब पिताजी जंगल को चले जाएंगे, बता दिए, रोज कुछ ना कुछ सुनाते ही रहे।
1: हाँ हाँ तुम्हें ही सुना मैं है वे, कभी सोचा भी है उनके बारे में? सवेरे भोर से उठ के देर शाम तक कितना काम कर रहे हैं वे, सारा दिन काम में लगे रहे हैं, कभी डंगरों का कभी खेती का, और घर का दाल दपाल भी तो वही लामे है। तुम क्या करो, तुम पड़े सो जाओ बस।
0: अरे माँ कोई पिताजी नया काम कर रहे हैं क्या? सबके पिताजी कर रहे हैं यो काम, तो बता तू, रोज ही हमारे यार पिताजी भी हम रोज ही रोज क्या हो जाओ, हम हमारा काम तो पढ़ने का।
2: अब माँ पिताजी कोई निराला काम तो करते ना, देखो जो मोखा ताऊ हैं वो भी तो कितना सारा काम करें।
3: हाँ बिट्टू भैया, अरे माँ तू भी हमारे पीछे पड़ी रहे 24 घंटे। मोखा ताऊ को देखा कितने सारे डंगर, उनके डंगर भी बहुत सारे, उनका काम भी बढ़िया चल रहा। अब तुम्हारा सोई सो दोनों का टै टै का काम हो।
1: हाँ सही कहो लाला, बहुत बढ़िया काम चल रहा है उनका। ये ना बता तुम सारे भैयों को कि उनके बालक भी कैसे काम में हाथ बटा में अपने पिताजी का, और बालक सारे स्कूल भी टाइम पे जाने हैं और पढ़ाई में भी बड़ी मेहनत करे हैं।
0: अरे माँ तू भी सुबह से पिताजी की ढाल चालू हो जा है बस, ला सवेरा मैं तैयार हो गया स्कूल को जाऊँ, ला नाश्ता उस्ता दे कुछ खाने को।
2: हाँ माँ जल्दी लाओ चाय पानी, जल्दी लेके आओ।
3: अरे माँ देखा नींबू का चार भी ले आइए, मैं तो जा रहा हूँ स्कूल में को। अरे भैया तू भी ले आइए चार पचार।
1: और अब तो बड़ी जल्दी हो रही जाने की तुम्हें तीनों को ही, मेरे हिसाब से तो कभी सूरज के चढ़ने से पहले तो उठे ना हो। अब कभी बचपन में जब छोटे रहे तुम तब तुम्हें बड़े टाइम से उठा दूं थी, तुम्हारे पिताजी भी उठा देते, और गोद में ले लेकर काम भी करूं थी, और वे भी ऐसे ही काम करें थे, और तुम घुमाओ जाते फिर भी काम होगा था सारा। अब तुम बड़े हो गए तो तुम्हारा अलसी ना टूटता।
0: हाँ हाँ
3: अरे माँ तू भी ऐसी करो, जब सूरज ही हमसे पहले उठने से पहले निकल जा। हा?
0: बता हम नींद भी पूरी ना करें क्या?
2: अरे माँ हम अपनी नींद भी पूरी ना करें क्या?
1: हाँ हाँ बेटा सही कह रहे, रात को तो तुम तीनों 12-1-1 बजे तक मोबाइल में लगे रहो, फालतू की रील और वीडियो देखते रहो उसमें, तब ना कर सकते नींद पूरी। अब चलो जल्दी जाओ स्कूल को।
0: ठीक है चलो भाई, चलो बिट्टू चलो।
2: चलो भाई चलो, चलो गोलू बैग उठाओ।
4: अरे दुलारी भाग्यवान, आज मैं खेतों पे बहुत परेशान हो गया, जा पहले तू पानी लेके आ जल्दी से, थोड़ा सा तेज प्यास लग रही।
1: अच्छा आ गए, लाओ अभी लाऊं पानी, आराम से बैठ जाओ जरा। हे भगवान आज तो गर्मी बड़ी हो रही, और ऊपर से इनके ऊपर इतना सारा काम। लो जी आप ताजा ठंडा पानी पी हुई हो।
4: ला दे भाई। ओह अब मिला भाई सुकून। दुलारी आज तो बिजली भी ना आई, अब भाई ट्यूबवेल भी ना चला, और खेतों में पानी भी ना चला, और ना ही मुझे पानी पीने के लिए मिला। मैंने सोचा कि ट्यूबवेल तो चली जाएगा, मैं घर से पानी ले ही ना गया, और प्यास बहुत तेज लग रही थी, और जो है पशुओं के लिए चारा भी लाना था, और तू देख ही रही गर्मी कितनी हो रही।
1: अब क्या कहूँ जी, हमारी तो किस्मत ही जाने कैसी, बेटे भी तीनों जवान होने को हैं पर किसी भी काम में हाथ ही ना बटाना चाहते, और ना पढ़ने में ही जोर लगा रहे, ना ही कोई घर का ही काम करे, क्या करें, ये बालक तो बड़े ही निकम्मा हो गए।
4: हाँ भाग्यवान तू सही कह रही है, जिसके तीन तीन बालक जवान हो हट्टे कट्टे हो, उनका बाप बुढ़ापे में अपने हड्डे हिन दिया है। अब तू ही देख ले दुलारी, वो मोखा सिंह है ना, उसके दो लड़के हैं, और दोनों पढ़ भी रहे हैं, और मोखा का खेती में हाथ भी बटा रहे हैं खेती के काम में, और एक ये हमारे बालक हैं, बस क्या पूछ के ले।
1: हाँ जी गोलू के पिताजी, ऐसा लगा है ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, और हमारी किस्मत में भी ऐसी लिखा, न जाने बाद में क्या होगा इन बालकों का, कैसे ये अपना पेट पाल लेंगे, कौन इनसे अपनी बेटी भावेगा, मुझे तो दिन रात यो ही फिकर लगी रहे।
4: दुलारी देख हम मौका भाई का जिक्र कर रहे थे, और सामने देख मौका इस तरफ ही आ रहे हैं, तू जा अंदर को और कुछ चाय पानी का इंतजाम कर ले।
1: अच्छा अच्छा ठीक है जी, जा रही मैं बनाऊँ अभी चाय पानी।
4: अरे मौका भाई आओ आओ, राम राम।
5: राम राम, राम राम भाई मनोरा, राम राम, सब ठीक ठाक है भैया, क्या बातें कर रहे थे?
4: बस भैया कुछ ना यही करने खाने की बात कर रहे थे, और ये हमारे बालक है ना, ये इनकी बात भी कर रहे थे, बड़े हो गए अब भाई इनका भी फिक्र रहे है हमें।
5: हाँ भैया देखो फिक्र तो करना ही पड़े।
4: आओ भाई बैठो, ये रही चारपाई, और मुड़े पे बैठो तो भैया, ये लो यूरिया मुड़ा, आरामदायक मुड़ा, आराम से कमर लगा के बैठो।
5: मनोरा मैं भी बैठ जाऊंगा, बैठने ही आया भैया, दो बात करना आया तू। खैर तू यू बता भैया, सब राजी खुशी, तेरा काम धाम तो ठीक ठाक चल रहा?
4: हाँ सब काम धाम ठीक चल रहा भैया, और बुढ़ापे में काम होता ना मुझसे, तुम जानो ही कि हमारे बालक कितने आलसी।

0: स्कूल जाने का ना स्कूल आने का, वो तो भैया सब बालकों के बाद में जाए, मैं तेरे तो बाल रखी अनोखे, और भैया सबके बाद में आ जाए या पहले आ जाए।
1: भैया देखो क्या करूं मैं, देखो मैं तो उन्हें जंगल भी ना ले जाता खेत पर, मैं तो उनसे काम भी ना कराता कि अच्छा पढ़ लेंगे और कहीं नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वे तो खेतों की तरफ जाते ही ना।
0: ठीक कह रहा भैया, अब मैं तुझसे यो बताना चाह रहा
1: हाँ, हाँ।
0: कल भैया हमारे बाग में से कच्चे आम तोड़ने लगे। अच्छा? और भैया डंडा लेकर आम के ऊपर दे दनादन दे दनादन, भैया बेफालतू में झाड़ दिए उन्होंने इतने सारे आम। अब भाई देख, एक तो उन्होंने भैया कच्चे आम तोड़े, और भैया जहां तक डंडा गया डंडे से तोड़े, उसके बाद भैया वो पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ने लगे।
1: अच्छा,
0: अरे और तो और भैया एक उन्होंने आम का पेड़ तक तोड़ दिया, और भाई जब उन्हें हमारे रखवाले ने डांटा मना करा तो भैया उसे ही धमकी देने लगे, उसके साथ ही धक्का मुक्की करने लगे। बतायो अच्छी बात है कोई?
1: अच्छा ये बात भी है, तो अभी लेता हूँ खबर, आज आने दो आज इन तीनों को स्कूल से, आज इनकी खबर अच्छे से लूंगा।
0: देख भाई बालकों की बात है, उन्हें समझा ले भाई, अच्छा रहेगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, कुछ बन जाएंगे भैया, उनका भी भविष्य बन जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। और देखे इस बहू का भी ध्यान रखे करियो, कितनी परेशान है तेरी साथ।
1: हो जाने तो जो भी होगा देखा जाएगा, आपने मौका भैया देखा होगा कि खाली दिमाग शैतान का हो।
0: अरे भाई वो बात तो ठीक है, देख ज्यादा आवेश में ना करते भाई, समझदारी से काम ले, तेरे तीनों बालक जवान है। देखे कुछ ऊंच नीच हो गई तो भला क्या होगा, यो भी तो तुझे पता होना चाहिए।
1: जब ये कुछ काम नहीं करते तो तभी तो शैतान नहीं करते हैं, वो देखो तीनों आ रहे हैं। अरे एक बात बताओ भैया, तुम हाँ। कह रहे हो ना मेरे जैसे बन जाओ खेतों में, ये मेरे जैसे बन जाओ तो गनीमत है,
0: अरे
1: अपना काम तो कर लेंगे, पेट तो पाल लेंगे।
0: ठीक है पेट पाल लेंगे, देखे खेती किसानी तो तू ही बतेरी कर रहा है ना, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा इनका।
1: बता मैं तो टाइम से फीस भरूं, मास्टर जी भी पूछते रहे कि तुम्हारे काम बढ़िया चल रहा है, तुम्हारे बालक ठीक आ रहे हैं, नहीं तो बहुत दिन हो गए मास्टर जी से मिलो हो।
0: चल मास्टर जी भी मिल जाएंगे, और देख तीनों बालक आ रहे हैं, उनसे बड़े प्यार से बात करिए, प्यार से समझाइए, डांटिए मत।
2: जी राम राम
0: राम राम राम राम ताऊ राम राम।
2: अरे ताऊ तुम भी बैठे राम राम ताऊ।
0: राम राम राम
1: राम। अरे बालको राम राम तो तुम्हारी हो गई, अब तुम यो बताओ तुम मुझे जीने भी दोगे नहीं?
2: क्यों पिताजी ऐसा क्या हो गया?
1: अरे क्या हो गया और ये कह रहे हो तुम ये बताओ तुमने अपने मौखा ताऊ के आम के बाग में इतना नुकसान क्यों करा? अब गुद्दे तोड़ दिए, कच्चे आम भी तोड़ दिए, और उसके रखवाले को भी मारा पीटा।
0: मनोहरा यो तेरा पिंकू ही तो यो सबसे ज्यादा तेज है।
3: पिताजी मैं इन दोनों को मना कर रहा था
1: हाँ?
3: अब आम मत तोड़ो मत चोरी करो आम की, चलो घर को चल रहे आराम से, बाकी ये दोनों मानने नहीं।
2: पिताजी ये झूठ बोल रहा, और तुम तो जान रही हो देखो पिंकू भैया को, इन्होंने ही तो यूं कहा था कि ताऊ के बाग में से आम तोड़ने,
1: और रखवाले के साथ भी गाली गलौज और मारपीट करी, वो क्यों करी?
4: पिताजी रखवाला नु कह रहा था तुम आज बांध को डाल लूंगा, फिर क्या हम तीनों ने सब बांध को मारा तमीज से, ले बांध को डाल हम
3: बहु क्या करते हैं हम भाई।
4: हाँ तो
3: वो पिट कर थोड़ी आते घर हम।
0: देख भाई मनोहर आप तेरे सामने ही ये कितनी सिन्ना चोरी कर रहे हैं, या तो तू इन्हें समझा ले, नहीं तो भैया देख बाद में अच्छा नहीं होने का, मैं तो इन्हें अपना ही बालक समझूं।
3: ताऊ जी ऐसा तुम भी अपने घर को जाओ, हम कल को बात करेंगे इस संबंध में।
1: ऐसा हा ज्यादा जवान लड़ा रहा अपने ताऊ से, अभी बताऊंगा। वो देखो तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी आ रहे हैं, और शायद वो इधर ही आ रहे हैं। अरे मास्टर जी नमस्कार, आओ बैठो।
5: नमस्कार मनोज जी, नमस्कार, क्या हाल चाल है, आप सब ठीक तो हो ना?
1: हाँ मास्टर जी सब ठीक ठाक हैं वैसे तो,
5: पर क्या मनोहर जी बोलो बोलो।
1: मास्टर जी हमारे बेटे तो ठीक से पढ़ रहे हैं ना स्कूल में?
5: मनोहर जी मैं इसी संबंध में जानकारी करने आया था। आपके बेटे कई दिन से स्कूल नहीं आ रहे।
1: अरे क्या बात कर रहे हैं मास्टर जी आप, ये तो तीनों रोज स्कूल के लिए जाते हैं घर से, और नाश्ता वास्ता लेके।
5: मनोहर लाल जी आपके बेटों ने 3 दिन की छुट्टी ली थी
1: है?
5: स्कूल से कह रहे थे कि माँ और पिताजी दोनों बद्रीनाथ जा रहे हैं घूमने के लिए, और आज 10-11 दिन हो गए इनकी कोई खोज खबर नहीं है।
1: अच्छा
5: कह रहे थे घर में पशु और खेतों में फसलों की देखभाल करनी है,
1: है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ नालायको, तुम भी सुन रही हो बोलू की माँ?
6: हाँ जी सुन भी रही हूँ और समझ भी गई हूँ, ये नकारा औलाद अब जाने क्या कहकर बैठेगी इससे तो, हे भगवान क्या करूँ मैं इनका, इन्होंने तो जिंदगी तबाह करके घेर दी हमारी।
5: तो क्या मनोहर लाल जी ये तीनों झूठ बोलकर आज तक स्कूल नहीं आए, इनकी तो आज गुद्दी लाल ही कर दूंगा तीनों की मैं एक साथ।
1: हाँ मास्टर जी सफेद झूठ बोल रहा है आपसे, और आज मैं इनकी खाल उधेड़ दूंगा।
5: अरे मनोहर लाल जी गर्म मत हो, आराम से समझाओ बच्चों को, क्योंकि आपके बच्चे जवान।

0: हो गए हैं, कोई गलत कदम ना उठा ले। अच्छे से समझाओ मनोहर जी, अब मैं चलता हूं, और कल इन्हें टाइम से स्कूल भेज देना।
1: ठीक है मास्टर जी, राम राम।
0: राम राम जी, राम राम।
2: गुरु जी नमस्ते।
3: मास्टर जी राम राम।
4: मास्टर जी राम राम। काम तो तुम बड़े
1: अरे गोलू की माँ, पहले आज मेरी छड़ी उठा दे। आज मैं इनसे पूछूंगा जरूर कि इनके जीस है क्या। ला छड़ी दे। क्यों बे गोलू, तू सबसे बड़ा है, तू आ इधर बता, आज तुझे बताता हूँ।
3: नहीं पिताजी, मार दिया। अरे मार दिया। अरे अरे अरे अरे, मुझे तो पिंकू भाई ने कहा था कि छुट्टी मार ले।
1: मर भी जाएगा तो मुझे ना परवाह, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। पिंकू तू तु, तु, तु, तुझे भी लेता हूँ।
3: अरे बस बस बस बस बस पिताजी बस।
2: अरे अरे ना पिताजी, मैं ना था, या गोलू नहीं कही थी पिताजी।
3: तू भी
2: पिताजी, मैं ना था।
3: बस अब रोज स्कूल जाया करेंगे पिताजी, अब मत मारो, अब छोड़ दो।
2: अरे ना पिताजी ना, बस बस पिताजी, मैंने ना करा।
3: ना पिताजी ना, बस बस बस पिताजी, बस बस अब जाएगा वो रोज स्कूल।
4: पिताजी बस छोड़ दो, आज के बाद अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा।
3: पिताजी बस एक बात सुन लो, हम लोग जान से मार को छोड़ोगे क्या? अब मैं रोज स्कूल जाऊंगा, पढ़ाई से छुट्टी भी रहा करने का।
2: पिताजी मेरे बस की तो पढ़ाई है ना, देखो मार लो या छेद लो, मुझसे तो पढ़ा जाने का नहीं।
5: हाँ पिताजी, चाहे आप हमारी जान ले लो, पर हम पढ़ने के ना बिल्कुल भी। अब
1: ऐसी क्या बात हो गई जो तुम तीनों पढ़ाई को मना करो?
5: पिताजी
3: हमारा पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं है।
5: अब हम ना पढ़ने के,
3: ना स्कूल जाने के।
2: स्कूल हम तो तुम्हारे साथ खेती करेंगे।
1: तो तुम करोगे क्या, जब खेत में काम तुम नहीं करते, घर का काम तुम नहीं करते, तो तुम कैसे जो है तुम्हारा पेट पर लगा? और मैं कब तक तुम्हें बैठ कर खिलाऊंगा, कब तक खिलाता रहूंगा दुलारी?
6: देखो जी, मैं एक बात बताऊं, अब जब ये पढ़ाई को मना कर रहे तो इनका काम बांट दो तीनों का, अपने अपने हिस्से का काम तो करेंगे।
1: ठीक है दुलारी, जब तू कह रही है तो ऐसा ही करता हूँ। ये जो गोलू है ना, ये तो पशुओं का चारा लाया करेगा।
4: ठीक है पिताजी, क्या गड्डी लाऊं, दो चार?
1: और पिंकू तू घर में पशुओं का चारा, दाना पानी और देखभाल करेगा।
2: ठीक है पिताजी, मैं ये सब काम कर लूंगा बस।
1: और बिट्टू तू बता, तू कौन सा काम करेगा? तुझे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तू सबसे छोटा।
7: पिताजी मैं घर का सामान ला दिया करूंगा बाजार से।
1: हाँ।
7: और दूध भी बेच आया करूंगा डेयरी पर।
1: ठीक है, तो बेटो ऐसा ही कुछ ना कुछ करते रहो, कब तक मेरी जान खाते रहोगे?
8: खैर मनोहर भाई, अब तू देख अपना आगा पीछा, बुढ़ापा है, शरीर में उतनी जान भी ना रही, तो तेरे बाद में कौन करेगा खेती, कौन उगाएगा अनाज और कौन उगाएगा सब्जी?
6: अजी देखो गोलू के बापू, अब बुढ़ापा आ गया आपको, उम्र तो हो ही गई तुम्हारी भी मेरी भी, अब देखो कमजोरी भी आने लग रही दोनों को ही, इतना काम कहाँ हो पाएगा अब हमसे।
8: हाँ भाग्यवान, अब काम धाम तो ना होता मुझसे, तबीयत भी खराब सी रहती है, और देख मोखा सिंह तो मुझसे बड़े हैं उम्र में भी, वे बिल्कुल ठीक मजबूत कदकाठे के हो रहे हैं।
6: अजी ठीक कह रहे हो आप, लेकिन इसके पीछे राज है कि उन्हें अपनी औलाद की कोई चिंता ना है, उनके बच्चे खेती में भी पूरा हाथ बटा में है और अच्छा पढ़ भी रहे हैं, और अपने माता पिता की एक आवाज पे दौड़े चले आम है।
8: बिल्कुल हाँ दुलारी, ठीक कह रही हो, हमारी औलाद तो आलसी है, निकम्मी है।
6: लो लो पानी पी लो। अरे यूँ क्या हो रहा, थारी खांसी में तो खून भी आ रहा है साथ में। चलो जी चलो, अभी डॉक्टर के यहाँ चलो। गोलू पिंकू बिट्टू, अरे देखो तो तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब हो रही, बालको अपने पिताजी को डॉक्टर के दिखाने ले जाओ।
2: हाँ हाँ चलो चलो, चलते हैं डॉक्टर,
4: जल्दी चलो, देर
7: चलो।
4: अरे माँ जल्दी ले चलो पापा को।
7: अरे पिंकू भैया जल्दी से मोटरसाइकिल निकाल लो जल्दी।
2: हाँ हाँ चलो बैठाओ बैठाओ, पिताजी को बैठाओ जल्दी बैठाओ।
7: चलो चलो भैया।
2: चलो आ गया क्लिनिक, आ गया डॉक्टर साहब के यहाँ। बिट्टू देखिए डॉक्टर साहब बैठे हैं क्या?
7: हाँ हाँ हाँ भैया डॉक्टर साहब बैठे हैं।
2: चलो चलो चलो भाई ले चलो ले चलो, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं तो।
9: अरे आओ भाई आओ, ले आओ इन्हें आराम से ले आओ।
2: ठीक है डॉक्टर साहब ठीक है।
9: अरे कब से तबीयत खराब है इनकी?
6: डॉक्टर साहब हल्की फुल्की तबीयत तो खराब पहले से ही रह थी, पर ये काम करते रहते अब तो बहुत ही ज्यादा कमजोरी आ गई, देखियो तो जरा क्या बात है।
9: हाँ लाइए कुछ जांच करते हैं इनकी। ओहो इनकी बीमारी तो बहुत पुरानी है, बहुत खतरनाक मामला है भाई। इनके लिए एक महीने की दवाई दे रहा हूँ, और दवाई के साथ साथ इन्हें आराम

0: और प्यार की ज्यादा जरूरत है, ये ध्यान रखना सभी लोग।
1: ठीक है डॉक्टर साहब,
2: क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? पुरानी है बीमारी, पर मुझे तो लगा था थोड़ी बहुत ही तबीयत खराब है।
1: अरे भाई मनोहर है क्या घर पे?
3: हाँ ताऊ जी आया। राम राम ताऊ जी।
4: राम राम बेटे, राम राम। अरे गोलू, अरे बेटे तुम्हारे पिताजी नहीं दिखाई दे रहे आजकल, खेतों पे भी नहीं आ रहे, सब ठीक तो है?
3: क्या बताऊं ताऊ जी, हमारे पिताजी ना बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं।
4: अच्छा।
3: हाँ, और भैया अंदर वाले ताऊ जी अंदर वाले कमरे में लेटे हुए हैं।
4: अरे तो तुमने मुझे जब से बताया भी ना, इतने दिन से बीमार चल रहे हैं।
3: ताऊ जी मिले ना हम तुम्हों को भी।
4: देख बेटे बताना चाहिए। चल भाई मैं मिलो लूं अपने भैया से।
3: ठीक है ताऊ जी, अंदर को आ जाओ, बैठो चलो इधर को।
4: अरे भाई मनोहर क्या बात है भाई, क्या बात, बड़ी तबीयत खराब कर ली, सब ठीक तो देख, अपना ध्यान रखे कर भैया।
5: कौन है भाई, कौन है?
4: अरे मैं हूँ भैया, तेरा बड़ा भैया मोखा सिंह।
5: राम राम भाई, आओ बैठो, आ जाओ। ठीक किया मोखा भाई, आप जो सही टाइम पर आ गए। अब भैया मेरे अंदर ज्यादा गुंजाइश ना है, जरा अपनी भाबू को बुला लो, जल्दी से कुछ बात करनी।
6: अरे भैया कैसी बात कर रहा तू, तू तो मुझसे बड़ा छोटा, मैंने तो तुझे पाला, ऐसी बात ना है, सब ठीक हो जाएगा, तुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे भैया, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। ठीक है मैं बुलवा रहे हैं अभी बहू को। अरे दुलारी दुलारी, अरे जरा इधर तो आओ भाई, और देखे तीनों बालकों को भी बुला लियो, पिंकू गोलू।
7: हाँ ताऊ जी।
3: ताऊ जी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं।
4: अरे आ जाओ बच्चे आ जाओ।
2: अरे जेठ जी आप कब आए? जब से इनकी तबीयत खराब रहने लगी मेरा तो किसी काम में मन ही ना लगता, क्या करूं?
4: हाँ भाई मैं भी बस अभी आया, मुझे भी इन बालकों ने बताया मनोहरा की तबीयत बड़ी खराब है। खैर भाई सब ठीक हो जाएगा। देख भाई यो मनोहर सिंह कुछ कहना चाह रहा। देख भैया मनोहरा दुलारी भी आ गई, बता क्या कहना।
5: दुलारी आ जा, बात सुन, और भैया मौका तो भी सुन ले, मेरे ऊपर जाने का वक्त आ गया।
6: ना भैया ऐसी बात मत करे तू।
5: और तो मेरे बाद मेरे बच्चों का अच्छी तरह ख्याल रखना भैया।
6: ऐसी बात मत करे मेरे भैया, ऐसी बात नहीं है, तुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे,
4: घबराते नहीं है, घबराते नहीं है, सब ठीक हो जाएगा।
2: देख लो जेठ जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं ये। अजी ऐसी अशुभ बातें मत करो, मेरा तो मन वैसे आधा हो रहा।
4: चुप हो जा दुलारी, तू भी चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा।
5: नहीं अब तो बस जाने का समय आ गया है, लेकिन जाते जाते अपने लड़कों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जरा उन्हें भी बुलाओ जल्दी से।
2: अरे बालको गोलू पिंकू बिट्टू, अरे कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाओ, देखिए तुम्हारे पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं तुमसे।
3: पिताजी।
7: जी पिताजी। जी जी पिताजी
3: आ रहे हैं। पिताजी
5: बेटा मैंने अपने खेतों में बहुत सारा धन और खजाना गाड़ रखा है, मेरे मरने के बाद जब वर्षा होगी, जब भी कभी होगी भैया, अभी तो सूखा पड़ गया है, तो तुम अपने खेतों से जो छिपा हुआ धन मैंने उसमें रख रखा है उसे निकाल लेना, और भैया बोलो वादा करो ऐसा करोगे नहीं बेटो?
3: हाँ हाँ
7: पिताजी, वादा करते हैं हम पिताजी, हम वादा करते हैं पिताजी, हम वादा करते हैं।
3: बिल्कुल पिताजी, हम थारी सारी बात मानेंगे पिताजी।
5: हे राम हे राम राम राम।
7: पिताजी।
6: अरे मनोहर मनोहर मनोहर मेरे भाई, मेरे बच्चों, ये मेरा मनोहर तो चला गया।
3: पिताजी
6: सिधार गया।
3: पिताजी पिताजी
6: चुप हो जाओ मेरे बच्चों, चुप हो जाओ, ये तो विधि का विधान है कि जो आएगा वो एक दिन जाएगा भी जरूर।
2: अब क्या होगा हमारा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा?
6: चुप हो जा दुलारी, चुप हो जा, धीरज रख।

0: माँ, पिताजी की बहुत याद आ रही। आज उन्हें 1 सप्ताह हो गया।
1: हाँ माँ, अब हमारी खेती कौन करेगा?
0: कैसे अनाज पैदा होगा, कैसे सब्जी पैदा होगी? माँ, आज तो बारिश का मौसम भी बन रहा। और भैया पिंकू और बिट्टू, तुम्हें याद है ना, हमारे खेत सूख गए हैं। और भैया, हमारे पिताजी ने एक बात कही थी, याद है
1: हाँ
0: भैया? जब बारिश पड़ेगी वो भीग भैया मुलायम हो जाएंगे। और पिताजी ने एक बात और कही थी कि भैया, जो खेत में जो धन गड़ा होया उसे भैया मैं फावड़े से खोद कर निकालना है।
1: हाँ भैया बिट्टू, हाँ भैया, तू बिल्कुल ठीक कह रहे यार। देख, बारिश भी पड़ रही है आज।
0: चलो भैया, बारिश से मिट्टी मुलायम हो गई है, अब हम अपने खेत में चलते हैं और भैया धन निकालते हैं। वो
1: चलो चलो चलो भैया चलो। वो देखो, मुख्य ताऊ आ रहे हैं।
2: गोलू भैया,
3: हाँ भैया।
2: पिंकू भैया, सुनो तो सही,
1: हाँ हाँ बताओ।
2: हमने सारा खेत खोद डाला और हम अब भैया थक भी गए और धन तो हमें कहीं मिला ही ना।
1: वो देखो, मुख्य ताऊ आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं छुपे हुए धन के बारे में। पिताजी ने उनके सामने ही तो कहा था कि ऐसा करो और धन मिल जाएगा।
0: ताऊ जी, राम राम।
4: राम राम बेटे, राम राम। खुश रहो बेटे, आज तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं खेत में।
0: हाँ ताऊ जी, पिताजी बोल को गए थे, तमो तो याद ही होगा, इस मिट्टी में हमें कहीं धन नहीं मिला जो छुपा हुआ था।
4: मिलेगा बेटे, मिलेगा। देखो, तुम्हारे पिताजी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि खेतों में धन छुपा हुआ है। धन तो इसमें अब भी छुपा होया। अब तुम्हारे खेत देखो, तुमने इतनी मेहनत कर दी कि वो हो गए तैयार, खेत भुरभुरे हो गए। बेटे, इसमें बीज बोने की तैयारी करो और वो जो धन तुम ढूंढ रहे हो वो अपने आप ही मिल जाएगा।
0: ठीक है ताऊ जी,
1: ठीक है ताऊ
0: ठीक है
1: जी,
0: ताऊ जी।
1: अभी बोते हैं।

0: आज 3 महीने हो गए हैं बच्चों, बड़ी अच्छी फसल खड़ी है खेतों में अब की बार, और पकने ही वाली है फसल।
1: अरे भाई बच्चों कहाँ गए दुलारी? अरे भाई कहाँ हो, अब तो फसल भी पक गई, अब उसे काट कर घर ले आओ भाई।
2: ताऊजी ठीक है ताऊजी।
0: जेठ जी इस बार तो बड़ी अच्छी फसल हुई खेतों में।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हो दुलारी, और बच्चों तुम भी सुन लो, यही वो धन है जो आपके खेतों में छुपा हुआ था और हमारे मनोहर भैया बताकर गए थे, जो अब आपको मिल चुका है। तो हम कहेंगे
3: जय जवान जय किसान जय विज्ञान।

0: इस संकेत धुन से पहले आप सुन रहे थे हमारा रेडियो का मासिक नाटक छिपा हुआ धन। तो भैया नाटक में आलेख और वाचन स्वर था नरेश पाल सिंह का, और भैया इसमें प्रस्तुति संयोजक थे अंकित सैनी और प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा, और साथ में प्रतिभागी कलाकार में जो नरेश पाल सिंह ने भूमिका निभाई थी वो थी मनोहर की, और दुलारी की भूमिका में थी कुमुद सिंगल, मोखा सिंह थे प्रमोद सिंह, और बिट्टू की भूमिका में थे अंकित कुमार, और पिंकू की भूमिका में थे जितेंद्र कुमार, और इसके साथ साथ हिमांशु रंजन ने भी अपनी भूमिका निभाई थी, और मास्टर जी की भूमिका में थे सुरेंद्र कुमार, और साथ में जो डॉक्टर की भूमिका निभाई थी वो निभाई थी सोहन शर्मा ने। तो ये आपको नाटक कैसा लगा ये आप हमें समीक्षा करके पत्रों के माध्यम से अवश्य बताइए, और आइए अब सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: कम लागत सम...

0: वृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
1: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
0: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
1: खुशहाली का नया प्रयोग।
2: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।

0: AIR at 90.
1: तो किसान भाइयों, संदेश के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और भैया देखिए, अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं ये प्यारी सी रागनी।

तो किसान भाइयों ने अर्जुन सिंह और साथियों की आवाज में ये रागनी सुनी, और भैया रागनी आपको कैसी लगी और आज का नाटक आपको कैसा लगा ये आप हमें अपने व्हाट्सएप संदेश से अवश्य बताइएगा। और व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9457072888। और भैया यदि आप हमें पत्र भेजना चाहें तो हमारा पता वही है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। तो भैया इन्हीं शब्दों के साथ अब आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की अपने भाई नरेश पाल सिंह को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष भेंटवार्ता। आर्यन सैनी से बातचीत कर रही हैं अलका।
1: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 90 साल बेमिसाल में। आकाशवाणी के ये 90 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और उन्हीं यादों से लेकर आए हैं हम ये प्रोग्राम 90 साल बेमिसाल। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त अलका सिंह, और मेरे साथ है
2: आर्यन सैनी।
1: मेरे साथ है आर्यन सैनी। कैसे है आर्यन आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
1: अच्छा, तो आप रेडियो सुनते हैं?
2: हाँ जी।
1: कैसा लगता है?
2: मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और सबसे पहले मैं आकाशवाणी का धन्यवाद करना चाहूंगा। सैनिकों के लिए प्रोग्राम बनाया है जिसमें फौजियों से रिलेटेड सॉन्ग सुनने को मिलते हैं।
1: तो आपने सुना है वो प्रोग्राम?
2: हाँ, मैंने सुना है। बहुत अच्छा लगता है सुनकर, दिल में एकदम देशभक्ति भर जाती है।
1: अरे वाह।
2: और फौजियों के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, जो अपने घर परिवार से दूर है
1: बिल्कुल,
2: उन पर गर्व महसूस होता है कि आकाशवाणी ने
1: उनके लिए कोई फौजियों से रिलेटेड प्रोग्राम बनाया है,
2: फौजियों से रिलेटेड प्रोग्राम बनाया है
1: ना। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप इन चीजों को नोटिस करते हैं कि आकाशवाणी ने हमारे फौजियों के लिए एक कार्यक्रम बनाया है जो है सैनिकों के लिए। ये जिस तरह से शेयर कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सैनिक भी जब सुनते होंगे तो उनको भी खुशी होती होगी कि हाँ, हमसे हमारे लिए भी कुछ है आकाशवाणी नजीबाबाद में। अच्छा, एक बात बताइए आर्यन, जैसे आप रेडियो तो सुनते हैं, अच्छा तो आपकी कोई यादें हैं?
2: हाँ, मेरी यादें हैं। बचपन में दादाजी के साथ रेडियो पर गाना सुनाया करते थे पूरे परिवार को एक साथ बैठाकर।
1: अरे वाह, क्या बात है।
2: उसमें बहुत अच्छा लगता था, और वो साथ में हमें ये भी बोलते थे कि चिट्ठियां लिखो, और मैं उनको बारी बारी बोलता था कि चिट्ठियां लिखने से क्या हो जाएगा।
1: हाँ,
2: क्या ही हो जाएगा,
1: क्या ही हो
2: चिट्ठियां
1: जाएगा। सही बात है, लगता है हम छोटे सोचते क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या करवाते रहते हैं। आपके दादाजी आपसे चिट्ठियां लिखवाते थे?
2: हाँ, मेरे दादाजी मुझे चिट्ठियां लिखवाते थे, लेकिन उसमें मुझे पता लगा कि चिट्ठियां अब भी लिखी जाती है।
1: बिल्कुल, अभी
2: पर
1: भी लिखी
2: अब
1: जाती
2: तो रेडियो
1: है।
2: नहीं है, न्यूज ऑन AIR पर आता है।
1: हाँ।
2: तो जब मैंने देखा कि न्यूज ऑन AIR पर आता है, तो मैंने भी अपना नाम लिखकर भेज दिया, और जब उन्होंने रेडियो पर मेरा नाम लिया तो मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लगा, और मेरे दादाजी की बात याद आ गई मुझे
1: कि कैसे वो अपना नाम सुनकर खुश होते
2: कि
1: थे।
2: मेरा नाम, जैसे वो अपना नाम सुनकर खुश होते थे, ऐसे ही आज मैं भी अपना नाम सुनकर बहुत खुश हो गया।
1: देखिए कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा लगता है ना कि जब हमारे अपनों की कुछ यादें हमारे साथ भी जुड़ जाती हैं, तो उन यादों से जुड़ी और भी हमारे दिल में यादें आ जाती हैं, है ना।
2: जी बिल्कुल।
1: अच्छा आर्यन, तो और कुछ भी आप हमारे साथ शेयर करना

0: चाहेंगे जिसे हमारे श्रोता सुने और उनको लगे कि हाँ आर्यन सुनते तो हैं रेडियो?
1: लेडीज़ के लिए प्रोग्राम आते हैं, लेडीज़ को काफ़ी मोटिवेट करते हैं, नए नए तरीके बताए जाते हैं उसमें।
0: और कि जैसे गांव में भी हमारी महिलाएं हैं वो अपनी दिनचर्या को लेकर इतनी बिजी हो जाती हैं, इतना काम होता है कि अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं, तो आकाशवाणी से प्रोग्राम आते हैं, तो उन प्रोग्राम्स में यही समझाया जाता है या सिखाया जाता है कि आप कैसे खुद के लिए भी समय निकाल सकती हैं
1: और अपने परिवार के लिए भी,
0: हाँ
1: और अपने बच्चों के लिए भी देखभाल कर सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें आती है लेडीज के लिए।
0: अच्छा, तो आपने बच्चों से रिलेटेड कोई प्रोग्राम सुना है आकाशवाणी में?
1: हाँ, मैंने बच्चों से रिलेटेड प्रोग्राम सुना है आकाशवाणी में। पहले संडे में आया करता था बाल वाटिका के नाम से,
0: हाँ वो अभी भी आता है।
1: उसमें मैंने एक स्टोरी सुनी थी भेड़िए और बकरी के बच्चों की।
0: अच्छा,
1: जिसमें बच्चे खुद स्टोरी सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे उसमें अपने आप स्टोरी सुना रहे हैं और गाने गा रहे हैं, कि ये भी देखकर अच्छा लगता है कि
0: छोटे छोटे बच्चों को
1: मंच मिल गया है, वो
0: है
1: भी
0: ना?
1: मोटिवेट होने
0: मोटिवेट
1: आगे
0: होते
1: आने के
0: हैं।
1: लिए।
0: अच्छा, तो बच्चे भी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आकाशवाणी हर तरह से अपने श्रोताओं के साथ जुड़ा है और हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलता है। तो अच्छा, जब हर वर्ग की बात हो रही है तो आप खुद यंग हैं, तो यंगस्टर से रिलेटेड आपने कोई प्रोग्राम सुना है?
1: मैं अक्सर एक प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, युगवाणी, जिसमें मुझे बहुत मोटिवेशनल स्टोरीज मिलती है, बहुत अच्छी लगती है वो सुनकर, जिसमें यंग अचीवर्स को भी बुलाया जाता है, उनके वर्ड्स को एक्सप्रेस किया जाता है जो लोगों तक आगे जाती है बातें, और उन्हें सुनकर मतलब काफ़ी अच्छा लगता है और भी अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा, आप किसी अचीवर के बारे में बताना चाहेंगे जिसे आकाशवाणी में बुलाया हो और उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो और उससे आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो?
1: हाँ, मैंने एक सुना है IPS टॉपर शगुन कौशल के बारे में,
0: तो
1: लोगों से सुना है, काफ़ी मोटिवेट हुआ उनके बारे में सुनकर।
0: और उनको आकाशवाणी में बुलाया गया था, आपने वो टॉक
1: हाँ जी
0: सुना?
1: बिल्कुल, मैंने वो जरूर सुना था।
0: अच्छा, कैसा लगा आपको, कुछ मोटिवेशन मिला कि वो इतनी छोटी सी जगह नजीबाबाद से निकलकर पहले IAS बने हैं इधर के, तो कुछ मोटिवेशन तो होता है कि मतलब इतनी छोटी जगह से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े शहरों से ही निकल सकते हैं, एक आम इंसान भी IAS टॉपर बन सकता है।
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं बहुत मोटिवेट हुआ था।
0: अच्छा, तो ये बताइए, चलिए आपने बताया कि अचीवर्स के बारे में किया था, तो आप युवाणी के जो कुछ सेगमेंट उसमें आते हैं, आपने वो सेगमेंट भी सुने हैं कि नहीं?
1: युवानी का मुझे लव स्टोरी बहुत अच्छा लगता है, ये सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता था,
0: अच्छा,
1: और
0: तो
1: साथ में मुझे उसका हॉरर स्टोरीज भी बहुत अच्छी लगती
0: अच्छा
1: है।
0: तो यानी कि आप सुनते रहते हैं रेगुलर, तभी आपको इतनी सारी जानकारी है हमारे आकाशवाणी के बारे में।
1: हाँ जी,
0: चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और कोई प्रोग्राम के बारे में जो आप हमें बताना चाहें या हमारे श्रोताओं को उससे रूबरू कराना चाहें? अच्छा, तो आपने कोई ऐसा प्रोग्राम जिसे मतलब आपको लगा हो कि हाँ कॉमनर्स के लिए भी है और वो भी आकर यहाँ अपना टैलेंट दिखा सकते हैं?
1: हाँ, यहाँ मैंने एक प्रोग्राम सुना था कला मंच, जहाँ पर दूर दूर से बाहर दूर दूर से लोग आते हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं कि उन्हें भी एक मंच मिल चुका है,
0: हाँ
1: जैसे कि उसमें सिंगिंग, अपनी शायरी हो गई, किसी को कविता लिखने का शौक है,
0: हाँ,
1: ये सारी चीजें मैंने सुनी है इस प्रोग्राम में आती है।
0: मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे जो आकाशवाणी की टीम है वो सिर्फ स्टोरीज या मतलब जो है सिर्फ प्रोग्राम्स करने पे ही सीमित है, वो बाहर से जो नया टैलेंट है, जो हुनरबाज हैं और किसी कारणवश कहीं बाहर जाने में समर्थ नहीं है, वो भी आकर आकाशवाणी में अपने टैलेंट को दिखा सकते
1: दिखाते
0: हैं,
1: हैं
0: है
1: बिल्कुल।
0: ना? अच्छा, तो यहाँ आपने कोई ऐसी पुरानी यादें आपकी हो या पुराने गीत या कुछ ऐसी याद जो आप हमारे श्रोताओं से शेयर करना चाहेंगे?
1: यहाँ मैंने लोकगीत भी सुने हैं।
0: अच्छा, आप लोकगीत भी सुनते हैं?
1: हाँ जी, मैं लोकगीत का बहुत बड़ा फैन हूँ।
0: अरे वाह, तो आप किस कौन कौन से लोकगीत सुनने में इंटरेस्टेड हैं?
1: मैं ज्यादातर रागनी सुनता हूँ
0: अच्छा, रागनी सुनते हैं आप?
1: और गढ़वाली लोकगीत सुनता हूँ।
0: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से हमारे आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और इतने अच्छे से सभी प्रोग्राम्स आपने सुने हैं। अच्छा, तो आर्यन, आप हमारे श्रोताओं को लास्ट में क्या मैसेज देना
1: मैं
0: चाहेंगे?
1: बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा कि आकाशवाणी एक लेगेसी है, जो कि बच्चों को और लेडीज़ को और जो गांव से बनकर बड़े बड़े लोग बनकर आते हैं, उनको एक मंच का काम करती है।
0: और उनकी स्टोरीज दिखाते हैं ताकि लोग मोटिवेट हो सकें और
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल,
0: भी चाहें अपने सपने
1: पूरे कर
0: पूरे कर
1: सके।
0: सके। तो आर्यन, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 साल बेमिसाल में। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विशेष भेंट वार्ता, जिसके अंतर्गत आर्यन सैनी से बातचीत कर रही थी अलका।

आकाशवाणी का यह नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, आज शाम 7:32 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित संगीत संध्या स्वरांजलि के संपादित अंश प्रसारित किए जाएंगे। रात 10 बजे आप सुनेंगे लेखक श्री उपेंद्र नाथ अश्क के लिखे नाटक लक्ष्मण रेखा का पुनः प्रसारण। निर्देशन सत्येंद्र शरद का होगा और प्रस्तुति सहायक होंगे सुदर्शन कुमार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:55 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम छाया गीत की पहली पेशकश फिल्म दुश्मन से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दुश्मन का ये खूबसूरत सा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर के ही स्वर में फिल्म 10 नंबरी से। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म 10 नंबरी के इस गीत में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और इस गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं गायक कलाकार मन्ना डे को। पेश है फिल्म दुनिया ना माने का ये शीर्षक गीत। संगीत मदन मोहन का है और शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की।

मन्ना डे के सुर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दुनिया ना माने का ये खूबसूरत सा गीत। संगीत मदन मोहन का था और शब्द रचना थी राजेंद्र कृष्ण की। इसी गीत के साथ छाया गीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए ये संदेश।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर से याद दिला दें, आज रात 10 बजे आप सुनेंगे लेखक श्री उपेंद्र नाथ अश्क के लिखे नाटक लक्ष्मण रेखा का पुनः प्रसारण। निर्देशन सत्येंद्र शरद का होगा और प्रस्तुति सहायक होंगे सुदर्शन कुमार। आज शाम 7:32 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित संगीत संध्या स्वरांजलि के संपादित अंश प्रसारित किए जाएंगे। एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल सुबह 10:30 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। इस कार्यक्रम में श्रोताओं से बातचीत का विषय रहेगा तंबाकू विकास के लिए खतरा। कल रात 9:30 पर समय रहेगा लोकप्रिय फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का। कल शाम 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत सुनिएगा किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान।

घर संसार कार्यक्रम सुनवाया जाएगा कल दोपहर 1:15 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा आधुनिक मशीनों का उपयोग और खेती में काम करते समय लू से बचाव। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ताकार मनीषा शर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा ग्रामीण परिवेश में तंबाकू का सेवन एक गंभीर और जटिल सामाजिक स्वास्थ्य समस्या।

0: 10:30
1: आज रात 10:30 बजे सुनिएगा विशेष कार्यक्रम जाने माने शायर बशीर बद्र के बारे में। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:18 हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह ने कहा कि 2 दिन का यह सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सहायक होगा।
4: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
3: सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा और समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
5: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन, थाना बैरक, अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर की

0: समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को सहयोग उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आज लखनऊ में जोन 4 के भैंसोरा क्षेत्र में अत्याधुनिक फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन प्लांट का उद्घाटन किया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह प्लांट प्रतिदिन 150 टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता रखता है। इस दौरान महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है।
1: लखनऊ ऑलरेडी शिवरी में और भेला में 20 लाख टन कूड़े का निस्तारण करके देश में एक चुनिंदा शहर बना है। लखनऊ ऑलरेडी स्वच्छता सर्वेक्षण में 30वें स्थान पर आकर के देश में अपना नाम बना चुका है। अब ये 51 ट्रांसफर स्टेशन जो इस तरह से बन रहे हैं, उनकी वजह से लखनऊ नगर में कहीं भी कूड़े का बड़ा ढेर जो है खुले में नहीं दिखेगा। सब कुछ कॉम्पैक्टिंग होगी, सब कुछ बंद गाड़ियों में ट्रांसफर होगा।
0: इस अवसर पर महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य लखनऊ को देश के सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में शामिल करना है।
2: आज लखनऊ स्वच्छता में एक कदम और आगे बढ़ा है। भरवारा मल्लौर वार्ड में भी हमने ट्रांसफर स्टेशन लगाया है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में हमारे कम्प्लीट 51 ट्रांसफर स्टेशन बन जाएंगे, 24 पूरे हो गए, और लखनऊ में कहीं भी कूड़ा ना दिखे, इसका मेरा पूरा प्रयास है।
0: अयोध्या में कल 29 मई को राम मंदिर परिसर में परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंभरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
3: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंभरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश भर में अकीदत और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। राजधानी लखनऊ में सुन्नी समुदाय के लोग ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद में नमाज में शामिल हुए। वहीं शिया समुदाय ने आसिफी मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के दौरान लोगों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। एक रिपोर्ट।
4: लखनऊ में ईद उल अजहा का पर्व आज सुबह नमाज अदा करने के साथ शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर की विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फरंगी महली और अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है। मौलाना खालिद ने बताया कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की है। त्यौहार के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नगर निगम ने भी 30 मई तक पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश कर्मचारियों को दिए हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या, बाराबंकी, पीलीभीत, श्रावस्ती, प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर और कौशाम्बी सहित विभिन्न जनपदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में नमाज अदा की गई। आगरा में ताजमहल परिसर स्थित मस्जिद में नमाज के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। ईद उल अजहा के अवसर पर आज देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। प्रदेशवासियों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग

प्रदेश में कई स्थानों पर आज से 31 मई के बीच आंधी बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज रात 10:30 पर देश के जाने माने शायर डॉक्टर बशीर बद्र पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, तो सुनना ना भूलें और समय याद रहे आज रात 10:30। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:32 होने को हैं। ये समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित संगीत संध्या स्वरांजलि के संपादित अंश।

सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित संगीत संध्या स्वरांजलि के संपादित अंश, जिसमें आप सुन रहे हैं गजल गायक शाहरुख की आवाज में चंद गजलें।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को पुनः याद दिला दें, आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे गज़ल के बादशाह पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र को समर्पित विशेष कार्यक्रम हम भी दरिया हैं। समय याद रखिएगा श्रोताओं, आज रात 10:30।

जुल्फ जुल्फ जब जूड़े में सिमटी थी तो मिसले नाग थी, जुल्फ जब जूड़े में सिमटी थी तो मिसले नाग थी, और जब शानों पे लहराई तो नागिन हो गई।

कार्यक्रम सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित संगीत संध्या स्वरांजलि के संपादित अंश, जिसके अंतर्गत आपने सुनी गज़ल गायक शाहरुख की आवाज़ में चंद गज़लें और साथ ही सरफराज साबरी और साथियों की गाई कव्वाली। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार अभिजीत के स्वर में फिल्म दिल ही दिल में से। संगीत नदीम श्रवण का है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

दिल ही दिल में। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे गायक कलाकार अभिजीत के स्वर में। शब्द रचना थी समीर की और इस गीत को संगीत में पिरोया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म विरासत से कुमार सानू और के एस चित्रा की आवाज़ में। संगीत अनु मलिक का है और इस गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

कुमार सानू और के एस चित्रा को अभी आप सुन रहे थे विरासत फिल्म के इस गीत में। संगीत अनु मलिक का था और शब्द रचना थी जावेद अख्तर की। हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे गज़ल के बादशाह पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र को समर्पित विशेष कार्यक्रम हम भी दरिया हैं। समय याद रखिएगा श्रोताओं, रात 10:30। कार्यक्रम गीत संध्या आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हमारी अधूरी कहानी से। संगीत है मिथुन और जीत गांगुली का, शब्द रचना रश्मि विराग सईद कादरी और कुणाल वर्मा की है और बोल हैं अरिजीत सिंह के।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम गीत संध्या में आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। ये गीत स्वर है अनुराधा पौडवाल का, संगीत नदीम श्रवण का है और इस गीत के बोल लिखे हैं रानी मलिक ने।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये गीत। संगीत नदीम श्रवण का था और गीत के बोल लिखे थे रानी मलिक ने। कार्यक्रम का आज का ये अंतिम गीत, आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म रोग से। नीलेश मिश्रा के लिखे गीत को संगीत में पिरोया है MM करीम ने।

श्रेया घोषाल के गाए फिल्म रोग के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। रात के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एयरलिफ्ट के गीत। तो लीजिए पेश है अरिजीत सिंह के स्वर में कार्यक्रम का ये पहला गीत।

सूचना ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं आज आप सुन रहे हैं फिल्म एयरलिफ्ट के गीत। ये फिल्म साल 2016 में आई थी श्रोताओं, और इस फिल्म के गीतों को संगीत अमाल मलिक ने दिया और इस फिल्म के सभी गीत कुमार द्वारा लिखे गए। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार के स्वर में।

फिल्म एयरलिफ्ट से अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार के स्वर में ये प्यारा सा गीत। और अब कार्यक्रम में इसी फिल्म से एक देशभक्ति गीत जिसे अपनी आवाज़ दी है गायक कलाकार के ने।

0: से का ये अंक अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर-17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
4: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
3: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निमहान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर दाखला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। उबूर दाखला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मुल्क में हर गैर कानूनी इमिग्रेंट का पता लगाने और उसे उसके वतन वापस भेजने के सरकार के पुख्ता अहद को दोहराया है। वो आज गांधीनगर लोकसभा हलके में 340 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करे।
0: जनाब अमित शाह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को भी याद किया। कर्नाटक में सबसे तवील अरसे तक वजीर आला के ओहदे पर फायज रहने वाले सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु में गवर्नर के दफ्तर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इससे कबल उन्होंने अपने काबीना साथियों के साथ नाश्ते पर मीटिंग की थी। बाद में नामानिगारों से खिताब करते हुए डीके शिवकुमार का नाम लिए बगैर उन्होंने गवर्नर मौसूफ से कहा कि रियासत में वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के लिए नामजद वजीर आला को मदु किया जाए। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: दो मरतबा के वजीर आला और दो मरतबा के अपोजिशन रहनुमा सिद्धारमैया ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 17 रियासती बजट पेश किए थे। उन्होंने रियासत में अहिंदा तहरीक शुरू की थी जो पसमानदा तबकों और अकलियतों की नुमाइंदा थी। सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान की मर्जी के मुताबिक इस्तीफा दिया है। आज अहिंदा ग्रुपों की तरफ से इस्तीफे के खिलाफ रियासत के बहुत से इलाकों में मुजाहरे किए गए। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के हामियों ने खुशी मनाई। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही कानून साज पार्टी के एक नए रहनुमा को चुनने और काबीना में इम्कानी रद्दोबदल के मजीद इकदाम पर बातचीत के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बेंगलुरु से सुदिंद्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है कि मुल्क में कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,91,00,000 मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है जबकि निशाना 4,95,00,000 मकानों का है। जनाब चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मकानों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मरबूत करके देही इलाकों के कुनबों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा

0: सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
0: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
1: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, जिस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल, खासतौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे और जो लोग बाहर काम करते हैं, खासतौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून हैं, उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
1: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पर सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए। तो ये बहुत जरूरी है, सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
0: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
1: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी आ रही है या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ORS का घोल तो हर जगह मिल जाता है।

0: है तो ORS का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान जैसा आपने कहा बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
1: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
0: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पर पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा जैसे मैंने बताया नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मी आती है, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं, क्या ये शरीर के लिहाज से, स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
0: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय, कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी, दादा दादी, तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलें। जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकलें घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसमें से वेपोरेशन, काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाए, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाए। धूप रहते, मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाएं तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाएं। अगर धूप है उस समय तो छतरी का लें, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सके।
1: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
0: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आप बता रहे हैं, गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान

0: रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के लोग ले सकते हैं। लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आएं, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खास तौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी, और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है। लेकिन गर्मी में ना जाए, और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जाकर के डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
1: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
0: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं, वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ जाता है गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
1: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
0: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें, तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटे नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं, तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है, उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहां इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोता इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
1: जी हाँ, छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजरअंदाज न करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना, ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
1: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Insights. This is Akashwani. In the program Insights, now we bring you a discussion on Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. The participants are Abhijit Deb, senior journalist and

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को हैं। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं लेखक श्री उपेंद्र नाथ अश्क का लिखा नाटक लक्ष्मण रेखा। निर्देशन श्री सत्येंद्र शरद का है और प्रस्तुति सहायक हैं सुदर्शन कुमार।
1: लक्ष्मण रेखा आज प्रस्तुत है श्री उपेंद्र नाथ अश्क का लिखा हुआ नाटक। तो सुनिए नाटक लक्ष्मण रेखा।

0: दरवाजा खुला है, आ जाइए।
1: कहो कैसी हो मोना?
0: अरे प्रोफेसर दास, आप प्रणाम करती
1: हूँ। अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि ये चरण वरण छूने की औपचारिकता मत बरता करो। उम्र में तुम लोगों से मैं इतना बड़ा तो नहीं कि तुम हर बार मेरे पैर छू।
0: आप हेमेंद्र के गुरु हैं और
1: लेकिन शादी से पहले जब दो एक बार तुम मिली तब तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया।
0: आपने मेरी शादी से पहले जिस तरह मेरा पक्ष लेकर हेम का मन बना दिया था, मुझे लगा जैसे मैं आपकी बेटी हूँ। और यही कारण है जब मैं बंबई जाते हुए यहाँ से गुजरी थी ना, और आप स्टेशन पर आए थे, तो मैं डिब्बे से उतरकर आपके चरणों में झुक गई थी।
1: हाँ, उस क्षण मुझे लगा था तुम मेरे मित्र की पत्नी नहीं हो, मेरी बेटी हो।
0: लेकिन कभी कभी सोचती हूँ, अच्छा होता हेमेंद्र ने आपसे परामर्श न किया होता, आपने मेरी वकालत न की होती, हेम अपनी उसी चहेती से शादी कर लेते, मैं यूं तिल तिल तो न चलती।
1: मोना,
0: मैं भी क्या अपना रोना ले बैठी। अच्छा बताइए, चाय लेनी या कॉफी?
1: नहीं, मुझे चाय वाय की जरा भी इच्छा नहीं है। पहले तुम ये बताओ कि ये कमरे की क्या हालत बना रखी है
0: जी,
1: क्या बीत गया है पिछले 2 वर्षों में यहाँ? मुझे याद है विदेश जाने से पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो ये कमरा कितना खूबसूरत लगता था। इसे कोई झाड़ता बुहाड़ता नहीं आजकल? जिधर देखो जाले लटके हुए।
0: जब जिंदगी को ही जाले लग रहे हो तो कमरे की कौन कहे।
1: पर क्यों? अरे 4-5 बरस ही तो हुए हैं तुम लोगों को घर बसाए, क्या हो गया इस बीच? हेम कहाँ है?
0: बाहर गए हुए हैं।
1: और मोना, तुमने अपनी ये कैसी हालत बना रखी है? ये कैसी सुकड़ी मुचड़ी साड़ी पहने हो? कनाडा में ही ये भनक मेरे कान में पड़ी थी कि तुम लोगों की जिंदगी कुछ ठीक से नहीं चल रही। क्यों?
0: नहीं, पहले कुछ वर्ष तो बहुत अच्छे गुजरे, बस रचना के जन्म के बाद ही जाने क्या हो गया।
1: अरे हाँ, कैसी है रचना? भाई अब तो बातें करने लगी होगी वो।
0: जी हाँ।
1: कहाँ है, सोई है क्या?
0: नहीं, बहन आई थी, अपने साथ बनारस ले गई है। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मुझे बनारस नौकरी मिल जाए तो मैं चली जाऊँ वहाँ, बहन से कह रखा है मैंने।
1: मैदान छोड़कर चली जाना चाहती हो?
0: भाई साहब, जब हेम आपसे मिलकर बंबई गए थे और इन्होंने हाँ कर दी थी, तो मुझे लगा था कि मेरी तपस्या सफल हुई है। लेकिन बंबई से यहाँ आने पर।
1: तो तुम लोग क्यों छोड़ आए बंबई? इतनी अच्छी नौकरी थी तुम्हारी।
0: मैं कहाँ छोड़ आई, ये चले आए। वो शहर इन्हें बेहद क्रूर और निर्मम लगता था, कभी कुछ लिख पाएंगे, शोध कर पाएंगे, इन्हें नहीं लगता था।
1: यहाँ आकर बहुत शोध कर लिया ना।
0: आदमी अपने आप को जाने कैसे कैसे भुलावे देता है भाई साहब। मैंने तो कहा था, जो लोग काम करना चाहते हैं हर स्थिति में करते हैं। बंबई में क्या शोध नहीं होता, किताबें नहीं लिखी जाती? लेकिन ये नहीं माने। और तभी इनके एक सहपाठी ने लिखा कि यहाँ जगह खाली है, आपने भी मदद की।
1: भाई ये जगह पाने के लिए हेम ने मुझे जिस तरह के पत्र लिखे हैं।
0: मैं जानती हूँ, लेकिन इनके आने के बाद मैं क्या करती वहां? त्याग पत्र देकर चली आई। 6 महीने बेकार कुंठित हुई, अब पिछले साल ही यहाँ नौकरी मिली है। लेकिन इस बीच जैसे कुछ भी पहले सा नहीं रहा।
1: तो क्या अभी हेम ने तृप्ति का पीछा नहीं छोड़ा?
0: या तृप्ति ने इनका? बिना आग के तो धुआं नहीं उठता भाई साहब।
1: तो ये महज बेपर की नहीं कि पिछली गर्मियों में हेम तृप्ति के साथ खजियार के डाक बंगले में 4 दिन रहा। लोग तो ये भी कहते हैं कि दोनों शादी रचाना चाहते हैं।
0: इन्होंने तो मुझसे कभी कुछ नहीं कहा।
1: हेम होता तो पूछता कि कमबख्त, अगर तेरे दिल में तृप्ति से इतना ही गहरा लगाव था तो बेचारी मोना को अपने हाल पर छोड़ देता, उसकी जिंदगी क्यों परेशान की? और अब तो बच्ची की जिंदगी का भी सवाल है। मोना, आखिर तुम्हें कोई तो भुलावा दिया होगा हेम ने जो तुम उसकी ओर झुकी? अगर तुम्हें पहले से पता होता कि वो तृप्ति के बिना नहीं रह सकता तो क्या तुम्हारा सिर फिराता कि तुम?
0: गुन्ने आदमी है वो, मैं उनके मन की तो नहीं जानती, लेकिन शायद वो तय नहीं कर पा रहे थे। इतने बरस लखनऊ रहे, इतना प्यार होता तो शादी ना कर लेते। भाई साहब, मुझे तो पहले पहल तृप्ति का पता ही नहीं चला। एक बार मैंने उसका पत्र पढ़ लिया तो हंसकर कहने लगे, इस लड़की को मैं पढ़ाता था, जान छुड़ाकर बंबई भाग आया हूं, अब भी पीछे पड़ी है। फिर जब हमें मिलते 2 बरस हो गए मेरे घर वालों ने कहा कि रिश्ता किसी सुस्थिर नींव पर होना चाहिए, तो लंबी छुट्टी लेकर दिल्ली भाग गए नौटियाल के पास। और जब मैं दिल्ली पहुंची तो नौटियाल ने मुझे बताया कि वो तृप्ति से प्यार करते हैं। तब पहली बार कुछ माने। मैंने कहा तो मैं जाऊं? बोले मैं तय नहीं कर पा रहा मुना, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन भाई साहब, जब ये बंबई वापस आने लगे तो एक रात आपसे बात करने के लिए यहां उतर गए। जाने आपने क्या मंत्र फूका कि बंबई पहुंचते इन्होंने मुझे बाहों में भर लिया और बोले चलो मोना, इतवार को शादी कर ले। भाई साहब, उसी वक्त निमंत्रण पत्र तैयार किया, जाकर छपवाया, सब मित्रों को भेजा और पांचवें दिन हमारी शादी भी हो गई।
1: तो फिर तृप्ति कैसे आ गई इतने वर्षों बाद?
0: आप ही उनसे पूछकर मुझे बताइए भाई साहब। आजकल तृप्ति यहीं आई हुई है, दिन दिन भर उसे घुमाते फिरते हैं। मैंने हल्की सी शिकायत की तो बोले अब मेरी पुरानी मित्र है, इतना भी शिष्टाचार न बरतो। वो ना आए तो कभी नहीं बुलाऊंगा, पत्र न लिखे तो क्या हवा में जवाब दूंगा? मैं पत्र नहीं लिखता, वो लिखती है। तुम उसे समझा दो कि मुझे पत्र न लिखे।
1: मेरे सामने कहे ना ऐसी बात।
0: दास भाई साहब, आपने मुझ पर इतने एहसान किए, क्या आप तृप्ति को नहीं समझा सकते कि मेरी जिंदगी तबाह न करे?
1: मुना, मैं तृप्ति से कभी मिला नहीं, और ऐसे में प्रवचनों का हमेशा उल्टा असर होता है। लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं हेम से बात करूंगा। लेकिन एक शर्त है कि ये सब जाने वाले उतारो, ठीक से खाओ पियो, अरे मन करे न करे ठीक से रहो, जिंदगी को कुछ व्यवस्थित करो। तुम हेम के बराबर पढ़ी हो, बराबर का वेतन पाती हो, अरे तुम चाहो तो हेम जैसे चार को कमाकर खिला सकती हो, क्यों नहीं मान के साथ जीती? समझ लो ये संबंध नहीं चलेगा और फिर जीना शुरू करो। स्थिति सुधर गई तो अच्छा, न सुधरी तो उसके लिए भी तैयार रहो।
0: दास भाई साहब, हेम के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसके बिना मैं जी नहीं सकती।
1: नहीं जी सकती तो उसे साधो, समझ लो उसे साधने में अपने आप को और अपने घर को व्यवस्थित करना पहला कदम है। वरना औरत प्यार के दुख में अपनी या अपने घर की शक्ल बिगाड़ ले तो पुरुष के मन में दया या वितृष्णा तो पैदा कर सकती है, प्यार नहीं।

0: प्रोफेसर साहब, मुझे मोना का भी पत्र मिल गया था और हेमिन का भी। जो अफवाह कनाडा में आप तक पहुंच गई वो दिल्ली कैसे ना पहुंचती? मैंने हिम को पत्र लिखकर पूछा था, मोना को भी लिखा था। उत्तर में दोनों ने मुझे दिन के दिन यहाँ आने के लिए कहा, सो मैं चला आया।
1: नोटियल, ये बताओ कि हेमिन के इरादे क्या हैं?
0: इरादे तो उसके यही हैं कि तृप्ति से भी शादी रचा ले और मोना को भी ना छोड़े, और अगर दो चार ऐसी और भावुक मूर्खाएं उसे मिल जाएं तो उनका भी हार प्रोकर अपने गले में डाल ले।
1: ओ, मजाक की बात नहीं है नोटियल, तुमने उससे बात की होगी, तृप्ति से भी मिले होंगे।
0: हेमिन को हाथ से गंवाने के बाद ही तृप्ति को उसकी कद्र मालूम हुई है। मोना से उसे ईर्ष्या भी है और विद्वेष भी। जैसे भी हो, अब वो मोना को ध्वस्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे हेमिन के साथ बिना कानूनी शादी किए ही क्यों ना रहना पड़े।
1: और हेमिन,
0: अगर मोना शोर शराबा ना मचाए, कॉलेज में उसकी नौकरी पर आंच ना आए, तो वो भी तैयार है।
1: नौटियाल, ये छोटा शहर है, दिल्ली से महानगर नहीं। इस तरह खुले हम दूसरी स्त्री रखने वाला यहाँ शांति से अध्यापकी नहीं कर सकता।
0: लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने हट में हेम नौकरी की परवाह ना करे और तृप्ति के साथ लखनऊ चला जाए। मोना का घर तो हर हालत में टूट जाएगा।
1: मेरा ख्याल था हेम मुझसे मिलेगा तो मैं उससे बात करूंगा। जब मैं कुछ दिन पहले उसके यहाँ गया था तो आते समय मोना ने कहा था कि वो हेमिन से कहेगी कि मुझसे मिल ले, लेकिन वो आया नहीं।
0: मोना के साहस की मैं दाद देता हूँ प्रोफेसर साहब। उसका पत्र पढ़कर तो मैं डर गया था कि कहीं वो आत्महत्या ना कर ले, इतनी निराशा भरी थी उस पत्र में। लेकिन कल मैं उससे मिला तो दंग रह गया।

0: दिल में उसके जो भी बवंडर मच रहे हों, चेहरे पर उनका कोई आभास न था। हमेशा की तरह हंसती हुई मिली। ड्राइंग रूम इतना साफ सुथरा सजा बजा कि लगा ही नहीं कि वहां के रहने वाले किसी भयंकर तूफान से गुजर रहे हैं।
1: हाँ, मैं खुश हूं नौटियाल, मैं खुश हूं कि मोना ने इस विपत्ति से जूझने का फैसला किया है। हेमन उसे तलाक दे या वैसे ही संबंध विच्छेद कर ले, मोना हौसला नहीं छोड़ेगी तो इस मुसीबत से पार पा जाएगी।
0: आप अनुभव संपन्न व्यक्ति हैं प्रोफेसर साहब, हो सके तो किसी तरह तृप्ति को इन दोनों के बीच से निकाल दें, वरना हेमिन जैसा कमजोर आदमी किसी दिन भी गुंजलक में फंस सकता है। मोना लाएगी हेम को आपके पास, उसे ना समझाइए, तृप्ति को समझाइए।

0: लीजिए भाई साहब, मैं इन्हें ले आई हूँ।
1: आओ बैठो हिम
2: जी।
0: अब आप ही इनसे पूछिए इन्हें मुझसे क्या शिकायत है और क्यों ये तृप्ति को इतनी लिफ्ट दे रहे हैं।
2: मैं कहाँ लिफ्ट दे रहा हूँ।
0: और लिफ्ट कैसे दी जाती है? जब से वो आई है दिन भर आपकी शक्ल नहीं दिखाई देती। आज उसे भेड़ाघाट की सैर करा रहे हैं, कल मदल महल की पहाड़ियों और किला दिखाने ले जा रहे हैं, कभी पिक्चर का प्रोग्राम, कभी शॉपिंग का।
2: तुमसे हर बार साथ चलने को कहा, अब तुम साथ न चलो तो
0: मैं बीच में क्यों बाधा बनूं?
2: देखिए भाई साहब, ये जानती हैं कि मेरा और तृप्ति का 10-12 वर्षों का संबंध है।
0: अब तो मैं जान गई हूँ कि 10-12 वर्ष ही क्या, आपका उसका जन्म जन्मांतर का संबंध है।
2: सुन लीजिए,
0: अगर मुझे ये पता होता कि आप उसे इस हद तक प्यार करते हैं तो मैं चुपचाप आपके रास्ते से हट जाती।
2: आप भाई साहब इसे समझाइए, इंटर में थी तृप्ति जब मैं उसे पढ़ाता था, वो पढ़ने की बजाय मुझे चाहने लगी। पहले तो मैंने उसे किशोरवय का रोग समझा और सीरियसली नहीं लिया, लेकिन लखनऊ से मेरे आने के बाद भी वो लगातार पीछे पड़ी रही। मैंने मोना से शादी कर ली और लाख चाहा कि तृप्ति भी कहीं और शादी कर ले और मेरा ख्याल छोड़ दे, लेकिन ना उसने शादी की ना मेरा ख्याल छोड़ा। अब ऐसे में आप ही कहिए मैं क्या करूं, अपने ही घर में कैसे उसका अपमान कर दूं। अब वो रतनलाल गुप्त है ना, मोना को चाहते थे, एक बार वो इससे मिलने चले आए, पूछ लीजिए इसे कि मैंने क्या कहा था।
0: कि जाओ इन्हें शहर घुमा लाओ, भेड़ाघाट दिखा लाओ, इसीलिए ना कि आपको भी सुविधा हो जाती कि तृप्ति के साथ गुलछर्रे उड़ाए। मैं ऐसी दोहरी जिंदगी नहीं जीती, ना ऐसा दोहरा प्यार ही कर सकती हूँ।
2: अब तुम अपने आप को जड़ परंपराओं और रूढ़ियों के घेरे में बंद रखना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। भाई साहब, एक नारी रत्न की समझ में ये बात नहीं आ सकती। ये भले ही अपने चाहने वाले का अपमान कर दे, मैं नहीं कर सकता। हाँ, अब ये और बात है कि तृप्ति खुद पत्र लिखना बंद कर दे या मिलना छोड़ दे।
1: तब क्या तुम्हें बुरा ना लगेगा हिमिल?
2: क्यों, मुझे क्यों बुरा लगेगा?
1: अच्छा तो तुम उसे मुझसे मिलवा दो और कुछ देर एकांत में बात करने दो, वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगी।
2: ठीक है, मैं उसे आपसे मिला दूंगा।
1: मोना
0: जी,
1: तुम जरा अंदर अपनी भाभी के पास बैठो, मैं हिमिल से बात करूंगा।
0: जी बहुत अच्छा।
1: देखो हिम
2: जी,
1: तुम मेरे शिष्य भी हो और मित्र भी, पहले ये बताओ कि मोना से तुम्हें शिकायत क्या है?
2: भाई साहब, मोना इज वेरी पोजेसिव, उसने अपने आप को एक घेरे में बंद कर रखा है और मुझे भी उसी घेरे में बंद करना चाहती है। वो मेरे तन पर ही नहीं मन पर भी अधिकार पाना चाहती है। मैं तो घुट गया हूं उन घेरों के अंदर। भाई साहब,
1: हेमेन, औरतें ही नहीं मर्द भी अधिकार लोलुप होते हैं, दे आर ऑल्सो पोजेसिव। पत्नी पर पुरुष की तरफ जरा प्यार या प्रशंसा भरी नजर डाले तो पुरुष के दिल पर क्या गुजरती है, इसे शायद तुम नहीं जानते। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें प्रेम करने वाली मोना जैसी पत्नी मिली है।
2: ये भी क्या सौभाग्य है कि घर में मेरी कोई प्राइवेसी ही ना हो। तृप्ति के पत्र को लेकर उसने मुझे इतना परेशान किया है, इतने ताने दिए हैं कि मैंने दराजों को ताले लगाने शुरू कर दिए हैं।
1: ये उसकी गलती है।
2: ये ठीक है कि उसने अपना थीसिस लिख लिया है और मैं नहीं लिख सका, लेकिन शुरू से आखिर तक उसके थीसिस पर मैंने कितनी मेहनत की है क्या वो भूल गई? मैं अगर अपना थीसिस पूरा नहीं कर सका तो इसमें क्या उसका कोई दोष नहीं? मैं जब घर में रहता हूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई कोना मेरा अपना कोना है, कोई क्षण मेरा अपना क्षण है। वो घर की हर जगह को हर वक्त घेरे रहती है। मैं जब लिखता हूं और नौकरानी भी कमरे से गुजर जाए भाई साहब, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। लेकिन वो खाना पकाती और घर के सारे काम काज करती, लिख सकती है, मैं नहीं लिख सकता।
1: हेमेन, वो अल्लाह लड़की है और तुम्हें चाहती है।
2: अल्लाह नहीं, वो मुंह फट भी है, क्या कहनी है क्या अनकहनी, बोलते वक्त इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। हार कर अपना थीसिस पूरा करने के लिए मैंने अलग कमरा लेने की सोची, तब यारों ने उड़ा दिया कि मैं तृप्ति के साथ वहां रहना चाहता हूं और मोना ने खाना पीना छोड़ दिया।
1: तो वो अफवाह थी?
2: बिल्कुल, तृप्ति अब भी मुझे चाहती है, मानता हूं, पत्र लिखती है, मिलने आती है, पर मैं तो कभी लखनऊ नहीं गया। लेकिन आपसे झूठ नहीं बोलूंगा भाई साहब, मुझे कभी कभी ये ख्याल जरूर आता है कि तृप्ति उतनी पोजेसिव नहीं है, उसके साथ मैं एकांत पा सकता हूं।
1: देखो हिम, औरत मर्द के सही गुण दोषों का पता असल में शादी के बाद ही चलता है। क्या गारंटी है कि तब तृप्ति में कोई दूसरे दोष नहीं दिखाई देंगे?
2: वाह, ये आप ठीक कहते हैं।
1: मैं मोना को समझा दूंगा, वो ऐसी मूर्ख लड़की नहीं कि छोटी छोटी बातों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। हाँ, उसे तुम्हारे प्यार का विश्वास होना चाहिए, फिर वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा हेमंत, अब सच सच बताओ कि वाकई तुम चाहते हो कि तृप्ति तुम्हें छोड़ जाए?
2: मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच्ची बात यह है भाई साहब कि वो मुझे किसी तरह भी छोड़ने को तैयार नहीं। मैंने उसे लाख कहा कि वो शादी कर ले और मेरा ख्याल छोड़ दे, लेकिन लेकिन वो तो जैसे पागल हो गई है। पिछले साल मैं डलहौजी गया हुआ था, खजियार की मैंने बहुत तारीफ सुन रखी थी, सो मैंने 5-7 दिन वहां काटने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन की बात है, दोपहर की मीठी मीठी धूप में खजियार झील के किनारे आराम कुर्सी डाले बैठा था कि क्या देखता हूं, घोड़े पर सवार तृप्ति चली आ रही। जाने जबलपुर और डलहौजी कहां कहां से पूछती हुई वो खजियार आ पहुंची थी। अब बताइए भाई साहब, ऐसी औरत से कैसे छुटकारा हो?
1: हाँ, और तुम कहते हो कि वो पॉजेसिव नहीं होगी। रही छुटकारे की बात, तो जाओ उसे बुला लाओ, मैं कोशिश करूंगा कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे।

0: ये सच है प्रोफेसर साहब, 12 वर्षों से मैं हेम को प्यार करती हूँ।
1: तो फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की तृप्ति? क्यों उसे मोना के चक्कर में फंसने दिया? अब फंस भी गया था तो उसका उद्धार क्यों नहीं किया?
0: मैं तो बहुत बार शादी के लिए जोर देती थी, लेकिन उन दिनों हेम के आदर्श सार्थ मोहते थे। ये कहते थे विवाह प्यार के लिए घातक होता है, शादी के बिना जिस कृत्य को समाज पाप समझता है, शादी के बाद उसकी इजाजत दे देता है, ये सोशलाइज्ड सिन है, समाज सम्मत पाप। और हेम कहते थे हम शादी नहीं करेंगे, सार्थ और मदाम दाबुआ की तरह इकट्ठे रहेंगे।
1: अरे हेम तो पुराना चुगद है, भूल जाता है कि वो हेम है, सार्थ नहीं।

0: देखो तृप्ति, तुम जानती हो हेम की एक बच्ची भी है और उस पर तलाक का बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
1: बच्ची का ख्याल ना होता तो हम कब की शादी कर लेते। हेम चाहते थे बच्ची कुछ बड़ी हो जाए।
0: जब हेम मोना के साथ वैवाहिक जीवन के 4-5 वर्ष बिताने के बाद भी तुम्हारा साथ चाहता है तो जाहिर है मोना के लिए उसके दिल में जो प्यार था वो मंद हो गया है। लेकिन संबंध विच्छेद के लिए महज प्यार की किंचित कमी ही काफी नहीं, उसके लिए कहीं ज्यादा कठोर और क्रूर भावना की जरूरत है। क्या मोना के प्रति उसके मन में घोर वितृष्णा पैदा हो गई है? क्या वो मोना से घृणा करने लगा है? देखो, ये प्रश्न तलाक के सिलसिले में बहुत जरूरी है। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो तृप्ति, अगर दो जनों में नफरत की दीवार खड़ी हो जाए तो पसंद से या प्यार से, घर या बाहर के दबाव से संपन्न होने वाली शादी को निभाना मैं जरूरी नहीं समझता। इस मामले को तुम भावना की आंखों से नहीं, यथार्थ की आंखों से देखो। अगर तुम समझती हो कि मोना के लिए हेम के दिल में घृणा और वितृष्णा पैदा हो गई है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं मोना से उसे तलाक दिलवा दूंगा और इस शहर में मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो हेम की

0: जरूरत पेश आती है। तुम दोनों के साथ कई वर्ष तक हेम का अफेयर चलता रहा है, आखिर जब चुनाव की बात आई और उसने मोना को चुना, तब जरूर ही तुम्हारी अपेक्षा मोना में उसे कुछ ज्यादा खूबियां दिखाई दी होंगी। लेकिन प्रकट है कि शादी के बाद मोना की खामियां भी उसके सामने आईं, तब उसे तुम्हारे गुणों की याद आई, तुम लोगों का टूटा हुआ तार फिर जुड़ गया। तृप्ति, मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उस स्थिति में जब वो मोना से नफरत नहीं करता, कहीं ऐसा तो ना हो कि 2 साल बाद उसे मोना की यानी उसके कुछ ऐसे गुणों की याद आने लगे जो तुमसे भिन्न है, वो मोना से फिर संबंध बना ले और तब जैसे वो तुम्हारे साथ खजियार में 4 दिन रहा, मोना के साथ किसी दूसरे रमणी के स्थान पर 4 दिन काटे, ऐसे में तुम कैसा महसूस करोगी?
1: मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा।
0: हाँ, सोचना चाहिए। हाँ, तुम एक गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर हो, लड़कियों की जिंदगियां तुम्हारे हाथ में हैं और अपने उदाहरण से तुम उन्हें बना बिगाड़ सकती हो। तुम्हारे आचरण का तुम्हारी छात्राओं पर, तुम्हारे सहयोगियों पर, तुम्हारे मित्र परिचितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तुम्हें सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि कभी तुम अपने आप को मोना की स्थिति में पाओ तो कैसा फील करोगी।
1: मोना से मेरी जो बातें हुई हैं और आपने जो भी कहा है, उससे तो मुझे लगा कि आप लोग शायद समझते हैं कि हेम मेरे लिए उतना फील नहीं करते जितना मैं उन्हें चाहती हूँ, जबकि बात ऐसी नहीं है। जब उन्होंने मोना से बाकायदा शादी कर ली और ऊपर से मुझे निमंत्रण भी दिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने केवल बधाई भेज दी थी और फिर उसे कोई पत्र नहीं लिखा था। तब शादी के 8-10 महीने बाद, रचना के जन्म से कुछ पहले, उनका पत्र आया कि मोना को चुनने में उन्होंने बहुत गलती की और उसके कारण उनका लिखना पढ़ना सब धरा रह जाएगा। मैंने तब भी कोई उत्तर नहीं दिया। फिर एक पत्र आया, मैं फिर भी चुप रही। तब रचना के जन्म के बाद वे लखनऊ पहुंचे। मैं जानती हूं मोना से उन्होंने कहा है मैं ही उनके पीछे पड़ी हूं। पुरुषों के अहम को इससे थोड़ा संतोष मिलता है। फिर मोना को वो अपने दिल की कैफियत बताना भी नहीं चाहते। उन्होंने मुझसे सब कुछ स्वीकार किया है और चाहा है कि मैं उनकी बिगड़ी जिंदगी बना दूं और मेरा साथ पाए बिना उन्हें चैन नहीं आएगा। मोना से शादी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने आप पर डाल दी है। अब भी यहां आने से पहले उन्होंने मुझे बहुत ब्रीफ किया है। मैं तय करके आई थी कि मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, लेकिन आपने स्थिति के जिस पक्ष से बात की है, मैंने उस पर कभी विचार नहीं किया था।
0: देखो तृप्ति, तुम्हारा और हेमन का इतने वर्षों का साथ है, इतना तो तुमने भी देखा होगा कि हेम बड़े प्यारे झूठ बोलता है।
1: हाँ, वे परले सिरे के झूठे हैं।
0: हाँ, तो बस तुम खुद सोचो और तय करो।
1: मैंने तय कर लिया है, मैं इसी वक्त चली जाऊंगी। अभी गाड़ी में 1.5 घंटा है, मैं गाड़ी पकड़ लूंगी।
0: अरे सुनो सुनो सुनो सुनो, इस तरह रूठ कर चुपचाप जाने का मतलब होगा कि हेम भागा भागा तुम्हें मनाने लखनऊ जाए। ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे नहीं। अगर तुमने मेरी बातों पर ठंडे दिल से गौर किया है, तो उससे मिलकर और साफ कहकर जाओ कि वो तुम्हारा ख्याल छोड़ दे। देखो तृप्ति, मैं बहुत स्पष्टवादी हूं। मैं मानता हूं कि मोना और रचना बर्बाद ना हो, यही मेरी पहली चिंता है। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तुम भी मोना जैसी ही लगी हो। मैं नहीं चाहता कि महज क्षणिक आवेग में तुम बिना सोचे समझे कुएं में जा गिरो, इसलिए मैंने सारी स्थिति तुम्हारे सामने रख दी है। अगर मेरी बात तुम्हारे मन लगी है, तो बड़े धैर्य और गंभीरता से हेम से बात करके जाओ। ऐसे रिश्तों को बेदर्दी से काटना पड़ता है, तभी जिंदगियां बनती हैं।
1: मैं आपका आभार मानती हूं कि आपने पूरी स्थिति मेरे सामने रख दी है। आप चिंता न करें, मैं हेम से साफ साफ कहकर ही जाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी उखड़ी हुई जिंदगी का कुछ बना सकूं।
0: मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं।
2: आप तृप्ति को रोकिए भाई साहब, आप उससे कहिए वो हेम के साथ रहे, मैं ही उनके जीवन से निकल जाऊंगी।
0: अरे कैसी बेवकूफी की बातें करती हूँ मोना।
2: अभी कुछ मिनट पहले बरामदे में मुझे तृप्ति मिली थी। उसने कहा, मोना मैं हमेशा के लिए हेम की जिंदगी से जा रही हूँ, तुम खुश रहो और अपने पति को हाथ में रखो, नहीं रखोगी तो तृप्ति न सही कोई दूसरा

0: उतरी आ जाएगी।
1: वो ठीक कहती है।
0: वो शायद यहीं से स्टेशन जाना चाहती है और हेम उसे रोक रहे हैं। मैं समझती थी वो इनके पीछे पड़ी है, हेम का कोई दोष नहीं, पर तृप्ति ने मुझे जो कुछ बताया है उससे हेम पर से मेरा विश्वास उठ गया है। ये मुझसे सदा झूठ बोलते रहे, ये न मुझे पूरी तरह छोड़ना चाहते हैं न तृप्ति को पूरी तरह अपनाना। He wants to have the best of both the worlds. और इस झगड़े में बेचारी मेरी बच्ची याद ना पा रही है। जिससे हम आप आए थे ना भाई साहब, बनारस से बहन का पत्र आया था कि वहां एक गर्ल्स कॉलेज में मुझे नौकरी मिल सकती है। मैंने दूसरे ही दिन आवेदन पत्र भेज दिया था। अभी मेरा भांजा बनारस से मुझे लेने आया है, परसों इंटरव्यू है, मैं आज ही चली जाऊंगी। हेम तृप्ति के साथ रहें या न रहें, मैं अलग ही रहूंगी।
1: अरे रुको रुको, अभी मेल ट्रेन न छोड़ो।
0: मैं आपके पांव पड़ती हूँ भाई साहब, मुझे न रोकिए। आपने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं उसका एहसान जीवन भर नहीं चुका सकती, लेकिन अब मैं हेम के साथ ऐसी जिंदगी बसर नहीं करूंगी जिसमें किसी दूसरी औरत की तलवार मेरे सिर पे हमेशा लटकती रहे। मैं न ठीक से सो सकूं, न जाग सकूं, न खा सकूं, न पी सकूं, हमेशा भयाक्रांत रहूं।
1: तुम जो ठीक समझती हो वही करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अकलमंद बिगड़ी बना लेते हैं, रूठे को मना लेते हैं। ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचना बुद्धिमानी नहीं जिसे पार ही न किया जा सके।
0: लेकिन भाई साहब, बिगड़ी को बनाना और रूठों को मनाना क्या सिर्फ औरतों का ही फर्ज है? मर्दों की इसमें हेठी होती है क्या? मैं हेम की प्रतीक्षा करूंगी, लेकिन मेरे टूटे हुए विश्वास को फिर जोड़े इतना तो उन्हें करना ही होगा।

0: लक्ष्मण रेखा। अभी आप श्री उपेंद्रनाथ अश्क का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। प्रोफेसर दास श्री नंदलाल शर्मा, हेमेंद्र श्री श्याम अरोड़ा, नौटियाल श्री राम गोपाल, तृप्ति श्रीमती सुनीति कोहली और मोना श्रीमती वीना होरा।
1: अभी आप सुन रहे थे लेखक श्री उपेंद्रनाथ अश्क का लिखा नाटक लक्ष्मण रेखा। आकाशवाणी का यह नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, कल सुबह 10:30 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। इस कार्यक्रम में श्रोताओं से बातचीत का विषय रहेगा तंबाकू विकास के लिए खतरा। और रात 9:30 पर समय रहेगा लोकप्रिय फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 होने को हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है पद्मश्री बशीर बद्र साहब पर विशेष कार्यक्रम हम भी दरिया हैं। प्रस्तुति नमित राज की है, प्रस्तुति सहयोग है अनुराग श्रीवास्तव का और प्रस्तुतकर्ता हैं शोभित शर्मा। आकाशवाणी के इस विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं उर्दू शायरी के उस नर्म, खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली आवाज़ को, जिनकी गज़लों ने मोहब्बत और इंसानी एहसास को नई पहचान दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गज़ल के बादशाह पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब की। श्रोताओं, बशीर बद्र साहब सिर्फ एक शायर नहीं थे बल्कि एहसासों के ऐसे मुसव्विर थे जिन्होंने आम जिंदगी को शायरी बना दिया। उनका एक बड़ा बेहतरीन शेर आज उनकी विदाई पर बिल्कुल सच साबित हो रहा है।

कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।

श्रोताओं, ये गज़ल थी बशीर बद्र साहब की। आज अदब की दुनिया बेहद खामोश है, मोहब्बत, तन्हाई और ज़िंदगी की गहराइयों को बेहद सीधे और सरल शब्दों में पिरोने वाले डॉक्टर बशीर बद्र साहब आज हमारे बीच नहीं हैं। बद्र साहब का जाना शायरी और साहित्य की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। श्रोताओं, आइए इस विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से उनकी इस अंतिम विदाई पर उनके जीवन के सफ़र, उनकी सादगी और उनके उन अमर अशार को याद करें जिन्होंने हर आम और ख़ास इंसान को दिल से छुआ। श्रोताओं, बशीर साहब का जन्म 15 फरवरी सन 1935 को हुआ था और उनकी ज़िंदगी की एक दिलचस्प बात ये रही कि जब से उन्होंने शायरी करना शुरू किया उसी दिन से अपने सुनने वालों के दिल में जगह बना ली। बशीर साहब ने एमए की पढ़ाई एएमयू से की थी, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और मज़े की बात यह है कि जब वो यहाँ पढ़ाई कर रहे थे तो उनके खुद के लिखे शेर पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करते थे। यानी जो विद्यार्थी इम्तिहान दे रहा था उसी के लिखे शेर बाकी बच्चों को प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये शायरी की इस दुनिया में उनके कद को दर्शाता है। वाकई बशीर साहब ने जो भी लिखा बाकमाल लिखा। कार्यक्रम में अब वक्त है एक और बेहद खूबसूरत गज़ल का, ऐसी गज़ल जिसके अल्फाज उम्मीद, इंतज़ार और मोहब्बत की नरम रोशनी से भरे हुए हैं। जब दिल किसी अपने की आहट महसूस करता है तो दुआएं भी आसमान तक पहुंचने लगती हैं और फिर जन्म लेती हैं ऐसी पंक्तियां जो सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंच जाती हैं।

बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। श्रोताओं, शायर आज़म बशीर बद्र साहब की गज़लों में मोहब्बत एक बेहद खूबसूरत एहसास बनकर सामने आती है। उनकी शायरी में शिकवा कम और अपनापन ज़्यादा दिखाई देता है। श्रोताओं, बशीर साहब का एक लंबा समय भोपाल में गुजरा है और भोपाल को शायरों का गढ़ माना जाता है। लेकिन जहाँ तक बशीर साहब की बात है तो वो सिर्फ किताबों के शायर नहीं थे। उन्होंने गज़ल लिखने में वो भाषा लिखी जो आम लोगों की भाषा थी। श्रोताओं, ज़िंदगी कभी कभी बहुत ही बेरहम इम्तिहान लेती है। 1987 में मेरठ में दंगे हुए थे और उस दौरान दंगाइयों ने बशीर साहब के घर को आग लगा दी थी। एक लेखक के लिए उसकी संपत्ति होती है उसकी किताबें, उसकी डायरियां, जिनमें लेखक की अधूरी रचनाएं लिखी होती हैं। इस आग में बशीर साहब का सब कुछ जलकर राख हो गया। वो बेघर हो गए। श्रोताओं, वो अंदर से टूट भले ही गए, लेकिन जिस इंसान का आशियाना नफ़रत की आग में जलाया गया हो, उसकी कलम ने कभी नफ़रत नहीं लिखी। लेकिन हाँ, समाज की इस कड़वाहट पर तंज ज़रूर कसा। सलीके से उन्होंने लिखा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। अब पेश है जगजीत सिंह की आवाज़ में एक ऐसी गज़ल जो अधूरी चाहत, इंतज़ार और दिल की खामोश तकलीफ़ को बेहद खूबसूरती से बयां करती है। कुछ रिश्ते ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो दिल के बहुत करीब तो रहते हैं लेकिन मुकम्मल कभी नहीं हो पाते, और उन्हीं एहसासों को अल्फाज देती है ये गज़ल। अर्ज़ किया है, वो नहीं मिला तो मलाल क्या, वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुज़र गया सो गुज़र गया, उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुज़र गया सो गुज़र गया।

चिराग बुझ गया लेकिन महक बची है अभी, चिराग बुझ गया लेकिन महक बची है अभी, वो ज़िंदगी के सफ़र में रोशनी दे गया। श्रोताओं, बशीर साहब की आवाज़ सिर्फ हिंदुस्तान की गलियों तक महदूद नहीं रही। साल 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव था, बातचीत के सारे रास्ते बंद लग रहे थे। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तानी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के सामने गज़ल नवाज पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र का ही एक शेर पढ़ा था, जिसने दुश्मनी के बीच इंसानियत की मर्यादा को बनाए रखा। वो शेर था कि दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। श्रोताओं, पद्मश्री हो या साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सम्मान उनके पीछे चलते रहे, लेकिन बशीर साहब हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे। उन्होंने हमेशा सिखाया कि इंसान को बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि वो आम लोगों से दूर हो जाए। अब बारी है एक ऐसी गज़ल की जिसमें पिछड़ने की कसक भी है और मुलाकात की अधूरी ख्वाहिश भी। कई बार ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन वक्त चुपचाप गुजर जाता है और फिर दिल बस यही कह उठता है।

सदा रहेंगे आपकी यादों के नक्श कदम, आप जिस्मानी तौर पर नहीं पर यादों में अमर रहेंगे। श्रोताओं, वक्त का पहिया चलता रहता है और ज़िंदगी की ये शाम हर किसी की गली में एक ना एक दिन ज़रूर आती है। आज उस्ताद सुरबन डॉक्टर बशीर बद्र साहब भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन यकीनन जब भी कोई खामोशी से किसी को याद करेगा तो बशीर साहब के लफ्ज़ उसकी ज़ुबान पर आकर उसे हौसला ज़रूर देंगे। करोड़ों दिलों के बादशाह डॉक्टर बशीर बद्र साहब को हमारा पूरा रेडियो परिवार भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज इस विशेष कार्यक्रम हम भी दरिया हैं को उनके इस मशहूर शेर के साथ संपन्न करते हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री बशीर बद्र साहब पर विशेष कार्यक्रम हम भी दरिया हैं। प्रस्तुति नमित राज की थी, प्रस्तुति सहयोग था अनुराग श्रीवास्तव का और प्रस्तुतकर्ता थे शोभित शर्मा। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करे।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनके नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। चार दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।